स्वरेना पूजयया जगत् सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो अनसुतानिव असुराश्रिक वसा पंक चित्तस्ते करज्वला शूहाय खड़गो भवतु चंडिके स्वांगनथा वयम् भोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामश्रितानां नवीपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयथां ब्रह्मन्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाद्य धर्मदिशां देवि महासुराणां रूपैर् अनेकैर् बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या ममत्तगत्ते अतीवान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्ष्यांषि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युवलादि यत्र धावानलो यत्र तदाब्धिबन्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारसीति विश्वं विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यं यथा असुरवधादधुनैव सिद्ध्य पापानि सर्वजगदाज शमग्नयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गान् प्रणतालं प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणी रैयक्य

परंपरा प्रकृति महामाया जगन मातृका एवं चंडिका निखिल विश्व की परमा प्रकृति निर्गुण चंडिका से सगुण महालक्ष्मी का प्रथम

परंपरा प्रकृति महामाया जगन मातृका एवं चंडिका निखिल विश्व की परमा प्रकृति निर्गुण चंडिका से सगुण महालक्ष्मी का प्रथम प्रकाश सप्त कांचन वर्णा द्वादश प्रहरण धारिणी महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी दुर्गा का पूजन वैभव निखिल

है गुणमयी सगुण अवस्था में देवी चंडिका अखिल विश्व की प्रकृति स्वरूपिणी है परिणामिनी नित्या वाक अथवा सरस्वती वे ही श्री अथवा लक्ष्मी है पुनः संहार काल में रुद्राणी दुर्गा

0: अभी आप सुन रहे थे नवरात्रि की पूर्व प्रभात बेला में हमारा विशेष कार्यक्रम महालया। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से

0: दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे मार्गदर्शक, हमारे ऋषि मुनि वेद ग्रंथ सब यही कहते हैं कि सेवा परमो धर्म। जिसने सेवा का मार्ग अपना लिया, वो जिसकी सेवा करता है उससे भी उच्च स्थान उसे प्राप्त हो जाता है। अनेक उदाहरण हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं, लेकिन आज हम कार्यक्रम की शुरुआत में उनकी आराधना करते हैं जिन्होंने अपने सेवा भाव से ईश्वर के हृदय में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया और अपने हृदय में उन ईश्वर को बसा लिया।

भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, लेकिन हर इंसान उन मार्गों को समझ सके यह संभव तो

नहीं है, लेकिन ईश्वर तो सबके हैं। हर इंसान के अंदर ईश्वर की अनुभूति और ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति होती है। क्या हुआ जो उसे भक्ति के शोधित मार्ग नहीं पता है? ईश्वर ये नहीं देखते हैं। ईश्वर देखते हैं हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा। और फिर कलिकाल के लिए तो कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। हम सिर्फ ईश्वर का नाम सुमिरन करके भी उनके साथ अपना जुड़ाव बनाए रख सकते हैं। शर्त बस ये है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसकी क्षमा याचना कर लें और दोबारा उस गलती को होने से खुद को बचा लें। क्योंकि हम मनुष्य की निगाहों से, अपने आसपास के लोगों से, उनकी निगाहों से अपने अपराध तो छिपा सकते हैं, लेकिन जो सर्वत्र व्याप्त हैं, सब कुछ देख रहे हैं, हमारे अंदर हैं, कण कण में हैं, उनसे हम भला कहां कुछ छिपा सकते हैं। तो यदि हमारे कर्मों का पैमाना हमारे प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं, तो फिर हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उनका नाम सुमिरन करते हुए अपने जीवन को धन्य कर मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होना चाहिए।

भजन से न सिर्फ हमारी जीवा शुद्ध होती है अपितु हमारी आत्मा भी परिमार्जित होती है। मनुष्य जिस कालखंड में है, जिस अर्थयुग में हम जी रहे हैं, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हर क्षण एक नई भौतिकता हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और हम पूरी जद्दोजहद के साथ लग जाते हैं कि हमें ये भी पाना है, वो भी पाना है, जबकि साथ कुछ नहीं जाना है। कोई गलत बात नहीं है, आज इंसान यहां पे आया है तो कुछ ना कुछ अर्जन तो करता ही है, लेकिन हमारे साथ जो जाएगा वो हमारी भक्ति जाएगी, हमारे आचरण जाएंगे, हमारे कर्म जाएंगे। तो जब हम ईश्वर की आराधना करते रहते हैं तो ईश्वर की शक्ति से हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, और जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया उसके जीवन से भटकाव दूर हो जाता है, और जब जीवन से भटकाव दूर होता है तो एकाग्रता आती है, और एकाग्रता से हमारा जीवन भक्ति में रमता है और हमारा जीवन सन्मार्ग पर चल पड़ता है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका

0: नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मार्ग पर लेकर चले, इसी कामना के साथ आज की आराधना से अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए लाला लाजपत राय के विचार।
1: भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तीन प्रमुख प्रवक्ता थे लाल, बाल और पाल। लाल से बोधन था लाला लाजपत राय के लिए, जिन्होंने जलियांवाला बाग की नृशंस बर्बरता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील कहा था। बाल थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा की थी। और पाल के रूप में याद किए जाते थे विपिन चंद्रपाल, जिन्होंने स्वराज्य चरित्र के उद्घाटन के लिए देश को ललकारा था। राष्ट्रीय जागृत के साथ साथ जीवन की समस्याओं के विश्लेषक और वैश्विक संकल्पनाओं के उद्गाता के रूप में लाला लाजपत राय के विचार आज भी हमारे लिए दिव्य आलोक प्रदान करते हैं। मृत्यु, धर्म, युद्ध, श्रम, शिक्षा, क्रांति, शांति आदि सभी मसलों पर उनकी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि में धर्म चिंतन मात्र नहीं है, अपितु चिंतन और आचरण है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा था,

0: किसी भी धर्म मत को आदर्श और निर्दोष बनने के लिए मानव स्वभाव के उन सभी पक्षों के सामंजस्यपूर्ण विकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जो उसके भौतिक जीवन के आधार का निर्माण करते हैं। सामाजिक पक्ष की उपेक्षा तो वो कर नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य को समग्रता में समझने का उनका प्रयास था। धर्म को मानव के स्वभाव, उसकी भौतिक आवश्यकता को समझने और उसके परिष्करण का कार्य करना पड़ता है। जो धर्म जीवन की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करके चलता है, उसके आचरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। जीवन और मृत्यु की पहेली मानव को भटकाती रही है। मृत्यु की भयावहता मानव को आशंकित और उद्वेलित करती रहती है। मानव जीवन की नियति और परिणति का शाश्वत प्रश्न सही जीवन दृष्टि की मांग करता है। लाला लाजपत राय ने इस संबंध में कहा था, गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए मनुष्य को पहले गरिमापूर्ण ढंग से जीना सीखना चाहिए। वही मृत्यु भव्य है जो भली प्रकार जिए गए जीवन अर्थात सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि के लिए और मानवता के लिए जिए गए जीवन के प्रासाद का शिखर बनती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अर्थ है परहित में रत होना, पर पीड़ा से बचना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि से अपने को बचाना, देश समाज और मानवता के हित चिंतन का अनुदिन स्मरण और तदनुरूप आचरण। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति उस गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्णन कर सकता है जिसकी वो आकांक्षा करता है। लाला जी ने कहा था, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है न कि दूसरों की कृपा से। उनका संदेश है कि मुसीबतों को हौसले से झेलो, इनसे घबराना अपने काम को बिगाड़ना है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है।
1: अभी आप लाला लाजपत राय के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार यादव से अवधेश मिश्र की बातचीत। विषय है पशुपालन का वैज्ञानिक तरीका। लीजिए सुनिए।
1: भाई देखा हमारे किसान भैया बहनी खेती कई के ओमे लाभ लेत हैं। मुला हमारे कुछ किसान भैया बहनी हैं भाई बढ़िया तरीके से पशु पाल के भी लाभ लेत हैं। तो पशुपालन का जो उनके परंपरागत तरीका बा अगर उससे हट के भैया वैज्ञानिक तरीके से पशुपालें तो भैया कम लागत में अधिक लाभ उन्हें मिल सकत है। तो पशुपालन का वैज्ञानिक तरीका का बाट है यही के बारे में जानकारी देवे खातिर आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेश कुमार यादव भैया हैं जिकर जानकार मनई हैं। तो भैया हम आपसे जानना चाहब कि जो पशुपालक भैया बहनी हमारे हैं वो भैया परंपरागत तरीके से पशुपालत हैं तो उसे भैया हम तो देखे थे कि ज़्यादा लागत है और भैया लाभ ओकरे अपेक्षा कम मिलत है। अगर वैज्ञानिक विधि से भैया पशुपालें तो हमें भैया कम लागत में अधिक लाभ मिलत है। तो वैज्ञानिक विधि का बाटे भैया के बारे में फरियाई बता दें।
2: धन्यवाद। पशुपालन का वैज्ञानिक तरीका वैसे तो एक बहुत विस्तार विषय है
1: जी,
2: लेकिन फिर भी हम किसान भाई लोगों को ये बता दें कि पोषण के संदर्भ में आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं
1: जी,
2: बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिसके माध्यम से आप लोग समुचित पोषण दे सकते हैं और उससे नुकसान को आप बच सकते हैं। जैसे आप आजकल फीड ब्लॉक आ रहा है, फीड ब्लॉक के

0: बाजार में उपलब्ध होता है, फीड ब्लॉक में मोलेसेस होता है, यूरिया होता है, मिनरल मिक्सचर होता है, राइस ब्रॉन होता है, इन सब का एक मिक्सचर होता है
1: जी,
0: जिसको अगर पशुपालक भाई जैसे बाढ़ का क्षेत्र आ गया या चारा अवेलेबल नहीं है
1: जी,
0: तो ऐसे जगहों पर अगर वो उनका उपयोग करवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। और एक जगह और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है,
1: कहाँ भैया?
0: जैसे बहुत ज़्यादा दूध देता हो उनका जानवर
1: जी,
0: और उसको बहुत ज़्यादा फीडिंग नहीं कराई जा सकती है, तो ऐसे जानवर को हम फीड ब्लॉक जो है रिकमेंड करते हैं।
1: मतलब अगर पोषण स्तर में सुधार कर लें तो निश्चित रूप से भाई कम लागत में अधिक उन्हें लाभ मिले लगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि पोषण और उत्पादन से ही तो हमारा मतलब है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम किसी भी जानवर को रखते हैं तो उसके उत्पादन को ही से मतलब रखते हैं।
1: जी जी जी,
0: जब उसका पोषण सही रहेगा तो उसका उत्पादन सही होगा, इसीलिए इस पर विशेष जोर देना, ध्यान देना हम लोगों का कर्तव्य है।
1: भैया डॉक्टर, ये हम जानना चाहब कि जौन जौन नई तकनीक के विकास होते हैं, नया नया पोषक तत्व

0: और उत्पादन से ही तो हमारा मतलब है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हम किसी भी जानवर को रखते हैं तो उसके उत्पादन को ही से मतलब रखते हैं।
1: जी जी जी
0: जब उसका पोषण सही रहेगा तो उसका उत्पादन सही होगा, इसीलिए इस पर विशेष जोर देना, ध्यान देना हम लोगों का कर्तव्य है।
1: भैया डॉक्टर, ये हम जानना चाहब कि जौन जौन नई तकनीक के विकास होते हैं, नया नया पोषक तत्व आवत हैं, नया नया भैया आहार पशुन के आवत हैं, भैया एक जानकारी हमारे पशुपालक भैया बहन के कम हो पावत है, तो नई नई तकनीक जौन आवत है, नया नया विकास होत बाटे, भैया एक जानकारी कहाँ से ले पाऊँ?
0: इसके लिए बहुत सारी जगह आप जा सकते हैं, जैसे आप निकटवर्ती पशु चिकित्सालय से संपर्क कर लें
1: जी,
0: या जिले स्तर पर आप चीफ वेटनरी ऑफिसर का जो ऑफिस होता है, हमारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: कुछ एक्सटेंशन विभाग होते हैं, प्रसार विभाग होते हैं, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, या आप और इस लेवल की अच्छे लेवल की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके बरेली में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल में है, या मथुरा में उसका मथुरा वेटनरी यूनिवर्सिटी है, या फैजाबाद में नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से आप नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, ये तो रहा जानकारी के माध्यम, भैया कहाँ से जानकारी लेके ओकर लाभ ले सकते हैं। अब एक बात आवत है कि अगर पशु स्वस्थ रहे तो भैया उसे लाभ मिले, अगर पशु भैया बेराम हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो भाई लाभ की अपेक्षा हानि हो जाती है, तो पशु स्वस्थ रहें एकरे बारे में आप का कहे चाहते हैं?
0: बिल्कुल सही कहा, आप स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत सारी बता सकता हूं मैं
1: जी,
0: लेकिन स्वास्थ्य के बारे में आप जो है वो वैज्ञानिक तरीका जो आज लेटेस्ट में है उसको बताएं हम आपको।
1: बिल्कुल,
0: जैसे एक समय था जब हम लोग नहीं जान पाते थे कि इस जानवर को कौन सा बीमारी हुआ है या हम उसको सॉर्ट आउट कैसे करें, आज के समय में हम इतनी ज़्यादा वैक्सीन बना लिए हैं, हर बीमारी से रिलेटेड लगभग हमने टीका बना लिया है,
1: बिल्कुल,
0: और उसके जांच के लिए हमने किट्स भी बना लिए हैं
1: जी।
0: और वो किट्स बाजार में अवेलेबल है, वो किट्स ले जाएं, जानवर के ब्लड सैंपल से या यूरिन सैंपल से चेक करें, उनको ये पता चल जाएगा कि उनके जानवरों को किस प्रकार की बीमारी है और वो उसी प्रकार का वैक्सीन, उसी प्रकार का टीका अपने जानवरों को लगा सकते हैं। ये तो हमने उनके रोकने के एक उपाय बताया। मान लीजिए टेक्नोलॉजी की है जो आजकल के आ रही है, वैसे तो अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरेज, ये सब हम छोटे जानवर में तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं
1: जी।
0: अब बड़े जानवर में भी हम फील्ड में अब अल्ट्रासोनोग्राफी करके ये पता करते हैं कि जानवर कब हीट में सही समय पर आने वाला है और उसी समय हम कृत्रिम गर्भाधान करके और अच्छी तरह से प्रोडक्शन ले रहे हैं।
1: मतलब ऐसा ऐसा तकनीक भैया आएगी बा कि ये पता लग जाए कब तुहार जानवर भैया गर्म होई और कब हमें भैया बीज डलवावे के आवश्यकता पड़ी है, तो निश्चित रूप से भाई जानकारी की कमी की वजह से एकर लाभ कम लोग ले पावत हैं, अगर वैज्ञानिक विधि के भैया लाभ लें तो निश्चित रूप से लाभ पाई हैं। तो डॉक्टर भैया हम ये जानना चाहब कि भाई पशुओं का रख रखाव भी वैज्ञानिक विधि से अगर हमारे पशुपालक भैया बहनी करें तब भी उन्हें लाभ मिले, तो इनका रख रखाव कौन तरीके से करें?
0: हाँ बिल्कुल सही पूछा आपने, रख रखाव में वही परंपरागत में पहले के लोग जो है ढेर सारे जानवर रखने की आदत है
1: जी।
0: आज हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं आपसे कि आप कम ही जानवर रखिए
1: जी,
0: लेकिन प्रोडक्टिव रखिए, उसको मीनिंगफुल रखिए और उसको एक प्रॉपर जो जगह होनी चाहिए वो दीजिए। अगर आप एक प्रॉपर जगह नहीं देते हैं उसको, एक जानवर को जितना एक रखने की जगह जरूरत होती है
1: जी,
0: तो जानवर प्रभावित होता है और वो प्रोडक्शन भी कम देता है, तो इससे आपका बहुत नुकसान होता है, आप उसके चारे पर नुकसान करते हैं, आप उसके रखरखाव के संबंधी पर भी नुकसान करते हैं, इसलिए इसमें आप ध्यान दीजिए और उसके इस पर व्यवस्था करिए।
1: निश्चित रूप से जैसे कि आप डॉक्टर भैया बताए हैं कि अगर पशुपालक भैया यह विधि से भाई पशुपालें, नई नई जो तकनीक आए बा, नया नया जो पोषक आहार आए बा, ओकर प्रयोग भैया अपने पशुओं के ऊपर करें तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिली। चलो चलो डॉक्टर भैया हम आपसे ही जानना चाहब कि जौन आप बताएं है कि भाई जौन पशु के पेट में भैया बच्चा डाल दिया जाता है तो वो दूध देवे लागी पशु?
0: नहीं, वो तो देगा ही दूध, जो पशु की पेट में बच्चा डाल दे रहे हैं वो तो जब गाविंग होगी तो वो देगी।
1: अच्छा,
0: जो जानवर बिल्कुल नहीं बच्चा दे रहा है, जिसको बच्चा दे ही नहीं सकता है, लेकिन वो जानवर है आपके घर में और अगर आप चाहते हैं दूध तो बिना गाभिन किए, बिना बच्चा दिए हम उससे दूध पास कर सकते हैं। जो हमने अभी ये मेथड बताया है आपको
1: जी, जी, जी।
0: जो तरीका पहले बताया है, इस तरीके से आप बिना बच्चे के ही आप उसे दूध पा सकते हैं।
1: मतलब
0: और इस चीज के

0: हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप निकटवर्ती पशु चिकित्सालय में संपर्क करें,
1: जी
0: वहां से डॉक्टर साहब से मिलें आप, आपको वो अगर आप इस तरह की सुविधा चाहते हैं
1: जी
0: तो ये डॉक्टर साहब से आप मिलें और आपको जरूर आपके जानवरों से आपको फायदा मिलेगा।
1: निश्चित रूप से डॉक्टर राजेश कुमार यादव भैया, आप इतना बढ़िया जानकारी दिहन कि पशुपालन के वैज्ञानिक तरीका का बाट है, और हमारे पशुपालक भैया निश्चित रूप से एकर सुन के एकर लाभ ले हैं। ये कुल बतावे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे बातचीत पशुपालन का वैज्ञानिक तरीका। डॉक्टर राजेश कुमार यादव से बातचीत कर रहे थे अवधेश मिश्र। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी की वार्ता, उच्च रक्तचाप का होम्योपैथी द्वारा समाधान।
1: ब्लड प्रेशर या रक्तचाप ब्लड ह्यूमन शरीर में बॉडी वेट का 1/10% होता है। इसका मतलब एक व्यक्ति जिसका वजन लगभग 60 kg है तो उसके शरीर में लगभग 6 लीटर ब्लड होगा। ब्लड हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स या नलिकाओं में बहता है, जैसे शरीर के सारे अंगों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है और न्यूट्रिशन पहुंचाता, तथा वहां से ब्लड वेसल्स के द्वारा हृदय में आता है, लंग्स में जाकर वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर पूरे शरीर में जाता है। यह ब्लड हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। हार्ट जितना प्रेशर लगाता है कि ब्लड सारे शरीर में चला जाए, उस प्रेशर की वजह से आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दबाव नॉर्मल से जब ज़्यादा होता है तब उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 100 से 140 तथा डायस्टोलिक 60 से 90 mmHg रहता है। जब ब्लड प्रेशर 140-90 mmHg से ज़्यादा चला जाता है या ज़्यादा रहता तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो सबसे कॉमन कारण है वो इडियोपैथिक माना जाता है, जिसमें कारण बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। दूसरा जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री है तब भी ब्लड प्रेशर देखा जाता है। एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लाइफ स्टाइल की वजह से भी, जैसे हम खाने में ज़्यादा तेल ले रहे हैं, नमक ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक्सरसाइज न करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक्सरसाइज करने से ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रभाव नियंत्रित रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में सहायता होती है। नमक ज़्यादा लेने से वाटर का रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से ब्लड प्रेशर फट जाने का डर रहता, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। जो दवाएं ब्लड प्रेशर में प्रयोग की जाती हैं उनमें से कुछ दवाएं हैं रौल्फिया, कालीफॉस, क्रेटेगस, एवीना सटाइवा, लाइकोपस, ग्लोनाइन एक्सेट्रा। ये दवाएँ हमेशा रजिस्टर्ड चिकित्सक के परामर्श से ही लें, और जो कॉमन दवाएं इनमें से हैं जो ज़्यादा प्रयोग होती उनको निम्न इस तरह के सिम्टम पे प्रयोग की जाती हैं। जैसे राउल्फिया या सर्वगंधा, यह रक्तचाप या बीपी कम करने की काफ़ी अच्छी दवा है। यह दवा जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेट रहता है, पेशेंट को बेचैनी रहती है, विशेष रूप से उसको सोते समय रेस्टलेस होती है, तब राउल्फिया काफ़ी अच्छा काम करती है। दूसरी दवा है कालीफॉस। जब मरीज को घबराहट हो, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मरीज को बेचैनी होने लगती है, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ जाता है, ऐसे में

0: लिफास काफ़ी अच्छा काम करती है। अगली दवा है क्रिटेगस। जब मरीज को हार्ट की बीमारी हो, उसके वजह से उसका बीपी बढ़ गया हो, हार्ट के वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहे हों, उसकी मांसपेशियों ठीक से काम न कर रही हों, उसकी वजह से बीपी बढ़ने में क्रिटेगस दी जाती है। एवीना सेटाइवम अगली दवा है जो कि लहसुन से बनती है। जब आदमी कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, सर का ऊपरी हिस्सा जिसे वर्टिक्स कहते हैं उसमें दर्द हो, जब उसे काम करने में दिक्कत हो रही हो, तब यह दवा फ़ायदा करती है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में सहायता मिलती है। अगली दवा है इग्निशिया जो किसी तरह के मानसिक आघात लगने पर, जैसे किसी का कोई काम खराब हो गया हो, कोई नुकसान हो या किसी अपने की मृत्यु हो जाए, उसकी वजह से जो मानसिक आघात होता है उसमें इग्निशिया दवा दी जाती है।
1: उच्च रक्तचाप का होम्योपैथी द्वारा समाधान। अभी आप डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो रहे हैं। आप सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती सुनिएगा रात 9:30 बजे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लेकर के आएंगे रोज की तरह सुबह 9:30 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा शाम 6:50 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7 बजे 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कमला बोस का ख्याल गायन सुनिएगा सुबह 7:30। दिन में 12:15 पंडित भीमसेन जोशी का शास्त्रीय गायन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे जलज श्रीवास्तव। इनके स्वर में भजन और गीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर और शाम 7:45 पर। लोक माधुरी कार्यक्रम होगा दिन में 10:05 पर। कलाकार होंगे राम सूरत, शशिबाला जैन और साथी। कुछ और लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 2:30। स्वर होंगे लहरीलाल जी यादव, हेम श्रीवास्तव, रमेश चंद्र और साथियों के।

हमारे संग्रहालय से। यह कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 10:30 बजे। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे पूर्व नाट्य कलाकार विजय बोस से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे युक्तिभद्र दीक्षित। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11 बजे। अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30 बजे। कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। महिलाएं अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी दिन में 1:15 बजे। इसके अंतर्गत कमल सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा महिलाओं के सपने और परिवार का सहयोग। साथ ही शशिबाला जैन के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। धरती के गीत होंगे 5:00 बजे। स्वर होंगे अखिलेश कुमार यादव और साथियों के। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे रोज की तरह 5:15 बजे। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में आज परिवार कल्याण की बात होगी। विषय होगा कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं, और जानकारी देंगे डॉक्टर विमलेंदु शेखर। साथ ही पन्नालाल यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डॉक्टर संतोष भदौरिया की ये वार्ता सुनवाएंगे आज के हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर। और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस होगा 8:30 बजे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

भाजपेति दलेन बृहत्मतव्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टनचावडी आसने एआईएनआरसी दलं स्वकीयं आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचण्डं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनां अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन, तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिन्तनात् पूर्व नियम निषेधाच्च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां शान्ति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रे अस्मिन् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः 63-उत्तरैकशत नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षा कारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केन्द्रीय सचिवालयं समेत्य पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात

0: नियन्त्रण विभागेनापि मार्गपरिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगमगमनाय अग्रिममार्गनिर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मन्त्रालयस्य राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय, पोषणाय, सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जनसहभागिता भावनावर्धनाय प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवन्त केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन SIR इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यंत्राणां EVM प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन संपादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक आपत्तीनां रोधनाय निर्वाचनायोगेन प्रपत्र सप्त आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचनायोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांची नगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इंदौर नगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

अभी आप श्रीरामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के, संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन। कार्यक्रम का पहला भजन हमने लिया है फिल्म संत तुलसीदास से। भागवत मिश्रा के बोलों को शुरू में पिरोया है राम कदम ने, आवाज पंडित भीमसेन जोशी की है।

कार्यक्रम का अगला भजन हमने लिया है फिल्म रफू चक्कर से। गुलशन बावरा के बोलों को सुर में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने। आवाजें हैं अजीज नाजान कंचन और साथियों की।

0: इस भजन के साथ ही आज का फिल्मों से भजन का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और जनहित के विषयों पर की प्रदेश स्तरीय समीक्षा। कहा, अधिकतम 24 घंटे में मिलना चाहिए शिकायतों का संतोषजनक जवाब। और मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए नया मोबाइल फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं। सोशल मीडिया की अफवाहों पर खाद्य एवं रसद विभाग ने लगाया विराम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में विकास, औद्योगिक निवेश, कृषि, रोजगार, तकनीक और जन कल्याण से जुड़े 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास का नया मॉडल बन रहा है।
2: कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद इस बात के लिए सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी रहेगी कि उन्होंने राज्य के विकास को निरंतर अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से आज उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का नया मॉडल बनकर उभरा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश को मिली एक बड़ी सौगात है। यह एयरपोर्ट आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। इसी भावना के साथ कैबिनेट ने एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है।
2: उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्री परिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

0: आपका नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास कर दी।
1: कैबिनेट बैठक में दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति मिली। इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। बैठक में प्रदेश की नगरीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
2: जनपद भदोही में भारतीय संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत एवं समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के द्वारा किए गए सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान के दृष्टिगत उनकी स्मृति एवं सम्मान में जनपद भदोही का नाम परिवर्तित किए जाने पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि जनपद का नाम संत रविदास नगर भदोही रखा जाए। आखिर में उनकी दी गई विशेष बात यह है कि उनका नाम भी रहेगा संत रविदास जी का, भदोही भी रहेगा।
1: प्रदेश कैबिनेट ने ब्याज माफी योजना 2026 लागू करने और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान क्रय नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियों और जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्विवाद राजस्व मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 दिन में करने और प्रत्येक तहसील में लंबित प्रकरणों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरने और जनता से सीधा संवाद करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। वह विकासखंड रहरा बाजार के बिलरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 803 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए नया मोबाइल खरीदने और OTP सत्यापन अनिवार्य किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर खाद्य एवं रसद विभाग ने विराम लगा दिया है। विभाग के अपर आयुक्त सत्यदेव की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए किसी भी लाभार्थी को नया मोबाइल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण, समावेशी विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार की तरफ से सेवा संकल्प अभियान पर जारी विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग को वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे।

0: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के इन स्पेस और नगर विकास विभाग के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग अपनाने की कार्यशाला का कल लखनऊ में समापन हो गया। अंतरिक्ष विभाग, भूस्थानिक उद्योग और विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्रित हुए। कार्यशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने देश भर के इन स्पेस विशेषज्ञों और उद्योग भागीदारों से राज्य के किसानों के लिए कृषि पद्धतियों में सुधार लाने और सूखे तथा बाढ़ से जुड़ी तैयारियों को मजबूत करने के लिए आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। झांसी में आज से 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 शुरू होगी। इसमें 3 डिवीजन की कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी। खेल निदेशक डॉ आरपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश को मेजबानी मिलना गौरव की बात है।
2: उत्तर प्रदेश तो सदैव खेलों को दुनिया में विकास कर रहा है और उसी के सापेक्ष हमने वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप ले लिया, जिसका उद्घाटन हो जाएगा 10 तारीख को और 21 अक्टूबर को उसका समापन किया जाएगा।
1: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अंचल में कल से मौसम के शुष्क रहने के संकेत दिए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और जनहित के विषयों पर की प्रदेश स्तरीय समीक्षा। कहा अधिकतम 24 घंटे में मिलना चाहिए शिकायतों का संतोषजनक जवाब। और मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए नया मोबाइल फोन खरीदने की आवश्यकता नहीं। सोशल मीडिया की अफवाहों पर खाद्य एवं रसद विभाग ने लगाया विराम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं कमला बोस का राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना 1 ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना 3 ताल में। विलंबित रचना के बोल हैं हरि को नाम सुमिर ले और द्रुत रचना के बोल हैं कन मन कवा परी लोरी माई।

आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनूप कुमार बैनर्जी, और हारमोनियम पर हैं भीमेश्वर दयाल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कमला बोस का राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अनूप बैनर्जी और हारमोनियम पर थे भीमेश्वर दयाल। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 8 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित

0: दर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी

0: जिलाधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
1: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह यह दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
3: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
2: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
4: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
2: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
5: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना धन और जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
2: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम करकेट्टा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।

0: आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवि पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर ग्रेटर फोकस ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। चेयर्स वैलिडेटरी सेशन ऑफ नेशनल डिपार्टमेंटल समिट ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Delhi police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 International to level 5 match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centres to be developed as centres of community participation. He said families living near Anganwadi centres should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. Discussing issues related to women's safety, Mr. Modi advised the development of age-appropriate modules for children on women's safety, dignity and empowerment. He also stressed the importance of preventive measures through coordinated efforts across various departments. Prime Minister Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies amid rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India who participated in the World Skills Competition Shanghai 2026 at his residence in New Delhi yesterday. Congratulating the participants on representing India on the global stage, Mr. Modi urged them to develop skills in line with the requirements of the international market. He also encouraged them to contribute to strengthening India's skill training ecosystem by sharing their experiences and suggestions, and urged them to become ambassadors of skill development.
5: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका आप

0: He's been bipolar battles across four states, Union Territory. The Asian Age headlines, Delhi turns into fortress to halt CJP protests today. The papers add that 40,000 plus security personnel deployed, 45 metro stations shut and mobile internet suspended in areas near protest site and diversions in most routes. Another prominent story covered in all newspapers is the Indian origin jurist Navanatham Navi Pillai winning the Nobel Peace Prize. The Hindu says international jurist Navi Pillai wins Nobel Peace Prize. The paper adds that she was born in Durban in Tamil origin parents, grew up under apartheid and studied law at Harvard. And finally, a story in the Indian Express says, seized from Thane 2 years ago, infant orangutan sets to return to Indonesia. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar. Today, tightened security across national capital, Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at the World Bowls Champion of Champions after reaching the semi-finals in Australia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवां साल बच्चियों की सेहत, तग़ज़िये और मजमूई नशोनुमा पर मज़ीद तवज्जो देने के लिए कहा है। उन्होंने ख़वातीन और बच्चों की तरक्की से मुताल्लिक़ कौमी महकमा जाती सरबरा मीटिंग के इख्तितामी जलसे की सदारत की। दिल्ली पुलिस ने आज कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर मुजव्वज़ा मुजाहिरों की इजाज़त नहीं दी है। उसने कौमी राजधानी के पूरे इलाके में हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए हैं। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों से आने और जाने पर बंदिश लगा दी है। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों समेत उत्तर प्रदेश के सभी 10 उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला चुन लिया गया है। अमेरिका ने तेल की इतनी ज्यादा कीमतों के दौरान, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, अगले साल अप्रैल तक आलमी मार्केट में रूसी डीजल की फरोख्त पर आयद बंदिशें हटा ली हैं। खेलों में पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड बोल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस के सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क के अब तक के पहले तमगे को यकीनी बना लिया है। और मर्दों के क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 बैन अलाकवामी मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवां साल बच्चियों की सेहत, तग़ज़िये और मजमूई नशोनुमा पर मज़ीद तवज्जो के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह रायज़नी कल नई दिल्ली में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की से मुताल्लिक़ 2 रोज़ा कौमी महकमा जाती सरबरा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे की सदारत करते हुए कही। जनाब मोदी ने जन भागीदारी यानि अवामी शिरकत की अहमियत को उजागर किया और आंगनबाड़ी मरकजों को समाजी शराकतदारी मरकजों के तौर पर तैयार करने के लिए कहा। जनाब मोदी ने ख़वातीन की हिफाजत और उन्हें बाख्तियार बनाए जाने के बारे में बच्चों के लिए उनकी उम्र के मुताबिक मॉड्यूल्स तैयार करने का मशवरा दिया।
3: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
2: उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में मरबूत कोशिशों के जरिए रोकथाम के इकदामात की अहमियत पर भी जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने कल कौमी राजधानी में जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से मुजव्वजा मुजाहिरे की इजाजत नहीं दी है। उसने रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी और अवाम की भलाई से मुतालिक तशवीश का जिक्र किया है। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने कहा कि

हुकूमत इन कंपनियों को महसूल में शिरकत की बुनियाद पर स्पेक्ट्रम जारी करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बातचीत के बाद 7 अप्रैल 2027 तक रूसी डीजल की फरोख्त और दरामद पर आयद बंदिशें आर्जी तौर पर उठा ली हैं। अमरीका के खजाने के महकमे ने इस फैसले का ऐलान कल रात किया, जिसके तहत रूसी डीजल की फरोख्त, फराहमी, लदे हुए डीजल को उतारने और इसकी दरामद से मुतालिक नकलो हमल का इख्तियार दिया गया है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में अपने मुल्क में वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले ईंधन की कीमतों में कमी लाने के अंदरूनी मुल्क सियासी दबाव का सामना है। ईंधन की सप्लाई में रुकावटों के दौरान डीजल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा हुआ है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कल रात अदीस अबाबा में इथियोपिया के वजीर आजम एबी अहमद अली से मुलाकात की और वजीर आजम नरेंद्र

0: कीमतों में कमी लाने के अंदरूनी मुल्क सियासी दबाव का सामना है। ईंधन की सप्लाई में रुकावटों के दौरान डीजल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा हुआ है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कल रात अदीस अबाबा में इथोपिया के वजीर आजम एबी अहमद अली से मुलाकात की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नए ख्वाहिशात पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हालिया बरसों में भारत और इथोपिया के दरमियान दो तरफा तआवुन में नुमाया तेजी आई है, जिससे दोनों मुल्कों के मुश्तरक तरक्याती अजाइम और जुनूब जुनूब यकजहती की अक्कासी होती है। बाद में एक इज्तम से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अफ्रीकी ममालिक से जोर देकर कहा कि वो आलमी जनूब की तशवीशात को मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक पर आलमी बहरान के असरात को पुरजोर तरीके से बयान करना जरूरी है ताकि आलमी बिरादरी उसे नजरअंदाज न कर सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ओडिशा में सब इंस्पेक्टर भर्ती इम्तिहान 2024 का सवालनामा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले में ओडिशा और मगरबी बंगाल में 10 मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी। ईडी के अहलकारों के मुताबिक यह मामला ओडिशा पुलिस की जानिब से पिछले साल अक्टूबर में दर्ज की गई एक एफआईआर से शुरू हुआ था, जिसे बाद में मरकजी तहकीकाती ब्यूरो को सौंप दिया गया था। ईडी के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ एजेंसियों और उनसे वाबस्ता अफराद के रोल की भी जांच की जा रही है। एजेंसी ने मजीद कहा कि ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती में मुबैना घोटाले के ताल्लुक से जारी तहकीकात और तलाशी की कार्रवाइयों से ऐसी कंपनियों और इदारों के मुबैना मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है जो अब तक तहकीकात के दायरे से बाहर थीं। भारत के महकमा मौसमियात ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ आंधी और तूफान की भी पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के शहर बरहम में वर्ल्ड बोल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस मुकाबले में अभी तक के पहले तमगे को मुल्क के लिए यकीनी बनाकर तारीख रकम की है। आसाम के 43 साल इस खिलाड़ी ने मर्दों के सिंगल्स मुकाबले के सेमीफाइनल्स में पहुंचकर एक संगे मील तय किया है। सोनोवाल ने क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के हैरीमैन यूएन को हराया। वो आसाम पुलिस के अहलकार हैं और भारत के एक सरकर्दा लॉन बोल्स खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उन्होंने 2026 के एशियाई लॉन बोल्स में सोने का तमगा जीता था। मर्दों के क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे टी20 बैन लगाए मैच में हरा दिया है। यह मैच कल रात रांची में खेला गया। इस तरह से 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। 250 रनों का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर्स और 3 गेंदों में 252 रन बनाए। इससे कबल भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए थे। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा टी20 बैन अल-अक़वामी मैच इंदौर में कल खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल समेत 4 रियासतों में हुए जिमनी चुनाव के नतज के ऐलान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी बंगाल की 2 असम्बली सीटों और आसाम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी कामयाब, जबकि तमिलनाडु में वजीर विजय की पार्टी टीवीके ने जीत दर्ज की। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, भारत और लाइबेरिया ने खलीजी खित्ते और इससे मुलहका इलाकों में तिजारती जहाजों और मल्लाहों पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की है। साल 2025-26 में भारत की दिफाई बरामदात 38,424 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 60% से ज्यादा है। वजीर दिफा के इस बयान को अखबारों ने नुमाया किया है। वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इथियोपिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की और तालीम, तिजारत, सरमायाकारी समेत डिजिटल शोबों में दो तरफा तआवुन पर तबादले ख्याल किया। इस खबर को भी अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमा साल बच्चियों की सेहत, तग़ज़िये और मजमूई नशोनुमा पर मजीद तवज्जो देने के लिए कहा है। उन्होंने ख्वातीन और बच्चों की तरक्की से मुतालिक कौमी महकमा जाती सरबरा मीटिंग के अख्तितामी जलसे की सदारत की। दिल्ली पुलिस

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। नमस्कार प्रयागराज, मैं हूं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र, हाजिर हूं आज का ये अंक लेकर। श्रोताओं, आज 10 अक्टूबर है, तो आप कहेंगे क्या खास बात है 10 अक्टूबर है। भाई आज 10 है, कल 11 होगी, उसके पहले 9 भी रही होगी, रही क्या होगी, 9 थी। ईश्वर ने तो सारे दिनों को एक जैसा ही बनाया है, लेकिन कुछ दिन जिनके साथ कुछ खास बात जुड़ जाती है वो दिन हमारे लिए खास बन जाते हैं। और ऐसे ही 10 अक्टूबर हमारे लिए बेहद खास बन गया है, क्योंकि आज के दिन हम मनाते हैं दो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। और अगर हम कहें कि कैसे महत्व की बातें, तो जीवन में हर कुछ महत्वपूर्ण है। आज जिन चीजों को हम महत्व नहीं दे पाते या जिनके महत्व को नहीं समझ पाते, कुछ दिन के लिए उनको अपने जीवन से हटा के देखिए, आपको हर पल खटकेगा कि वो चीज होती तो ऐसा होता, वो चीज होती तो ऐसा होता। तो ये कहा गया है कि जैसे एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही थी कि अगर पानी गंदा भी है तो उसे भी संभाल के रखिए, पीने के ना सही, आग बुझाने के काम तो आएगा। तो प्रकृति ने हमें जितने भी संसाधन दे रखे हैं वो किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए ही उपयोगी हैं, और हमें उन्हें संभाल कर संजो कर रखना है। और जैसे कि हमने बात की कि आज का दिन क्यों खास बना, तो भाई आज दो

महत्वपूर्ण दिवस हम लोग मना रहे हैं। एक हमारा नेशनल है, दूसरा इंटरनेशनल है, लेकिन दिन दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय डाक दिवस, उस चिट्ठी का दिन जिसने दिलों को जोड़ा, जिसने अक्सर हमें रुलाया, हमारी आंखें भर दी, कब बिना कुछ कहे सुने हमारा मन अंदर से गुदगुदा गया। वो महकते खतों का जमाना भला कौन भूल सकता है। आज हम विकास के पथ पर बहुत आगे चल चुके हैं, चिट्ठियों का आना जाना लगभग कम हो गया है, मेल्स हैं, सोशल साइट्स हैं, तमाम सोशल ग्रुप हैं, तो हम उन सब पे बातचीत कर लेते हैं, मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज या सोशल मैसेज जो कुछ भी होता है हम कर लेते हैं, हमारी बात उन तक पहुंच जाती है। लेकिन फर्क है दोनों में, जब चिट्ठी आती थी ना उससे हमारे दिल जुड़ते थे, हमारी भावनाएं जुड़ी होती थी, और आज तो चूंकि इसमें श्रम मेहनत नहीं है, बस खटखट खटखट खटखट उंगलियों से कुछ लिखा और भेज दिया, उधर से रिप्लाई आया। लेकिन जब खत लिखे जाते थे तो एक खत लिखने से पहले जाने कितने कागज हम अधूरे लिखे हुए फेंक दिया करते थे, कि चूंकि जो भाव थे हमारे अंदर के वो शायद हम कागज पर जब तक नहीं उकेर पाते थे हमारा खत पूरा नहीं होता था। तो एक तो ये दिन है, और खत का जो असली बात है वो शायद मैं अपने शब्दों से आपको उसकी अनुभूति ना करा पाऊँ, लेकिन आज हमारे जो श्रोता आज से 20 साल पहले खतों के दौर को देखा है, जिन्होंने जिया है, वो शायद मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। वो इमोशंस उनकी मन में, उनकी आँखों में, मस्तिष्क में ज़रूर तैरने लगे होंगे। और दूसरा दिन जो है वो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। एक खत जो हमारे मन को उद्वेलित कर देता था, हमारे मन को कभी खुशी से कभी गम से भर देता था, वहीं आज के जो संदेशों के आदान प्रदान के माध्यम है वो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। हम इतना उन पे लगे पड़े हैं कि हमारी आंखों का नुकसान, हमारे चित्त का नुकसान, हमारी एकाग्रता का नुकसान, कुल मिलाकर के जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ रहा है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम को अगर हम अपना छोटा सा नाम दें तो आज का जो नमस्कार प्रयागराज है उसको अगर हम एक छोटा नाम दें तो वह बन जाएगा चिट्ठी और चित्त। कभी सोचा है आपने, हमारे दादाजी कहते थे चिट्ठी आई है तो पूरे मोहल्ले में खुशी फैल जाती थी। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक विभाग की नींव रखी थी, और आज भारत की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। 1,55,000 से ज्यादा डाकघर, 9 जोन, 23 सर्किल, आज भी जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता ना वहां आज भी हमारा डाकिया पहुंचता है। और दूसरी तरफ है हमारा मन। WHO कहता है दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा है। हम फिजिकल हेल्थ की तो बात करते हैं पर मेंटल हेल्थ पर हम पता नहीं क्यों चुप हो जाते हैं। तो आज का सवाल भी यही है, क्या चिट्ठी लिखने से मन हल्का हो सकता है? अगर आपके मन में इसके कुछ जवाब सूझें तो आप हमारे यहाँ जहाँ भी संदेश भेजते हैं, अपने मेल्स भेजते हैं, वहाँ पर आप भी अपने मन की बात लिख करके भेजिएगा कि क्या चिट्ठी लिखने से मन हल्का होता है। और अब बात करते हैं मन की बात पर। आज हमने जैसे आपको बताया है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। 1992 से हर साल 10 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है ताकि हम समझें कि मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और मस्तिष्क ही हमारी दिनचर्या को या फिर हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या करना है, हमारी क्या दिशा होनी चाहिए, ये सब कुछ हमारा मस्तिष्क निर्धारित करता है, और उसी के आदेशानुसार हमारा बाकी शरीर उस कार्य को संपादित करता है। तो भैया
बाकी किसी और शारीरिक स्वास्थ्य से बिल्कुल भी कमतर मत समझिए, मानसिक स्वास्थ्य को।

और इसको भी बहुत अच्छे से संतुलित रखिए। हम अक्सर कहते हैं अरे टेंशन मत ले, पर टेंशन लेना बंद थोड़ी होता है। मन खराब होने के तीन छोटे संकेत हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। पहला है नींद का बिगड़ जाना, हर समय थका हुआ महसूस करना, जिन चीजों में पहले मजा आता था उनमें अब मन न लगना। ये संकेत हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अब अगर आपको या आपके किसी अपने को ऐसा लग रहा है तो ये कमजोरी नहीं है, ये भी बुखार जैसी एक बीमारी है, इलाज से ठीक हो जाता है। बस इलाज करना जरूरी है और बात को समझना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक सबसे आसान थेरेपी है लेटर थेरेपी। रोज 10 मिनट अपने मन की बात एक कागज पर लिखिए, किसी को भेजना जरूरी नहीं है, बस लिख दीजिए आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। पुराने जमाने में हम चिट्ठी लिखते थे, मन हल्का होता था। आज हम टाइप करते हैं, डिलीट करते हैं, कागज पर लिखने से मन सच में हल्का होता है। तो चलिए आज 10 अक्टूबर के दिन एक सफेद कागज लीजिए, ऊपर लिखिए प्यारे मन, और अपने मन के नाम ही कुछ लिख डालिए। वो चिट्ठी आप जो अपने लिए लिखेंगे, 2-3 दिन बाद उसमें जो भाव आपने पिरोए हैं, जो आपने लिखे हैं, कुछ दिन बाद पढ़िए, हफ्ते 10 दिन बाद देखिएगा वो आपकी लिखावट ही आपके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान बिखेर जाएगी। बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि दोनों दिवस बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत लंबी बातचीत इन पे की जा सकती है, लेकिन अगर कार्यक्रम में एक छोटा सा गाना ना हो तो फिर कार्यक्रम का रंग भी नहीं बनता है। तो चलिए हमारे आज के जो दोनों खास दिन थे उनका उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे कि जो लिखने से हमारे मन को शांति मिलती है उसको हमें समझना है, और मानसिक स्वास्थ्य के अगर संकेत हमें मिलते हैं तो हमें समय रहते उनका इलाज करा लेना है, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे आसपास साथ वाले भी स्वस्थ रहें।

0: लिखेंगे, खत नहीं लिखेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये था नमस्कार प्रयागराज का आज का अंक। खतों के बारे में, डाकिया के बारे में और डाक के इतिहास के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से कहानियां जरूर सुनिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा।

शरीर वही है जो भावनाओं से भरा हो, भावनाओं से खाली शरीर बस हाड़ मांस का पुतला है। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र को। नमस्कार प्रयागराज।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा।

0: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यह है कार्यक्रम का आखिरी गाना अलीशा चिनाय और जुबीन गर्ग की आवाजों में। समीर अंजान के बोलों को सिरों में पिरोया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है क्रिश 3।

0: हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गोरखपुर और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है गिरीश चौबे का।
3: गोरखपुर जिले में 4 सितंबर को श्री कृष्ण के प्रकाटोत्सव पर्व का आयोजन गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धा, भव्यता और हर्षोल्लास से मनाया गया। गोरखपीठ के इस पारंपरिक कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए गोरखपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने मध्य रात्रि को गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर विधि विधान से विशिष्ट पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्रीहरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को फूलों से सजे पालने में बैठाकर श्रद्धा भाव से उन्हें झुलाया और आरती उतारी। प्रभु श्री कृष्ण का प्रकाष्ठ अनुष्ठान पूर्ण होने के उपरांत मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं को फलाहार और प्रसाद वितरित किया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान समारोह प्रेक्षागृह में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश भर के शिक्षकों का आह्वान किया कि वे शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाएं। यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रदेश और देश का भविष्य बनाएगी। समारोह में बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। शिक्षकों को पुरस्कार देते समय सीएम योगी ने उनसे आत्मीय संवाद कर बधाई दी और उन्हें खूब प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विगत 9.5 साल में शिक्षा व्यवस्था में आए सकारात्मक परिवर्तन की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बच्चे स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 1,60,00,000 बच्चों के अकाउंट में DBT के माध्यम से पैसे पहुँचा रही है। प्रोजेक्ट अलंकार ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बदलाव लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से अपील की कि हमारी प्रतिस्पर्धा समय से है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति विश्वास को बनाए रखना सरकार और शिक्षकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
4: शिक्षक का सम्मान हो यह हमारे लिए केवल मानदेय बढ़ाने का मुद्दा नहीं था, बल्कि बच्चे के भविष्य के साथ जिसे खड़ा रहना है पहले उसका स्वयं का सम्मान होना चाहिए। सर्विस से जुड़े हुए मामले में ट्रांसपेरेंसी आए, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल भी विकसित किया गया। अब शिक्षक की समस्या फाइलों में कैद नहीं होगी, टाइम बाउंड उसका समस्या का समाधान होगा।
3: विगत 30 सितंबर को गोरखनाथ मंदिर में पितृपक्ष के अवसर पर महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ की श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए गोरखपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए गोरखपीठ के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि

0: अयोध्या में रामलला के प्रकटीकरण के समय महंत दिग्विजयनाथ भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ के दोनों पूज्य संतों ने संत समाज को एकजुट करने के साथ ही श्री राम मंदिर समाज व राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। समय समाज और राष्ट्र के अनुकूल चलना ही महापुरुषों का गुण होता है। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन दोनों महंत श्री की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि जीवन में सिद्धि का सबसे बड़ा मंत्र है स्थिरता। स्थिरता का भाव हमें आगे बढ़ने का माध्यम होता है। जब हम दोनों पूज्य संतों ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो हम सबको ऐसी ही प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
1: वास्तव में जब हम इन दोनों पूज्य संतों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, देखते हैं, हम सब के लिए वो एक प्रेरणा होती है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जहाँ हिंदू समाज के एकता के लिए, प्रचंड हिंदुत्व के वेग को आगे बढ़ाने के पक्षधर थे, तो महंत अवैधनाथ जी महाराज उस प्रचंड वेग को आगे बढ़ाने के लिए बिखरी हुई हिंदू ताकत को फिर से एकजुट करने के लिए, सामाजिक समता रूपी माहौल को एकजुट करने के लिए अहर्निश प्रयास किए और सहभोज का आयोजन उसी क्रम में किए गए अभियान का हिस्सा था।
0: जिले में शारदीय नवरात्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर जिले में तैयारी चल रही है। माता की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह जगह पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। 11 अक्टूबर से नवरात्र का शुभारंभ होगा।
2: गोरखपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
3: शाहजहांपुर जिले में इस माह विकास, प्रशासन, धार्मिक आयोजन, स्वास्थ्य, परिवहन, स्वच्छता और किसान राहत से जुड़ी गतिविधियां प्रमुखता से सामने आईं। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के सर्वे और राहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ। शहर की सड़कों को दुरुस्त करने की समय सीमा तय की गई और ऐतिहासिक खिन्नीबाग रामलीला की तैयारियों ने भी जोर पकड़ा। जिले की प्राचीन खिन्नीबाग रामलीला का शुभारंभ 8 अक्टूबर को श्री गणेश शोभायात्रा और मंच पूजन के साथ हुआ। 9 से 20 अक्टूबर तक प्रतिदिन रामलीला का मंचन किया जाएगा। 21 अक्टूबर को राजगद्दी शोभा यात्रा और 22 अक्टूबर को चौक में भरत मिलाप का आयोजन होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर रामलीला समिति की बैठक हुई, जिसमें व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ समिति को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और धन संग्रह बढ़ाने पर जोर दिया गया। शहर की बदहाल सड़कों को लेकर प्रशासन ने 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि निर्धारित अवधि तक सड़कों को ठीक कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीवर लाइन डालने के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को 5 महीने की मेहनत के बाद दुरुस्त कराया गया था। अब 250 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति परियोजना के तहत नई पाइपलाइन डालने के लिए दोबारा सड़कों की खुदाई की जाएगी। परियोजना को लेकर शासन स्तर पर भी मंथन हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान लोगों को असुविधा होती है, लेकिन सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करना भी जरूरी है। गंगा एक्सप्रेस वे से शाहजहांपुर मुख्यालय को जोड़ने के प्रस्तावित मार्ग पर पेड़ों के संबंध में भी विचार विमर्श के बाद समाधान निकाला गया। बड़नगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा संकल्प मोटरसाइकिल यात्रा शाहजहांपुर पहुंची। अजीजगंज स्थित सहज मार्ग जंक्शन पर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना तथा यात्रा में शामिल लोगों ने महात्मा रामचंद्र जी महाराज यानी बापूजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा में श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़े कई साधक भी शामिल रहे। यात्रियों की इच्छा पर मिशन के प्रशिक्षक राजगोपाल अग्रवाल ने कार्यक्रम की व्यवस्था कराई। इस दौरान रामचंद्र मिशन से जुड़े पदाधिकारी और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। 1 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में साफ सफाई, जल भराव की रोकथाम, जल निकासी, फॉगिंग और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने पर जोर दिया जाएगा। 12 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग बुखार और संचारी रोगों की निगरानी, जांच एवं उपचार के साथ मच्छर नियंत्रण की गतिविधियां चलाएगा। नगर विकास विभाग नगरीय क्षेत्रों में सफाई और फॉगिंग कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी, झाड़ियों की कटाई और तालाबों की सफाई पर जोर रहेगा। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा। बाल विकास विभाग कुपोषित बच्चों को चिन्हित करेगा, जबकि पशुपालन, कृषि, सिंचाई और उद्यान विभाग भी अभियान में अपनी भूमिका निभाएंगे। ऑपरेशन कवच 2 के अंतर्गत परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने विशेष परिवर्तन अभियान चलाया। सुरक्षा मानकों और परमिट की शर्तों का उल्लंघन मिलने पर 12 बसों के चालान किए गए, जबकि 5 बसों को सीज कर दिया गया। एक मालवाहक वाहन में यात्रियों के मिलने पर उसे भी निरुद्ध किया गया। अभियान में RTO प्रवर्तन हरिओम, यात्री माल कर अधिकारी RP गौतम, परिवहन विभाग के कर्मचारी और यातायात उप निरीक्षक विनय कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ मौजूद।

0: मौजूद रहे। विभाग ने वाहन स्वामियों को नियमों के अनुसार बांध चलाने की चेतावनी दी है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में हुई भारी बारिश और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बाद प्रशासन ने राहत प्रक्रिया तेज कर दी है। राजस्व विभाग की टीमों ने 4 तहसीलों के 85 गांवों में 381 किसानों की 161.41 हेक्टेयर फसल क्षति दर्ज की है। सर्वे और पोर्टल पर फीडिंग का काम अभी भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों को नियमानुसार राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर युवक मंगल दल चौड़ेरा के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। अध्यक्ष इंद्रजीत लोधी के नेतृत्व में युवाओं ने हरदोई पलिया मार्ग पर रिलायंस पावर परियोजना के पास से लालबाग चौराहे तक डिवाइडर की सफाई की। डिवाइडर पर जमा कूड़ा करकट हटाने के साथ पौधों की सफाई की गई और नए पौधे भी रोपे गए। युवाओं ने ग्रामीणों और राहगीरों को डिवाइडर पर कूड़ा डालने के लिए जागरूक किया। उनका कहना था कि डिवाइडर पर उगी झाड़ियों और जमा कूड़े के कारण दूसरी ओर से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। श्रमदान में युवक मंगल के उपाध्यक्ष किशन कुमार, मीनू सिंह, अभिषेक वर्मा, शुभम वर्मा, सोनू, मंत्री आशीष कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशगान।

0: अभी आप संवेद स्वरों में ये देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।

की भीड़ में शामिल है अकेलापन भी, आज हर जहन है तन्हाई का मारा देखो। दस अक्टूबर आलमी यौमे ज़हनी सेहत। अफसोस, सद अफसोस, आज हम इंसान दुनिया को हासिल करने की होड़ में अपने होश व हवास इतने गंवा बैठे हैं कि हमें आज ज़हनी सेहत का दिन मनाना पड़ रहा है। काबिले गौर है कि हम तरक्की की किन राहों पर हैं कि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 45 करोड़ अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया के मरीज हैं। सन 2002 के अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 15 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद डिप्रेशन का शिकार थे। सोचिए आज 2026 आते आते ये तादाद कई करोड़ और बढ़ चुकी है। अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में हर 4 में से एक शख्स जहनी तौर पर किसी न किसी हद तक बीमार है, जबकि इंसानी जिस्म को चलाने, जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है सेहतमंद ज़हन और दिमाग की। मगर आज हम उसी जिंदगी को कामयाब बनाने और कामयाबी की दौड़ में आगे निकल जाने की होड़ में अपनी ज़हनी सेहत से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि उससे अनजान भी हैं। हम जिस्मानी तकलीफ को दूर करने के लिए फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन ज़हनी बदसुकूनी, ज़हनी थकान और ज़हनी तकलीफ को बस डिप्रेशन कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं या नींद की गोलियां खाकर अपने दिमाग को कुछ घंटों के लिए सुकून से सुला देते हैं। आइए जानते हैं कि ज़हनी सेहत है क्या। अगर हम अपने जज्बात को बखूबी समझ रहे हैं और उन पर काबू भी पा सकते हैं, तफक्कुरात और मुश्किलात से बासानी गुजर सकते हैं, नाकामी या परेशानी को मुस्कुराकर कबूल कर सकते हैं और नई उम्मीद, नए इरादों के साथ जिंदगी के चैलेंजेस को कबूल कर सकते हैं, तो फिर हम ज़हनी तौर पर सेहतमंद कहलाने के हकदार।

0: लेकिन आज के इस दौर में, खास तौर से हमारे नौजवान नस्ल, क्या इस रोशनी में ज़हनी सेहतमंद कहला सकती है? हरगिज़ नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती, सब्र और बर्दाश्त से आरी, मायूसी में डूबी हुई, भीड़ में रहकर भी तन्हा, जारियत पसंद, शिद्दत पसंद, ऐसी है हमारी नौजवान नस्ल। वजह, कनात पसंदी का फुकदान, हर मामले में दूसरों से आगे बढ़ जाने की होड़, शिकस्त को अपनी अना का मसला बना लेना, ऐश पसंदी की जिंदगी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार, जिंदगी गुजारने के बदलते तौर तरीके, सोने जागने के गलत औकात, शॉर्टकट के जरिए मंजिल को पा लेने की ख्वाहिश, और बेवक्त और जंग फूट का बेजा इस्तेमाल, नतीजा हमारी नौजवान नस्ल जहनी तौर पर मुकम्मल बीमार होती जा रही है, और उसी के बदले में खुदकुशी और कत्ल की बढ़ती वारदातें, लड़ाइयाँ, जहनी तवासुन का बिगड़ना बढ़ता चला जा रहा है। अफसोस होता है ये देखकर कि आज सड़कों पर मजजूब नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो जिंदगी की किसी भी नाकामी को अपने दिल से लगा लेते हैं और अपने जहनों दिमाग को बिल्कुल भटका देते हैं, या तो नशे के आदी हो जाते हैं या फिर जिंदगियों से मायूस सड़कों पर फटे हाल घूमना शुरू कर देते हैं।
1: इस जहनी तवाजुन को बरकरार रखने के लिए और जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए किस तरह नौजवान नस्ल की काउंसलिंग की जाए और उन्हें किस तरह सिखाया जाए कि हमें अपने जहन की सेहत का ख्याल रखना है, आइए बात करते हैं इस सिलसिले में काउंसलर डॉक्टर तबस्सुम खान से।
2: जी तबस्सुम साहिबा, आप एक काउंसलर हैं। आज हम आलमी यौम ज़हनी सेहत मना रहे हैं, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काउंसलर हैं तो किस तरह आप काउंसलिंग करती हैं लोगों की, खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है वो आजकल इतना ज़्यादा जहनी तनाव में है, इतना ज़्यादा जहनी तौर पर बीमार है, उसकी काउंसलिंग आप कैसे करती हैं और क्या समझाती हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस यंग जनरेशन को इस सिलसिले में?
3: वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और मेंटल हेल्थ डे हमें ये याद दिलाता है कि हमारे लिए सिर्फ फिज़िकल हेल्थ ही इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि फ़िज़िकल हेल्थ है, लेकिन लोग तरजीह ज़्यादा फिज़िकल हेल्थ पे देते हैं और मेंटल हेल्थ पे कम देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और लोगों को जैसे कि पता ही नहीं चलता है बीमारी जो होती है, जैसे कि स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी, ख़ास करके डिप्रेशन लोग, उसका भी एक स्केल है, सीवियर, मॉडरेट, हाई, कितना, तो ये जो है लोग अंदर ही अंदर इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं और सामने वाले को पता नहीं होता कि ये सामने वाला बंदा किस, मतलब स्ट्रेस में है या इसको स्ट्रेस की वजह से क्या बीमारी होने लगी है, तो ये लोगों में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों को खुद को ही पता नहीं होता कि अगर हमारा स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है तो हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या हमारे साथ अगर एनजाइटी हो रही है तो ये क्या हो रहा है, तो एक सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत कम है। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि लोग ये आजकल जो इतना तनाव है अगर हो रहा है तो उसमें लोगों की मदद लें, अपनों की मदद लें, प्रोफेशनल हेल्प लें। जैसे कि आपने ये सवाल किया है कि एज अ काउंसलर हम क्या करते हैं, तो काउंसलिंग में सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि लिसनिंग विदाउट जजमेंट, सुनना, अपने क्लाइंट की बात को सुनना और इस तरीके से सुनना कि उसे बिना जज करे, उसे ये नहीं लगे कि हम उसे गलत या सही बोल रहे हैं, और अच्छे से एक्सप्रेशन अच्छे देना अपने चेहरे के, ताकि उसे कुछ ऐसा ना लगे कि वो कुछ गलत बोल रहा है, जो भी इमोशंस हैं वो खुलकर

करें, और उसको एक कंफर्टेबल सेफ प्लेस उसको प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को अच्छे से शेयर करे और अपने खुलकर सब बातें अपने थेरेपिस्ट को बताए अपने काउंसलिंग में। तो सबसे पहले हमारा यही होता है, उसके बाद हम इमोशंस को, उनके बिहेवियर को, उनके थॉट्स को, फीलिंग्स को अच्छे तरीके से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, हमारे टेस्ट्स होते हैं उनका असेसमेंट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर जो भी डायग्नोसिस होती है उसके अकॉर्डिंग हम थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। तो थेरेपीज भी डिफरेंट डिफरेंट

0: हैं, हमारे टेस्ट्स होते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर जो भी डायग्नोसिस होती है उसके अकॉर्डिंग हम थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। तो थेरेपीज़ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज़ होती हैं, तो उनका क्या डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें कोई हमें ऐसा लगता है कि क्लिनिकली बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है, बहुत ज़्यादा मतलब हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत है या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैंडल करता है। अलग अलग बीमारी जैसे उसको हैं, सीवियर हैं, या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है तो साइकेट्रिस्ट उसको डील करते हैं, मेडिसिन्स भी देते हैं और थेरेपीज़ भी साथ में चलती हैं। तो दूसरा आपने सवाल किया जैसे कि यंग जनरेशन में आजकल ये बहुत कॉमन है, तो जी यंग जनरेशन हो या फिर छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चों में भी आजकल बहुत कॉमन है जैसे बीमारी ऑटिज़म, आपने सुना होगा, ADHD, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उनका भी बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा स्पीच डिले है, तो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। तो ये एक तरीके की बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, और डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये यंग जनरेशन में बहुत है। वो इसके जो ज़्यादातर 3-4 वजहें बहुत कॉमन हैं जैसे कि एकेडमिक प्रेशर, करियर का प्रेशर जो होना, और फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर और रिलेशनशिप इश्यूज़, ये सारी वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से यंग जनरेशन आज स्ट्रेस से जूझ रही है। उसकी वजह ज़्यादा स्ट्रेस होता है इन सब चीज़ों से, तो फिर डिप्रेशन, एन्जाइटी, ये सारी चीज़ें, OCD होता है, और भी बीमारियाँ होती हैं, वो सब अलग अलग रूप लेने लगती हैं। तो मैं यंग जनरेशन के लिए ये कहना चाहूँगी, अगर आपको स्ट्रेस है या ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो अपने लव वंस, अपनी फैमिली से शेयर करें, अपनी और अपने फ्रेंड से शेयर करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका कोई ऐसा नहीं जो समझ रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए। और पेरेंट्स से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ आप एक्सपेक्टेशंस तो लगा रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ अपने बच्चों के इमोशंस को समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। फौरन उनको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो उनके थॉट्स को, उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को समझिए आप कि वो क्या चाह रहे हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन अपना अच्छा बिल्ड कीजिए, उनके साथ अच्छा अपना बॉन्ड बिल्ड कीजिए आप, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए आप, ताकि जब बच्चा आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट कीजिए। और यंग जनरेशन से यही बोलूँगी कि मदद लेना कोई वीकनेस नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोगों से अपना फीलिंग्स शेयर कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, अपनी आपको जो भी लग रहा है। और अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, तो थेरेपिस्ट से भी आप, प्रोफेशनल से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू।
1: तो आइए इस सिलसिले में हम आज बात करते हैं नफ्सियात के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जमीला कुरैशी साहिबा से।
2: हेलो
3: हेलो जी डॉक्टर जमीला साहिबा, आप माहिर नफ्सियात रही हैं, नफ्सियात की टीचर रही हैं, आपका
2: जी,
3: हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। मैम, आज
2: शुक्रिया।
3: हम आलमी योमे जहनी सेहत मना रहे हैं, मेंटल हेल्थ डे। तो मैं सिलसिले में आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के दौर में इस दिन को मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
2: नहीं, आज के दौर में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज दुनिया जो है इतनी तेजी से बदली है, मतलब
3: जी
2: लगातार बदल रही है,
3: जी
2: उसमें युवा पीढ़ी में भटकाव बहुत है
3: जी
2: और इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज जो तमाम इस तरह के मतलब वाकयात हो रहे
3: जी
2: हैं, मतलब रिश्तों के बीच में, स्टूडेंट लाइफ में, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो
3: जी
2: इन सब के बारे में बहुत सीरियसली सोचना बहुत जरूरी है।
3: जी तो आपने जैसे बताया कि आज इतनी दुनिया तेजी से बदल रही है और

0: तरह के बदलाव आ रहे हैं, खासकर हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें, मैम उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके किस चीज के असरात हमारे इन बच्चों पे इतने मनफी पड़ रहे हैं कि वो गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, या उनके जहनी तौर पर जो है वो बीमारियां बढ़ रही हैं?
1: अब आप देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है,
0: जी
1: इसके इतने सारे वजूहात हैं
0: जी
1: कि मतलब वो सब मिलकर एक मतलब नई पीढ़ी बना रहे हैं, और ऐसी नई पीढ़ी जो कि मतलब आक्रामक ज्यादा हो रही है, उसके अंदर मतलब सहन करने की ताकत बहुत कम हो गई है, और सब मतलब एक तरह से जो भौतिकतावादी से कहेंगे मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी,
0: जी जी जी
1: उस तरफ बढ़ रहे हैं, और परिवार टूट रहे हैं।
0: जी
1: अब ये सोचिए कि पहले मतलब वो पूरा परिवार एक साथ रहता
0: जी हाँ
1: था, उसमें दादा दादी चच्ची फुफी सब लोग रहते थे।
0: जी
1: अब बच्चा जो है, अगर किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, उसको घर के अंदर फ्रेंड नहीं कोई मिल रहा है, कोई दोस्त नहीं मिल रहा है,
0: बिल्कुल।
1: और जब बाहर बाहर दोस्त बना रहा है तो अक्सर वो गलत रास्ते पर ही चला जा
0: जी
1: रहा है।
2: अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर जमीला कुरैशी साहिबा से, बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने हमारे नौजवानों को। और हकीकत यह है कि जिस तरह जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए वर्जिश की ज़रूरत है, कसरत की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह जहन की सेहत बरकरार रखने के लिए जहनी वर्जिश की भी ज़रूरत है। और खुसूसन जहन को हल्का फुल्का रखने के लिए अपने मजहब से जुड़ना, अपने अखलाकियात का एहसास पैदा करना, खुसूसन सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें और उनके परेशानियों को समझने की कोशिश करें। अगर हर माँ हर बाप अपने बच्चों का बेहतरीन दोस्त बन जाए तो उसे ना बाहर दोस्त ढूंढने की ज़रूरत है और ना ही फिर उसके भटकने का कोई खतरा। आज जहनी सेहत का आलमी दिन बनाने का मकसद दुनिया भर में जहनी सेहत के मसाइल के बारे में शऊर उजागर करना है। दिमागी बीमारियों के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियों और माशरती दबाव को कम करना है, और साथ ही जहनी तंदुरुस्ती की अहमियत को इंसानों को समझाना है ताकि हम एक सेहतमंद जहनों के साथ सेहतमंद माशरे की तश्कील कर सकें। तो आइए आज हम सब इस कोशिश में शामिल होते हैं, अपने आसपास के लोगों की काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, उनका दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, उनके दुख दर्द शेयर करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के जहनी बीमार लोग किसी न किसी तरह राह रास्त पर आ सकें, और सरकार की कोशिश भी और हमारी कोशिश भी कामयाब हो सके एक सेहतमंद माशरे की तश्कील की। तो अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे।

0: उर्दू कार्यक्रम के तहत अभी आप समाप्त फरमा रहे थे जहनी सेहत पर खुसूसी कार्यक्रम। तहरीर और आवाज़ थी डॉक्टर रबाब अंजुम की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: प्रायोजित कार्यक्रम फेयर एंड लवली मेरे अंदाज में है कुछ खास, सुनिए प्रतिदिन दिन में 1:50 से इसी चैनल पर।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं जलज श्रीवास्तव, इनके स्वर में लीजिए सुनिए तुलसी।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जलश वस्तु को। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 10 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने CJP द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन नहीं करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के DCP बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
2: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो GRP के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने CAPF की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। अमेरिका के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को सम्मानित किया। इस बीच इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने घोषणा की कि कैप्टन स्मिथ को उनके कार्यों के सम्मान में इजराइल का नागरिक वीरता राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से

0: हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाई होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राम सूरत और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

आप सुन रहे थे गंगा गीत, रचना शशि बाला जैन की। आइए इन्हीं की आवाज में आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत झूमर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राम मूरत व साथियों और शशि बाला जैन की आवाज में कार्यक्रम लोक माधुरी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पूर्व नाट्य कलाकार विजय बोस से भेंट वार्ता। भेंट करता है युक्ति भद्र दीक्षित।
2: आकाशवाणी इलाहाबाद और उसके श्रोताओं का आज बड़ा सौभाग्य है के स्टूडियो में श्री विजय बोस पधारे हैं। विजय बोस जो आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए, ख़ास तौर से नाट्य प्रभाग के लिए भीष्म पितामह कहे जाते हैं, आज इनसे हम बात करेंगे इनके विषय में। और ये मैं श्रोताओं को बता दूं कि विजय बोस नाम से कम और बड़े भैया के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो मैं भी उनकी आज्ञा से उनको बड़े भैया ही कहकर संबोधित करूँगा अवश्य। अच्छा तो बड़े भैया, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप रेडियो से कब और कैसे जुड़े?
3: दीक्षित जी, मैं आकाशवाणी से जुड़ने से पूर्व की कुछ बातें, चंद बातें आपको बताना चाहूँगा कि मैं बचपन में नाटक की ओर अथवा संगीत की ओर कैसे
2: आकृष्ट हुआ।
3: मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर थे, उनका जगह जगह ट्रांसफ़र होता रहता था, तो मैं, मेरा अपना जन्म हरिद्वार का है। हरिद्वार में जब पिताजी थे तो मेरा जन्म हुआ, मैं और मेरी छोटी बहन वहाँ जन्मे। उसके बाद हमारे पिताजी काकोरी आ गए। काकोरी की एक घटना मुझे याद है, जब मेरी अवस्था 5 या 6 साल की रही होगी, बहुत छोटा था, तो मैं ये केवल ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ईश्वर प्रदत्त कोई अगर गुण मुझ में आया है तो क्या सूत्र वहीं से है।
2: अच्छा,
3: मैं यथाकथा सोचता रहता हूँ। अच्छा, और आपसे भी कहूँगा कि मुझे आप कुछ गाइड करें इस बारे में।
2: बताइए
3: कि मैं छोटेपन में, मुझे उस जमाने में ग्रामोफोन नया नया निकला था,
2: भोपू वाला
3: जिसमें, जी हाँ, भोपू लगा रहता था और दूर पर बसता था, और बड़े बड़े लोगों के घर में वही ग्रामोफोन ही हुआ करता था। ये बात संभवतः, मैं सन 27 का जन्मा हूँ, 1927, तो 27 में 6 जोड़ दीजिए, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये सन 33 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूर से जब कहीं गाना होता था तो मैं, अंधेरा हो उजाला हो, और मैं सीधा उसके तरफ भागता चला जाता था,
2: गाने की तरफ।
3: ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे इस रुचि को देखकर अब पिताजी मेरे अपने नौकरों चाकरों से, जो ऑफिस के थे, जो स्टेशन के थे, उनसे कहते थे भैया इसको पकड़ो, ज़रा चंचल बच्चा है, इसको ये भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ रहेगा, अंधेरा। और काकोरी उस जमाने में, उस युग की बात कर रहा हूँ, वहाँ से

0: साठ साल पहले की, पैंसठ साल पहले की, तो और भी गांव था, अब तो लखनऊ का एक अंग हो गया है काकोरी। और ये बात घटना उस वक्त की है जब काकोरी केस घट चुका था, तब मेरे पिताजी वहां स्टेशन मास्टर हुए थे। तो उन्होंने मेरे उस शौक को देखते हुए मेरे लिए, मैं यही कहूंगा कि मेरे लिए, वैसे तो परिवार के लिए, उन्होंने एक ग्रामोफोन खरीद लिया।
1: अच्छा।
0: और 20-25 रिकॉर्ड ले लिए। अब बाहर भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
1: हाँ।
0: अब घर में ही बैठकर मैं
1: सुना करते थे।
0: तो छोटे पर उस जमाने में चंडीदास फिल्म आई हुई थी, सहगल और जमुना, ये सब लोग थे उसमें। तो उसका एक गाना था बड़ा प्रसिद्ध, उसको मैं और मेरी बहन दोनों गाया करते थे।
1: अच्छा।
0: और भी जो गाने जो 20-25 हमारे पिताजी ने खरीदे थे वो सब हमने कंठाग्र कर लिए थे। तो अब उससे हुआ ये कि यूं माना जा सकता है कि संगीत के प्रति मेरा झुकाव मेरी
1: पहले से था।
0: पहले से, उस वक्त से आ गया था जब मैं बहुत छोटा था।
1: हाँ।
0: उस वक्त ड्रामा कहीं नहीं था।
1: हाँ। तो अब रेडियो से कैसे जुड़े आप?
0: जी हाँ, अब मैं वही बताने जा रहा हूँ कि मैं जब हम लोग कुछ बड़े हुए, पिताजी चूंकि ट्रांसफरेबल जॉब पर थे, इसलिए उन्होंने हमारे, हम तीन भाई बहनों को जो हम लोग पढ़ने योग्य हो गए, मैं, मेरा छोटा भाई और उसके बाद एक मेरी बहन, हमको लखनऊ में हमारे मौसा और मौसी के पास जो निसंतान थे उनके पास रख दिया कि इनको पढ़ाई लिखाई करवाइए, और वो अपना भटकते रहे उधर। तो हम लोग पढ़ने लगे। तो जब हम धीरे धीरे कक्षा 6 में पहुंचे तो वहाँ ये हुआ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था कि भाई आप क्या लेंगे, ड्राइंग लेंगे, कारपेंट्री लेंगे, जिसे मैनुअल ट्रेनिंग कहते थे, कि आप गाना लेंगे, क्या लेंगे। तो मैंने बड़े शौक से गाना ले लिया और मैं खुशी खुशी अपने घर जब आया तो हमारे मौसा जी ने पूछा, हाँ भाई क्या क्या हुआ तुम्हारे स्कूल में? कहा साहब ये हुआ। और वहाँ मास्टर साहब ने पूछा कि भाई क्या तुम सीखोगे, ये चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने बता दिया इत्तेफाक से कि मैं गाना सीखना चाहता हूँ, मैंने गाने में नाम लिखा लिया। बहुत बिगड़े, बड़े होकर तुम्हें भाड़ बनना है, बड़े होकर ये करना वो करना, वो गाने और बजाने और इन सब के
1: खिलाफ
0: थे। तो मुझे मन मार कर वो विषय छोड़ देना पड़ा। और उनकी पसंद से, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ड्राइंग आंख लेते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी इंसिस्ट किया कि तुम ड्राइंग ले लो। मैंने ड्राइंग ले ली, ड्राइंग ले किसी हद तक, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी रुचि में वो सेकंड स्तर पर थी। तो चल निकला वो ढर्रा, लेकिन वो जो कसक थी वो धरे की धरे रह गई। इत्तफाक से जब मैं और बड़ा हुआ तो मैं कुछ दिन के लिए, मुझे मुजफ्फरनगर भेज दिया गया। मेरे एक आत्मीय थे हमारे परिवार के, उनके पास वो ड्रामा रामा किया करते थे स्टेज के। उस जमाने में जिस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ तो ये शायद अब 36 आ गया।
1: हाँ।
0: धीरे धीरे सन 36-37 आ गया। तो सन 36-37 में मुजफ्फरनगर में जो वो ड्रामे करते थे उनके पास में, पंडित ओम प्रकाश शर्मा उनका नाम था, तो उनके साथ में रहने लगा। वो ड्रामा करवाते थे, वो ड्रामा डायरेक्टर थे, लेखक भी थे। तो उन्होंने कहा चलो भाई, और मेरे बुलाने का नाम, मैं आज आपको बता दूं, मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे बुलाने का नाम है पुलू।
1: पुलू
0: पुलू पुलू, पुलू चलो तुम भी रिहर्सल में चलो, हम रिहर्सल में जा रहे हैं। तो हम सब लोग रिहर्सल में चले गए। वहाँ पर ड्रामे के जो कृष्ण जन्माष्टमी या क्या उस जमाने में राधे श्याम कथावाचक और इन सब के ड्रामे हुआ
1: कश्मीरी के,
0: कश्मीरी
1: राय के यही नाटक हुआ करते थे।
0: नाटक हुआ करते थे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोई ड्रामा ये कर रहे थे, तो उसमें लड़के ही लड़कियां बनते थे। तो उसमें सखियां थी, वो राधा जी की सखियां, वो उनसे चर्चा कर रही हैं, उनका कोई एक नाच भी था। तो उन्होंने एक डायलॉग था, एक लड़के से कहा कि भाई तुम ये डायलॉग बोलो, ठीक से नहीं बोल पा रहा था। मुझे बुलाया कि भाई जरा पुलू तुम बोलो। तो मैं इत्तेफाक से बोल ले क्या, अब शायद भगवान की कोई ऐसी शक्ति रही होगी जिसने वो मुझसे बुलवा लिया डायलॉग। अब वो उनको पसंद आ गया। मैं छोटा सा तब 7-8-9 साल की उम्र, कहां मेरी इतनी समझ। बहरहाल उन्होंने मुझे उस ड्रामे के लिए उस लड़के को हटाकर चुन लिया और मैं वो लड़की बना सखी। और वो वेशभूषा वही घाघरा और ये सब पहनकर मैंने डांस भी सीखा। मैं ये सब करता रहा और उसके बाद ड्रामे से लगाव, यानी संगीत से छूटकर मैं ड्रामे की तरफ इस भांति आया।
1: अच्छा।
0: अब यहां से जब और बड़ा हुआ तो धीरे धीरे ड्रामा वो छूट गया और जब मैं लखनऊ में पुनः आ गया तो फिर अब ये हुआ कि वो ये ड्रामा कहाँ जाए। उस जमाने में कोई ऐसा मंच तो था नहीं, सब प्रोफेशनल मंच थे, कोरिंथियन और अल्फ्रेड और ये सब थे, वहां तक पहुंच चुका सवाल ही नहीं।
1: रेडियो भी सन 38 पे खुला है।
0: जी हाँ, रेडियो खुल चुका था, आकाशवाणी लखनऊ में।

0: मैंने अप्लाई किया, सन 47 की बात है ये।
1: अच्छा अच्छा।
0: और मैं इत्तफाक से, भगवान की कृपा से, माँ सरस्वती की दया से, सन 47 में आकाशवाणी में ड्रामा वॉइस के रूप में चुन लिया गया। और मैं 47, 48, 49 वहां काम करता रहा। उसके बाद जब ये आकाशवाणी इलाहाबाद खुला तो मैं यहाँ सर्विस में चला आया। वहाँ एक बहुत ही सदैव एक केंद्र निदेशक थे जो मुझे यहाँ ले आए।
1: भैया जरा आप आरंभिक जीवन जो आपका लखनऊ रेडियो में बीता खास तौर से
0: जी,
1: कुछ थोड़ा सा अनुभव, कौन कौन से लोग उस समय थे आपके समय में जो मतलब कि जिनके जिनके आप याद रखना चाहेंगे उनके विषय में कुछ बताएं थोड़ा सा।
0: अवश्य दीक्षित जी।
1: हाँ।
0: मैं तो उनको जन्म जन्म याद रखूंगा।
1: हाँ।
0: और नतमस्तक होकर उनको याद रखूंगा। जी एम शाह, गुल मोहम्मद शाह साहब,
1: क्या बात है,
0: प्रोग्राम असिस्टेंट हुआ करते थे उर्दू ड्रामे के। उन्होंने वो टेस्ट लिया था।
1: हाँ।
0: और मैं 20, 22 या 25 लड़कों के बीच में मैं चुना गया था। हाँ। और एक आध शायद और चुने गए होंगे। हाँ। जिनके बारे में मुझे पता नहीं।
1: हाँ।
0: और हिंदी ड्रामों के इंचार्ज थे गिरजा कुमार जी माथुर, वो भी प्रोग्राम असिस्टेंट थे।
1: हाँ।
0: दोनों ड्रामा करते थे।
1: हाँ।
0: उर्दू ड्रामा ये करते थे, हिंदी ड्रामा वो करते।
1: हाँ।
0: प्रोग्राम असिस्टेंट

0: आसार,
1: क्या बात है,
0: प्रोग्राम असिस्टेंट हुआ करते थे उर्दू ड्रामे के, उन्होंने वो टेस्ट लिया था और मैं 20 22 या 25 लड़कों के बीच में मैं चुना गया था और एक आध शायद और चुने गए होंगे जिनके बारे में मुझे पता नहीं। और हिंदी ड्रामों के इंचार्ज थे गिरजा कुमार जी माथुर, वो भी प्रोग्राम असिस्टेंट थे, दोनों ड्रामा करते थे, उर्दू ड्रामा ये करते थे, हिंदी ड्रामा वो, प्रोग्राम असिस्टेंट वो भी, प्रोग्राम असिस्टेंट जो ये नाम ले रहा हूं मैं प्रोग्राम असिस्टेंट, ये नाम अब आपको आकाशवाणी में
1: नहीं मिलेगा,
0: क्योंकि एक समय ऐसा आया जब ये वर्ग आकाशवाणी ने हटा दिया और इसको मर्ज कर दिया, यानी ड्यूटी ऑफिसर और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के बीच का ये एक वर्ग था आकाशवाणी में ऑफिसर्स का, इसको मर्ज करके उन्होंने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सबको बना दिया। बहरहाल तो मैं इस भांति वहां से,
1: अच्छा कलाकार आए उस समय कौन कौन थे
0: वहां लखनऊ में?
1: लखनऊ में,
0: लखनऊ में अब उनमें से अधिकांश तो दिवंगत हो गए। एक तो ललन भैया थे,
1: पीएन श्रीवास्तव,
0: पीएन श्रीवास्तव उनका नाम था, और राधे बिहारी लाल जी थे, और दुआ साहब थे, उनकी कोई स्पोर्ट्स वगैरह की दुकान थी, और वो हमारे यहाँ
1: संतराम शुक्ल भी रहे,
0: संतराम जी थे, ये सब मेरे साथ के थे जो इनके सबके। और सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त जो हीरोइन थी वो शांता वैद्या थी,
1: शांता वैद्या थी,
0: उनकी बड़ी बहन सुशीला वैद्या थी, ये सब, इन सब के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला।
1: अच्छा भैया, तो आकाशवाणी इलाहाबाद में आप 1949 में आए,
0: और पहली फरवरी 1949 को जब इस केंद्र का उद्घाटन हुआ
1: तो आप आ गए,
0: तो मैं यहाँ आ गया और अच्छा अच्छा यहाँ रख लिया गया।
1: तो भैया आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए आप संभवतः उद्घोषक होकर आए थे?
0: नहीं, ये थोड़ा सा भ्रम है।
1: अच्छा,
0: मैं उद्घोषक होकर नहीं आया।
1: अच्छा अच्छा,
0: मैं चूंकि ड्रामा आर्टिस्ट ही होना चाहता था।
1: अच्छा, और ड्रामा आर्टिस्ट होकर ही आया,
0: और मैं ड्रामा वहाँ छोड़कर आया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: चूंकि मैं अप्रूव ड्रामा वॉयस था, इसलिए मैं जब यहाँ आया तो हमारे उन केंद्र निदेशक महोदय, उनका नाम लेना जरूर चाहूंगा जिन्होंने मुझे सर्विस दी, उनका नाम था सुनील कुमार बोस, बहुत अच्छे गायक और यहाँ के स्टेशन इंचार्ज वही थे,
1: बड़ा नाम उनका।
0: जी हाँ, उन्होंने कहा देखो विजय, बंगला में ही कहा, बंगला भाषा में कहा, देखो विजय यहाँ पर ड्रामा वॉयस की कोई पोस्ट नहीं है अभी, मैं तुमको कॉपीस्ट की हैसियत से रख सकता हूँ, तुम क्या हिंदी लिख सकते हो? मैंने साहब इतनी सुंदर कि आप प्रभावित हो जाएंगे, लिख के दिखाओ। मैंने लिख के दिखाया तो वो अभिभूत हो गए, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग हिंदी की, बहुत अच्छे, ठीक है तुम कॉपीस्ट के पद पर काम करोगे। तो मैं जब आकाशवाणी में आया तो मैं ड्रामा वॉयस नहीं था, कॉपीस्ट था, और उन्होंने ये कह दिया था कि कॉपीस्ट तो तुम रहोगे ऑन पेपर, लेकिन ड्रामा भी कर पाओगे क्योंकि तुम स्टाफ में आ गए, स्टाफ का आदमी बोलने से संबंधित कोई भी काम कर सकता है।
1: अच्छा, फिर बच्चों के प्रोग्राम से कैसे जुड़ गया?
0: जी हाँ, उसकी भी एक बहुत रोचक घटना है,
1: वही सुनाइए श्रोताओं को।
0: तो इस तरह तो मैं कॉपीस्ट की हैसियत से ड्रामा भी करता रहा, और यहाँ जो मैंने ड्रामे वगैरह किए उसमें मुझे ये लगने लगा कि यहाँ नया स्टेशन, नए ऑफिसर्स, प्रोग्राम असिस्टेंट्स जिनको ड्रामे के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं, और मैं लखनऊ से 3 वर्ष ड्रामा करके आया हूँ, तो मुझे न जाने क्यों लगता था दीक्षित जी कि मैं अंधों में काना राजा हूँ। और इत्तफाक से कुछ मास्टर स्थिति की कृपा ये ऐसी रही कि उन ऑफिसर्स ने मुझ पर फुल फेथ,
1: पूरा विश्वास किया,
0: और उन्होंने नितांत मुझ पर सौंप दिया, विजय तुम ड्रामा डायरेक्ट भी करो, ये ड्रामा है, और ये नाम उन्हीं का होता था, निर्देशक में नाम उनका जाता था
1: पहले,
0: लेकिन मैंने इसकी चिंता कतई नहीं की दीक्षित जी के मेरा नाम जा रहा है, जाना चाहिए अथवा नहीं, मुझे सिर्फ काम करना है, नाटक करना है, और अपने साथ के लोगों को सिखाना है, मैं सिर्फ यही सोचता था। और सिखाने की प्रक्रिया उसी वक्त कैसे शुरू हो गई दीक्षित जी, मुझे ये लगा कि ये सब नए नए कलाकार जो अभी अभी अप्रूव हुए हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, इनको ड्रामे का ज्ञान नहीं है, और मैं ऐसे ऐसे करके आया हूँ क्योंकि मैंने वहां पर गिरजा कुमार माथुर जी के साथ काम किया लखनऊ में, जी एम शाह के साथ काम किया लखनऊ में, और बली साहब ने भी दो एक ड्रामे वहाँ प्रोड्यूस किया। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कैसे किया क्योंकि वो तो म्यूजिक के आदमी थे, कैसे किए, लेकिन उसकी फोटो आज भी मेरे पास एक है।
1: अच्छा,
0: जो ड्रामा उन्होंने डायरेक्ट किया था, निर्देशित किया था, उसमें मैं भी एक भागीदार था। तो उन्होंने वो किस भांति किया, कैसे उन्होंने करवाया, ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन उनके निर्देशन में भी मैंने दो एक ड्रामों में काम किया, और इन लोगों से जो सीखा तो वो मैंने ये सोच लिया कि देखो विजय, तुम अगर ड्रामा करना चाहते हो रेडियो में और बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो तुम्हारे इर्द गिर्द लड़के लड़कियां जो पार्ट कर रहे हैं उनको भी अच्छा होना पड़ेगा,
1: बिल्कुल सही,
0: वरना तुम्हारा अच्छा होना सार्थक नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उसी वक्त से अपने सहयोगी कलाकारों को सिखाना शुरू कर दिया कि तुम ऐसे करो।

0: एक एक नाटक चार चार पांच पांच छह छह घंटे में तैयार करता था। और ये मेरा कुछ अच्छा भाग्य था कि वो कलाकार जो भी आते थे वो सीख भी लेते थे, और वो सीख कर मेरे साथ जो ड्रामे हम लोगों ने किए तो वो सराहे भी जाते थे।
1: अपने समय में तो आपने मतलब ड्रामे का तो एक मानदंड बनाया था, ख़ासतौर से मतलब कि ये मुझे याद है अच्छी तरह कि दिल्ली तक चर्चा होती थी आपके प्रोड्यूस किए हुए ड्रामों की या जिन ड्रामों में आप काम करते थे। एक ड्रामे के विषय में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ से स्टिकर भी आया था कि इतने पैठे थी मतलब कि सीन जो है रात में न किया कीजिए, उसकी याद है बड़े भैया?
0: खूब अच्छी तरह। कौन सा? मैं कभी नहीं बोल सकता। नाटक था आँख में चौनी, एक रशियन थीम पर था वो।
1: अच्छा अच्छा।
0: और उसमें और देखिए एक बात मैं और बता दूं, आप आपसे बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, सन 56-57 तक जितने नाटक हम करते थे सब लाइव ब्रॉडकास्ट सजीव प्रसारण होता था।
1: बिल्कुल,
0: हम बोलते थे, नाटक करते थे, कर रहे होते थे और प्रसारण हो रहा होता।
1: मैं साक्षी रहा
0: हूं। जी निश्चित रूप निश्चित, लेकिन श्रोता भाइयों को ये बताना जरूरत है, भाई बहनों को बताना आवश्यक था, इसलिए आपके माध्यम से मैं उनको ही बता रहा हूँ कि उस जमाने में नाटक रिकॉर्ड नहीं होते थे, हम सजीव प्रसारण करते थे और उसी में साथ साथ इफेक्ट्स लगते चलते थे जो आवश्यक होते थे। तो उसी वक्त वो ड्रामा आया, ये युग था तब हमारे केंद्र निदेशक थे गोपाल दास जी।
1: 1955-56 की बात
0: है। जी 55-56 की बात है। और मुझे वो नाटक दिया गया और मैंने एक बहुत छोटी बच्ची से, वो भी अपने आप में शायद रिकॉर्ड ही होगा, क्योंकि 6 साल की बच्ची से को मैंने हीरोइन बनाया। उस नाटक की हीरोइन
1: बच्ची ही थी,
0: एक बच्ची थी।
1: हाँ।
0: तो उस बच्ची को मैं ढूंढता रहा कहाँ से मिले कैसे मिले। बच्चों को प्रोग्राम के जो कलाकार तब तक आ पाए थे, बच्चे बाल कलाकार, उनमें से एक भी मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मैं ढूंढते ढूंढते उस परिवार में जा पहुंचा, वर्मा परिवार में जा पहुंचा। मैंने उससे बातचीत की तो मैंने देखा वो मुझे झट से ग्रहण कर रही है। मैं जो उससे कह रहा हूं वो चट से ग्रहण कर रही है। वो त्यों ज्यों का त्यों उसको रिपीट कर दे रही है। तो मैंने कहा बस ये, तो मैंने उसका स्पेशल स्टेशन डायरेक्टर महोदय से परमिशन लेकर उसका ऑडिशन करवाया। रीता वर्मा उस बच्ची का नाम था।
1: अच्छा अच्छा।
0: उसकी बहन इंदिरा वर्मा भी यहाँ रही, और उससे सबसे बड़ी बहन उषा वर्मा भी यहाँ रही अनाउंसर की हैसियत से। तो उस नाटक को यहाँ प्रसारित जब किया गया तो हमारे डीजी डायरेक्टर जनरल थे माथुर साहब, यानी देखिए उसका नाम, उनका नाम याद दिलाइए, जगदीश चंद्र जी।
1: जगदीश चंद्र जी माथुर, महानिदेशक।
0: जी हाँ, महानिदेशक थे वो। जगदीश चंद्र जी माथुर, उनकी ससुराल यहीं कहीं इलाहाबाद में थी। और वो नाटक ब्रॉडकास्ट हुआ। और इत्तफाक की बात के गोपाल दास जी की पत्नी, जिस वक्त ये नाटक ब्रॉडकास्ट हुआ उनकी एक बेटी अस्वस्थ थी बहुत ज्यादा, और उसका देहांत हो चुका था। तो दो घटनाएं ऐसी घट गई कि वो नाटक टेरिफिक ब्रॉडकास्ट हुआ, बहुत बढ़िया, कि हम साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ मैं उसके इफेक्ट्स लगाता चल रहा हूँ, जैसे मैंने अपने आर्टिस्टों को जिस भांति सिखाया बहुत ही अच्छे। उसमें अशोका चौधरी उसमें हीरोइन माँ थी, माँ बनी थी वो। तो वो सब लोग थे, पीसी बैनर्जी साहब थे जो अब दिवंगत हो चुके हैं, नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट कलाकार थे। उन सब ने जो मैं चाहता था वैसा उन्होंने किया, विशेष तौर पर उस बच्ची ने कमाल कर दिया, इतना हृदयग्राही। अंत में होता क्या है कि वो बच्ची की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है अंत में,
1: उसी पे वो,
0: उसी पर वो। जी हाँ, तो वो प्रसारित हुआ, इतना प्रभावित। उस जमाने में टीवी तो था नहीं,
1: रात में होता था ड्रामा।
0: जी हाँ, और रात में ड्रामा होता था, टीवी था नहीं। फिल्म के बाद, सिनेमा के बाद एकमात्र साधन मनोरंजन का था रेडियो। और इत्तफाक से बड़े जोश में आकाशवाणी इलाहाबाद ने अपना कार्यकलाप प्रारंभ किया था, और इतना बढ़िया ढंग से शुरू किया था कि खूब लिसनिंग थी। हम लोग रात को ड्रामा करते थे, सवेरे रास्ते में हम साइकिल थे, गरीब आदमी, गरीब कलाकार, साइकिल पे आते जाते, और सब लोग रुक रुक कर तारीफ करते थे, साहब क्या बात है, क्या बात, और हर पेपर में धुआंधार तारीफ। तो उसके बारे में था कि वहाँ जगदीश चंद्र माथुर साहब के ससुराल में संभवतः किसी ने सुना।
1: अच्छा,
0: और कहा इतना बढ़िया नाटक, पहले तो तारीफ की उन्होंने वहाँ, जो लिखी डीजी साहब को चिट्ठी।
1: अच्छा।
0: इतना बढ़िया नाटक, इतना अभिभूत करने वाला नाटक हमने पहले कभी नहीं सुना, बट हम ये चाहते हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि लेट नाइट में ऐसे ग्रिम ट्रेजिडीज
1: वाले नाटक न ब्रॉडकास्ट किए जाए,
0: न किए जाए। और इत्तफाक से हमारे केंद्र निदेशक महोदय जो अपनी बच्ची खो चुके थे, एक दो तीन महीने पहले उस नाटक के प्रसारण होने से, उन्होंने भी उस पर भी ठप्पा लगाया। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये पीठ थपथपाने वाली बात थी।
1: सही, सही बात।
0: लेकिन मैंने वो बात मानी।
1: अच्छा।

0: ये तो हुई नाटकों की बात
1: जी हाँ।
0: अब जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये बच्चों के प्रोग्राम से आप कैसे जुड़े और बड़े भैया कैसे बन गए?
1: बच्चों के प्रोग्राम से जुड़ने की कथा दीक्षित जी यूँ हुई कि जब स्टेशन खुला 1 फरवरी 1949 को बच्चों का प्रोग्राम भी शुरू हो गया, तो उस वक्त केंद्र यहाँ पर हमारे केंद्र पर श्री गोपाल कौल मदनाका साहब हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे वरिष्ठ, वो और दो एक जने भैया के रूप में आज माइक्रोफोन के पास बच्चों को घेर कर बैठ जाते हैं। और मैं बिल्कुल, मैं तो चूंकि कॉपीस था, मैं डर के मारे पीछे सहमा हुआ बैठा रहता था। हुआ ये कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आगा साहब निकल गए, और फिर 2-3 हफ्ते में गोपाल कौल साहब भी निकल गए, और उसके बाद एक और जो बचे खुचे थे वो भी निकल गए, और शायद दूसरे या तीसरे महीने में विजय बोस जो पीछे बैठे हुए थे
0: वो आ गए।
1: और मैं बड़े भैया के रूप में कार्य करने लगा 1949 से ही। 1949 के शायद मार्च अप्रैल आ गया होगा, और उसके बाद से और रिटायर होने तक मैं बच्चों के प्रोग्राम का बड़े भैया रहा, ये उसकी कथा है।
0: अच्छा, अरे भाई, कोई जैसे तब का जो मतलब के प्रसारण होता था, तब जो मेहनत होती थी काम में
1: जी,
0: खासतौर से नाटकों में, प्रोग्राम्स में
1: जी,
0: और अब के जो कार्यक्रम होते हैं
1: जी,
0: इनमें आप क्या अंतर पाते हैं, आपके क्या मतलब की मनोभावना है इस संबंध में?
1: दीक्षित जी, मैं 89 में रिटायर हो गया।
0: हाँ,
1: 89 से पूर्व मैं अब तो लोगों से ये कहता हूँ, सब अपने जो हमारे इष्ट मित्र हैं, कि हमने आकाशवाणी का स्वर्ण युग झेला है, भोगा है, उसमें जिए हैं, उसमें काम किए हैं।
0: सही बात,
1: उसमें हम लोगों ने काम किया है। अब तो न जाने क्यों लगता है कि जैसे एकदम पलट गया,
0: बदल गया,
1: एकदम उलट गया। बदलना तो एक चीज है कि आप एक एंगल में दूसरे एंगल में आ गए, यहां तो यह है कि आप अगर चित थे तो पट हो गए।
0: अच्छा,
1: इतना अंतर आ गया है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जो अब मैं अभी भी मुझे ये लोग बीच बीच में,
0: अच्छा, कारण क्या समझते हैं आप इसका, क्या कारण क्या है?
1: मेहनत की कमी।
0: अच्छा,
1: कार्य करने में जो मेहनत,
0: हाँ,
1: जो डेडिकेशन, हाँ, चाहिए,
0: हाँ,
1: वो न कराने वालों में अब रह गया, मुझे ऐसा लगता है, और न करने वालों में रह गया।
0: मतलब धैर्य दोनों तरफ नहीं रह गया,
1: धैर्य रह ही नहीं गया। हम तो, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं न सिर्फ ड्रामा वॉइस, न सिर्फ बच्चों के प्रोग्राम का बड़े भैया, मैं जैसे कि जो आपके मन में भ्रम था उसको मैं दूर कर दूं, कि मैं उद्घोषक भी रहा, और मैंने उत्तर जोन की जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने टॉप किया था, मैं टॉप क्लास अनाउंसर था।
0: मैं जब 1952 में हेमलता जी के स्थान पर आया हूँ, उस समय आप उद्घोषणाएं करते थे, मुझे याद है।
1: मैंने अपनी रुचि से बोलने से संबंधित कोई कार्य आकाशवाणी में छोड़ा नहीं, और इसके लिए मैं सवेरे 5:30 बजे आकाशवाणी आता था, और रात 11 बजे आता था। और आप यकीन माने दीक्षित जी, कि मैं रात को जब जाता था तो मैं कतई मुझे थकान नहीं होती थी। उस वक्त भी यदि मुझे एक तो यंग, मैं 21-22 साल का था, उस वक्त भी अगर कोई 11 बजे कहे कि विजय या बोस चलो एक ड्रामा कर रहा, मैं झट से उठ के खड़ा हो जाऊंगा, और वैसे ही उसी गरिमा से, उसी जोश से फिर मैं ड्रामा करने लगूंगा। तो अब मैं नहीं कह सकता, शायद सपने में भी ड्रामा ही करता रहा होगा संभवतः।
0: बड़े भैया, मैं तो समझता हूँ
1: जी
0: कि टीवी के आ जाने से
1: जी
0: लोग कहते हैं कि रेडियो का महत्व कम हो गया है, लोगों के अपने अपने दृष्टि है। मैं ये समझता हूँ कि रेडियो का महत्व न कम था कभी और ना आगे होगा, क्योंकि विदेशों में जहाँ भी रेडियो है टीवी के साथ, तो रेडियो का अपना अपनी महत्ता है और टीवी की अपनी महत्ता है। तो रेडियो का प्रसारण और अच्छे से अच्छा और सामर्थ्य वाला बने, इसके लिए आप जो नई पीढ़ी के कलाकार आ रहे हैं उनके लिए संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे?
1: दीक्षित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेडियो की महत्ता न कम हुई थी, न होगी, न आगे होगी, है ना? ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जरूर है कि एक ग्लैमर है, नया टीवी आया, तो शहरों में निश्चित रूप से रेडियो शायद पीछे चले गए, गोदामों में रख दिए गए, और टीवी आगे आ गया। बहुत से घरों में आज आप अगर ढूंढने जाएं
0: तो रेडियो नहीं मिलेगा,
1: तो रेडियो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर शहर से थोड़ा आप आगे निकल जाएं, एक 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर उसके ऑनवर्ड्स, फिर आपको रेडियो ही रेडियो मिलेगा, टीवी मिलेगा नहीं।
0: सही बात,
1: क्योंकि भारत देश गरीब देश,
0: अभी गरीब है, तो सब जगह टीवी नहीं पहुंचा है,
1: सब जगह टीवी अभी नहीं पहुंचा।
0: इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग की गुणवत्ता अभी भी बनी हुई
1: अभी भी है,

0: किसान अपना हल चलाता है, वो क्या करता है कि अपना छोटा सा ट्रांजिस्टर उसके अपने बैल के सींग में टांग देता है, वो बज रहा है, वो भी सर हिलाता हुआ अपना काम कर रहा है और खेतियर अपना जोते भी जा रहा है,
1: सुन भी रहा है।
0: इतनी सुविधा कहाँ मिलेगी टीवी में? टीवी जिसने कि आज लोगों को अलग कर दिया। अगर मैं टीवी देख रहा हूँ, देखिए बुरा मानने की बात नहीं, मैं टीवी देख रहा हूँ और कोई मेरे इष्ट मित्र घर पर आ गए तो कहां से इस वक्त घर पे आ गए, अरे यार कहां बोर कर रहे, ये भावना जगा थी। ये बहुत ही गलत और बहुत ही खराब भावना है।
1: अच्छा, नहीं तो जो हम पूछ रहे थे भैया कि नई पीढ़ी वालों को आप सलाह क्या देंगे, क्या उनके लिए संदेश देंगे आप?
0: नई पीढ़ी वालों के लिए मैं यही संदेश दूंगा, जो आकाशवाणी में कार्यरत हैं उनको भी और जो आते हैं बाहर के कैजुअल में उनको तो दोष नहीं देता, उनसे तो आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हो जाएंगे।
1: ठीक,
0: मुख्य रूप से जो आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं जो ये सोचकर आते हैं कि हम रेडियो में कुछ करेंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि कितनी विषमताएं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मशीन नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है, उसकी चिंता किए बगैर अगर वो ये समझते हैं कि मैं जिस स्वर्ण युग की बात कर रहा हूँ, क्या उस वक्त ये चीजें नहीं थी?
1: कुछ नहीं था हमारे पास,
0: बहुत सी चीजें नहीं थी, हम खुद क्रिएट करते थे अपने आप। उसी तरह से मैं इन सब लोगों को कहूंगा कि आप मेहनत करिए और एकमात्र मेहनत ही आपको सफलता की चोटी पर पहुंचा देगी। मैं आज जो कुछ हूं शायद मेहनत की वजह से हूँ।
1: हाँ, क्योंकि कोई स्कूल तो था नहीं जमाने,
0: कोई स्कूल नहीं था ना,
1: किसी ने सिखाया तो कुछ था नहीं,
0: कुछ नहीं,
1: अपने परिश्रम से ही
0: मैंने लोगों को सुन सुन कर सीखा। हाँ। मेरे आदर्श थे स्वर्गीय मुख्तार अहमद साहब, मैं खूब रेडियो सुनता था। हाँ। जब मैं रेडियो में आया, जब मैंने 1947 में ऑडिशन दिया, उसके पहले मैं खूब अच्छी तरह से दिल्ली का ड्रामा, पटना स्टेशन तो खुला ही नहीं था, दिल्ली का ड्रामा, लाहौर का ड्रामा, उसमें तो विभाजन हुआ था, 1947 की बात,
1: पूरे देश में गिने चुने स्टेशन थे,
0: गिने चुने स्टेशन थे। तो आप समझिए कि इन सब को सुनना और वहां से ग्रहण करना कि ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, कैसे फिर उसको इमिटेट करना, ये मैंने स्वतः किया,
1: अब के लोग नहीं करते।
0: ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि चाह कर भी मुझे बहुत अच्छा गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे गुरु के रूप में इधर उधर भटकना पड़ा, तलाशना पड़ा, अपने परिवेश से आसपास से ही सीख कर अपने आप को योग्य बनाना पड़ा।
1: बोस जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी सुंदर और इतनी मनोरंजक और इतनी शिक्षाप्रद जानकारी दी अपने बारे में ख़ासतौर से, और ब्रॉडकास्टिंग एज ए होल के बारे में, इसके लिए हम आकाशवाणी इलाहाबाद की ओर से आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पूर्व नाट्य कलाकार विजय बोस से युक्तिभद्र दीक्षित की भेंट वार्ता हमारे संग्रहालय से। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 292.4 मीटर मीडियम वेव यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

AIR @90 एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाश

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेशे खदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। सभी सुनने वालों को अतुल यादव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत एक ही कलाकार। आज हम एक ऐसी अदाकारा की जिंदगी के किस्से बयां करने वाले हैं जिसने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने एक्टिंग के मानक ही बदल दिए, जिन्होंने करियर की शुरुआत से लेकर आज तक न जाने कितने किरदारों को खूबसूरत बना दिया। उन्हें कभी उमराव जान की शायराना नजाकत में देखा गया तो कभी खून भरी मांग की आग में दहकते हुए। उनकी आंखें जब बोलती हैं तो आज भी मानो इन आंखों की मस्ती में दुनिया डूब जाती है।

जी हाँ श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की इकलौती टाइमलेस डिवा भानुरेखा गणेशन, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से रेखा पुकारती है। रेखा, जिन्हें शुरुआत में कहा गया कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगी, उन्होंने ही हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब और रहस्यमय कहानियों में से एक लिख कर दिखा दी। एक ऐसा सफर जहां शुरुआत थी संघर्ष की और मंजिल पद्मश्री और नेशनल अवार्ड की। रेखा का जन्म 1954 में चेन्नई में हुआ था। पिता तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और मां पुष्पावल्ली खुद एक्ट्रेस थी। रेखा ने बचपन से ही कैमरे के साथ एक रिश्ता सा बना लिया था, लेकिन हिंदी सिनेमा ने उन्हें वो मंच दिया जिसने उन्हें अमर कर दिया।

श्रोताओं, रेखा की जिंदगी भी किसी तिलस्म से कम नहीं है। उनका व्यक्तिगत जीवन भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से ऐसा लगता है जैसे कॉपी कर लिया गया हो। ड्रामा, र्यूमर, क्लाइमैक्स और फिर एक सन्नाटा, एक अकेलापन। लेकिन उनके खत का अंदाजा इसी से लग जाता है कि उन्होंने कभी भी पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक नहीं किया। हर चीज को जैसे यूं लगता है कवर में सजा के रखा, और एक ऐसा कवर जिसे देखकर हर कोई आकर्षित होता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उस कवर के अंदर क्या है, आखिर जिंदगी का वो राज कौन सा है जिसे रेखा जी अपनी खूबसूरती के पीछे छिपा कर ले चलती हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सिलसिला के रिलीज के बाद फिल्मी मैगजीन में कोट किया जाने लगा कि सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक रहस्य थी। लोग कहते हैं कि रील और रियल लाइफ एक हो गए थे, लेकिन रेखा जी ने कभी कुछ नहीं कहा। और यही वो पर्सनैलिटी है, यही वो खूबसूरती है जिसे रेखा जी ने हमेशा मेंटेन करके रखा।

खूबसूरत सिलसिला उमराव जान, खून भरी मांग, हर करदार में वो अलग रंग लेकर आती थी। रेखा का एक ही मंत्र था, परफेक्शन इज द बेस्ट मेकअप। जब उमराव जान आई तो हर किसी चाहने वाले ने बस यही कहा कि ये सिर्फ अदाकारा नहीं, एक एहसास है। और ये एहसास ही था जिसने उन्हें नेशनल अवार्ड दिलाया। 80s के अंत में खून भरी मांग फिल्म में उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, पावर भी है। फिर 90s और 2000 में वो चुनिंदा फिल्मों में नजर आईं, जैसे जुबैदा, लज्जा, कोई मिल गया।

रेखा सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। वो कहती हैं कि मैंने हर दर्द को सजाया है, हर तन्हाई को मुस्कान से रंगा है, और यही है रेखा जी की रहस्यमयी, रूमानी और रॉयल जिंदगी। आज रेखा जी लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन हर अवार्ड शो में जब कैमरा उनकी मुस्कान पर टिकता है तो यूं लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और सितारे के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। दीजिए इजाजत अतुल यादव को, नमस्कार।

0: फिल्म संगीत एक ही कलाकार, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम क्यों है खोए खोए से, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर अजय सोनकर से नेहा गुप्ता की बातचीत।
1: दोस्तों, आज हम मानसिक स्वास्थ्य पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अजय सोनकर सर हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, डीएनए पे बहुत बड़ा काम है। आखिर हम अच्छा और बुरा क्यों महसूस करते हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क को जानते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर स्टूडियो में आपका। सर, कई लोगों से जब मुलाकात होती है, आप दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आपको शायद ये दिखता ज़रूर होगा कि जो ऊर्जा आपके अंदर है, कुछ लोगों के अंदर है, वो उनमें नहीं है। वो उत्साह नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, उनको लगता है कुछ लॉस्ट हो गया है।
2: एक्चुअली जो आप मेंटल अनहेल्थ की बात कर रही हैं, तो हमें पहले समझना होगा कि ये है क्या।
1: जी,
2: अगर आप टेक्निकली जो है इसके बारे में सोचें, तो इसको बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ द लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी।
1: मतलब आम लोग इसे कैसे समझेंगे?
2: इसका मतलब यह है कि वास्तविकता से हमारा संपर्क कहीं टूट गया है। वास्तविकता क्या है? वास्तव में जो मेंटली अनहेल्दी होते हैं, वो या तो पास्ट में जो समय बीत गया है उसमें रहते हैं, या वो फ्यूचर में रहते हैं।
1: ओह,
2: ये है मेंटल अनहेल्थ की सबसे बड़ी पहचान।
1: अच्छा, आपने ये कहा कि या तो वो व्यक्ति पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा।
2: जी,
1: इसका मतलब जैसे वो रोज जो जिंदगी जी रहा है, सांसें ले रहा है, उन बातों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
2: नहीं, वास्तव में क्या है, वो मेंटली फिजिकली वो जहाँ पर है, जो है जहाँ पर उसका शरीर है, वहाँ पर उसका मन नहीं है। उसका जो माइंड है वो कहीं पास्ट में है या कहीं फ्यूचर में है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई दुर्घटना हो गई या कुछ भी हुआ अच्छा बुरा जीवन में, तो बहुत से लोग उसी अपने पिछले अनुभवों को जीते और उसी को याद करते रहते हैं। तो ये हुआ पास्ट में रहने के बराबर। पास्ट में रहना, पास्ट क्या है सबसे पहले समझिए। पास्ट जो है वो समय है जो मर गया
1: जी।
2: तो पास्ट में रहने का मतलब हुआ जैसे आप एक डेड बॉडी के साथ रह रहे हैं, एक डेड बॉडी के साथ रह रहे हैं आप, ये हुआ पास्ट में रहने के बराबर। तो आप सोचिए कि एक डेड बॉडी के साथ कोई रह रहा हो तो वो कैसी स्थिति है, पहली बात। और दूसरी बात, हम भविष्य की संभावनाओं से कि कल हमें कोई फेल्योर हो जाए, कल हमें कोई एक्सीडेंट हो जाए, कल हमारे साथ कोई बुरा हो जाए, कल कोई अनसक्सेस हो जाए, इन सारी संभावनाओं को, भविष्य की संभावनाओं को सोचकर हम भविष्य में रहते हैं। तो अब भविष्य क्या है? भविष्य मतलब जो अभी आया ही नहीं, वो वक्त जो आया ही नहीं। इट इज़ समथिंग लाइक नॉन एग्जिस्टिंग काउंटर पार्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम तनाव, परेशानी, दुख ऐसी जगह से ला रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
1: डॉक्टर साहब, इसे टाइम लैप्स कह सकती हूँ?
2: नहीं,
1: कि जैसे अब, आप या तो पीछे ही अटक गए हैं।
2: यस, तो अब क्या है, इसका सलूशन ये है कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है ये अभी, जैसे मैं और आप दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हम दोनों की सांसें चल रही हैं, हमारे हृदय धड़क रहे हैं और हम जिंदा हैं
1: जी।
2: तो इस वजह से वर्तमान जो है वह ही एक ऐसी चीज है जो जीवित है। तो वर्तमान में रहना ही स्वस्थ रहना और जीवित रहने के बराबर है। मतलब एक स्वस्थ तरीके से जीने का नाम है वर्तमान में रहना। क्योंकि वर्तमान क्या है? मैं हूं, आप हैं, और दोनों क्या हैं? जीवित हैं, और दोनों बातें कर रहे हैं, और दोनों की सांसें चल रही हैं, दोनों के हृदय धड़क रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि भाई प्रेजेंट में रहो
2: जी,
1: लेकिन हमारा मन जो है इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। मैंने कई लोगों को अपने घर, बाहर, परिवार, समाज में देखा है। सपोज करिए कि किसी के जीवन में कोई अनहोनी घट गई, पैसों का लॉस हो गया, या फिर किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो गया, या फिर हम जो बनना चाहते थे नहीं बने। भाई, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को उस अवस्था से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं निकाल पाते। जब उनसे बात करो कि अरे भाई इससे बाहर निकल आओ, तो कहेंगे कि ये मजाक है क्या? आपके लिए मजाक हो सकता है, तो फिर क्या कहेंगे?

0: अब
1: नहीं बिल्कुल, एक्चुअली इसमें क्या है कि आप जो बता रहे हैं, जो जो दुख में है, जो अपने किसी परिजन को खो चुका है या किसी भी वजह से दुख में है, तो जब आप उससे बात करेंगे तो सिर्फ कहने से कि बाहर आ जाओ, वो जानबूझ के कहने से, किसी के कहने से तो दुख में गया नहीं है कि किसी के कहने से दुख से बाहर आ जाएगा। और इसमें क्या है कि इसके लिए हम कुछ चीज़ों को समझना होगा कि हम ऐसा कई बार जाने अनजाने में या जानबूझ करके हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम उस दुख से, उस पास्ट से बाहर आ जाएं। मैंने जो इस पे स्टडी की, मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से कॉग्निटिव फिटनेस पर एक कोर्स कर रहा था,
0: जी
1: तो उन्होंने बताया कि जो मेंटल हेल्थ है या कोई डिप्रेशन है या कोई इस तरह से बाहर आने के लिए, ये गौतम बुद्ध की वो मेडिटेशन पे बात कर रहे थे,
0: जी
1: वो सिखा रहे थे कि इस मेडिटेशन से आप इस तरह के मेंटल अनहेल्थ से बाहर आ सकते हैं। तो वो था क्या उसमें? उसमें था कि आप अपने सांसों को देखें, आपकी सांस आ रही है, आपकी सांस जा रही है। जब आपकी सांस आ रही है तो आपका पेट जो है राइज हो रहा है, और जब आपकी सांस जा रही है तो आपका जो है स्टमक फॉल कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो मैंने उसको ध्यान से जब देखा तो मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है, ये जो सांस आ रही है, वो सांस जा रही है, ये वर्तमान है। अब उस पर ध्यान लगाने से क्या होता है कि आप भूत और भविष्य जहां भी हो वहां से वर्तमान में आ जाते हैं। तो मेडिटेशन भी एक तरह की टेक्निक है जो आपको वहां से खींच करके वर्तमान में लेके आया।
0: डॉक्टर साहब,
1: जी
0: आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन, मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है,
1: जी
0: तो जो शब्द मैंने पहले भी कहा था मैं फिर से कहना चाहूँगी,
1: जी
0: वो कहेंगे कि आपको मजाक लगता है क्या?
1: जी
0: और दूसरी बात, दवाइयों का इतना भ्रमजाल फैला हुआ है, कई ऐसी दवाइयाँ हैं डॉक्टर साहब जो लोग मेंटली अनहेल्दी होने के कारण खा रहे हैं, जो दिमाग को स्लो कर देती हैं, उसे एक्टिवेट, सही दिशा देने की बजाय वो सोचना ही दिमाग बंद कर देता है
1: बिल्कुल
0: और उनको लगता है कि सब ठीक हो गया जी,
1: नहीं
0: लेकिन
1: नहीं
0: वो स्थिति जो है और खतरनाक हो गई है।
1: नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि वास्तविकता ये है, जो मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई भी दवा कोई हेल्प नहीं कर सकती। और आपका कहना एकदम ठीक है कि अगर कोई परेशान है तो उसका शांत बैठना, आप उसे कहें कि अपने सांसों की तरफ ध्यान दो और जो है देखो सांस आ रही है जा रही है, शांत होकर के अपनी ध्यान जो है सांसों की तरफ लगाना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो अशांत है तो वो ध्यान लगाएगा कैसे। ये आप एकदम सही कह रही हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वास्तव में जो मेडिटेशंस हैं, जितनी भी इस तरह की टेक्निक है, वो करती क्या है वास्तव में, उनकी उस करने में क्रिया ये होती कि इसको पास्ट और फ्यूचर से प्रेजेंट में लाया जाए। और जब मैंने इस पे स्टडी की तो मैंने पाया कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके विषय में बात करने के बजाय कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जो चीज़ आप जानते हैं, जिसमें आप अभ्यस्त हैं, जब वो करते हैं आप, तो आप ऑटो पायलट पे चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप कर बैठते हैं सारा कुछ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक उदाहरण मेरा मन कर रहा है यहाँ देने का,
1: जी
0: जैसे मैंने कुछ फिल्में देखी हैं, उसमें मैंने देखा कि भाई हीरो बड़ा डिप्रेशन में था, एक अचानक से सुंदर सी हीरोइन आती है, उसका डिप्रेशन उसको देख के गायब होने लगता है और वो जिंदगी जीना शुरू कर देता है,
1: जी
0: और वो हीरो जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसके प्रिय व्यक्ति का निधन भी हो गया था, घर नहीं था, लेकिन एक लड़की का आगमन होता है जो उसके दिल पर राज करने लगती है, अचानक सब कुछ बदल जाता है, उसके पास बड़ा घर हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, ये क्या है?
1: वास्तव में यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो आपको प्रेजेंट में लेके आते हैं,
0: ओह
1: वो जो आपने बताया कि एक लड़की उसके लाइफ में आती है, उसकी जो खूबसूरती है वो उसको कई तरह से महसूस करता है, उसकी आवाज़, उसका लुक, उसकी उसको महसूस, जब उसके वार्म्थ को महसूस करता है तो उस क्रिया में वो प्रेजेंट में आ जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में खड़ी है, वो
0: वाह,
1: उसको
0: ये
1: प्रेजेंट में
0: बात
1: लेता है।
0: है।
1: जी बिल्कुल। और जब वो प्रेजेंट में आ जाता है और उसी में मर्ज हो जाता है, जैसे आपने कहा उस पे दिल पे राज करने लगती है, तो उसको एक्वायर कर लेती है प्रेजेंट में, उसको कहीं जाने ही नहीं देती कि ये पास्ट या फ्यूचर में जाए, तो इस तरीके से वो उससे बाहर आ जाता है।
0: श्रोताओं, मेंटल हेल्थ पर डॉक्टर अजय सोनकर सर से बातें होती रहेंगी, लेकिन सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई आप जब नई चीज सीखते हैं,
1: हाँ
0: अब मान लीजिए आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करनी नहीं आती,
1: जी
0: अब आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको जो कीबोर्ड होगा उसमें देख देख कर ढूंढ ढूंढ कर अक्षर और अंकों को दबाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको आता नहीं है, तो उस क्रिया में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ है, ये अक्षर कहाँ है, ये अंक कहाँ है, तो उस क्रिया में आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो और इसी तरीके से कुछ भी जब आप नया सीखते हैं तो उस समय आपको ध्यान लगाना पड़ता है उस नई चीज के लिए, क्योंकि वो नई चीज नहीं आती आपको, कोई
1: अब
0: वाद्य यंत्र बजा रही है।
1: हाँ
0: तो अब देखिए क्या है, एक नेचर है, एक खूबसूरत सी लड़की किसी के सामने आई तो बट नेचुरल है उसकी तरफ वो आकर्षित होता है, और अगर उसको जब देखने लगता है तो उस क्रिया में जो आपने एग्जाम्पल दिया वो प्रेजेंट में आ जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में खड़ी है,
1: अच्छा ये बात है
0: और
1: कि
0: बस
1: आना आपको प्रेजेंट में है, वो
0: तो
1: चाहे वो विधि टाइपिंग की हो सकती है या
0: कोई भी
1: फिर
0: विधि
1: जो
0: हो।
1: समर्पण हो सकता है,
0: हाँ,
1: प्रेम
0: अब
1: हो
0: क्या है,
1: सकता
0: जैसे कोई बहुत उदास है,
1: है। हाँ
0: अब वो टाइपिंग कर रहा है तो टाइपिंग इज नॉट ए इंटरेस्टिंग फॉर हिम, मतलब मुश्किल है आपको उसमें लगाना कोई, आप उसके ऊपर आपको कोई मोटिवेशन डालना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करो, ये लिखना बहुत जरूरी है तुम्हें, एक पेज लिखो, तो वो एक बोझ की तरीके से एक जो है एक इम्पोज्ड कंडीशन में वो लिखेगा। लेकिन अब कोई ऐसी चीज जो आपने देखी और आपकी आंखों को भा गई, आपके हृदय में समा गई, आपको अच्छा लगने लगा, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज करने लगे खुशियों के साथ। इसीलिए जैसे कोई अगर जॉगिंग कर रहा, किसी कोई जिम में जाता है और एक ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है, उससे अच्छा ये होता है कि वो बैडमिंटन खेल रहा है, क्योंकि उसको एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, खेलता है जब वो, तो एंजॉय करता है, उससे ज्यादा वर्कआउट करता है और वो खुश भी रहता है, क्योंकि उसको ये रहता है कि मैं इसको हरा दूंगा या मैंने उसको हरा दिया, या खेलने में उसको आनंद महसूस होता है। अब जो वो कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उस मेहनत से उसको आनंद प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा वर्केबल है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई व्यक्ति नॉर्मल है, ठीक है, वो डिप्रेशन में ना जाए, उसको लगे कि भाई थ्रू आउट लाइफ हम क्यों ना खुशी से जिए, जो हमारा बेसिक नेचर है, तो क्या करना चाहिए कि उस ओर दिमाग ना जाए, ध्यान ना जाए?
0: देखिए एक्चुअली जो हमारी कंडीशन है वो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती, आप भले ही कितनी अच्छी स्वभाव की हो, आप खुश रहना चाहती हो, आपका इंटेंशन बहुत खुश रहने का, बहुत कुछ करने का हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत ही डिप्रेस्ड है, निगेटिव है, उसके अंदर भय भरा हुआ है, वो भयभीत है, तो जो आपके अंदर होता है वही आप देते हैं। अगर जो भयभीत है वो भय फैलाता है, ठीक है, जो दुखी है वो दुख फैलाता है, कोई ना कोई इम्पैक्ट वो आपके ऊपर डाल देता है। तो होता है, इसी को इपिजेनेटिक्स कहते हैं, कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है और आप एक जीवित

0: इंसान है, आप हर भावनाओं को रिएक्ट करते हैं, तो एक दुख के तौर पे आपकी भावनाएं जो है, अब देखिए उंगली कटे और खून ना निकले तो ये बहादुरी की निशानी तो है नहीं, ये डेड मैन की निशानी है। अब मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और उसको बहुत तकलीफ है, तो आपको तकलीफ होगी,
1: बिल्कुल।
0: आप ऐसा नहीं हो सकता कि अरे मेरा तो स्वभाव है कि मैं खुश रहूंगी, मैं एकदम खुशियों में रहूंगी, झूमती रहूंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको इम्पैक्ट होगा उसका। तो कहने का मतलब यह है कि हम कितना भी समझदार हों, कितना भी हमें नॉलेज हो, आसपास का एटमॉस्फेयर हमारे पर इम्पैक्ट डाल देता है, लेकिन नॉलेज इज अ पावर। अगर आपको पता है कि ये हो क्या रहा है, ये रियल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, जो हुआ है ये इसके साथ हुआ है। अब मैं ये, हमें दुख कहाँ से आता है, जो इसके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है, तो कब होगा, फ्यूचर में होगा। अब निकल करके वर्तमान से फ्यूचर में चले गए तो आपका क्या हुआ, आपका जो है शरीर यहाँ है और आपका मन जो है दूसरी जगह चला गया। तो अब जो है जब ऐसी कोई क्रिया आप करते हैं या कोई कारण बनकर आपको के साथ कर देता है कि आप वापस, आपका मन आपके शरीर में लौट आया, वर्तमान में लौट आया, तो इसी को योग कहते हैं, मिलन कहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जो आप बात कह रहे हैं कि कुछ दुखी लोगों के साथ अगर आप हैं, जाहिर सी बात है कि वो तरंगे आप पर भी आएंगी, तो उस पुस्तक में ये बात लिखी हुई थी कि जो आप योग और ध्यान की बात कर रहे हैं, और अगर आपके समय में दिमाग में उस समय ये बात आ जाए कि मैं उन परिस्थितियों से हमेशा अनटच्ड रहूंगा या रहूंगी, ये जुड़ा हुआ मुझसे नहीं है, आई एम समथिंग एल्स, आई एम अ डॉटर और अ सन ऑफ दैट सुप्रीम पावर, और वो सुप्रीम पावर कभी दुखी नहीं होती, तो शायद एटमॉस्फेयर कितना भी नेगेटिव हो जाए, जो आप कह रहे हैं कि एक,
0: बिल्कुल देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये आप अगर किसी भी तरह से अपने मन को अगर स्वस्थ रख पाते हैं, एक सोच को जो है एकदम रियलिटी से टच करके रख पाते हैं, तो आपको सदैव इस तरह की चीज़ों से बचने में मदद मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर अपने आप को कार समझ लें कि आपका जो जीवन है वो एक कार है, तो जो आपका मन है वो ड्राइवर है
1: जी।
0: अब मान लीजिए वो रात से सोया नहीं है, वो गुस्से में है, उसको बुखार है, आंख से ठीक से दिखता नहीं है, और वो आपकी गाड़ी चला रहा है, तो अब आपकी गाड़ी का क्या होगा? आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, लेकिन आपकी गाड़ी का क्या हो गया, उस ड्राइवर साहब चला रहे हो गाड़ी। तो इसी तरीके से आप कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी अच्छी आपकी बॉडी हो, आप यंग हो, सब कुछ हो, लेकिन जो आपका मन है वो दुखी है, वो क्रोध में है। क्रोध में लोग कहते नहीं कि वो गुस्से में लोग अंधे हो जाते हैं, मतलब वो आपका जो ड्राइवर साहब है वो ब्लाइंड है, अब उनको घमंड है। इसका मतलब क्या है कि उनको क्रोध के ऊपर या घमंड के ऊपर सच्चाई नहीं दिखती, वो घमंड में आकर के वो अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कह देते हैं, क्योंकि उनका घमंड है, वो कह दिया तो दंभ है उनको कि ये मैंने बोला। तो वो तो जितने भी हमारे ये भाव हैं, जैसे द्वेष, दूसरों से जलन की भावना, प्रतिस्पर्धा, लोगों से नफरत करना, बदले की भावना, ये सब ये रोग है, मानसिक रोग। अगर वो आपका ड्राइवर इस तरह के मानसिक रोग से ग्रसित है तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा देगा, वो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी होना और शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होना तय है।
1: डॉक्टर साहब, मैं जब सब्जी खरीदने जाती हूँ कई बार
0: जी,
1: जो सब्जी वाले भाई होते हैं या अम्मा बेच रही होती हैं, मैं देखती हूँ कि वो 20 रुपए किलो भिंडी बेच कर भी, सपोज करें कि 20 किलो भिंडी है उनके पास, 200 रुपए कमाए उन्होंने, 400 रुपए, बड़ी खुश रहती हैं। अब मुझे कहेंगे कि अरे बिटिया दुइठो गिरगवा रहा और डाल ले। मैं सोचती हूँ कि ये अम्मा या ये जो सज्जन बेच रहे हैं सब्जी, कितना ही कम कमाते हैं, शॉर्ट एकदम साधारण, कितने लोग उनसे, दुखी व्यक्ति भी उनके पास जाता है भाई, एक नॉर्मल व्यक्ति भी जाता है, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता उन अम्मा के ऊपर, मैंने हमेशा देखा कि वो खुश रहती है, आखिर क्यों?
0: वास्तविकता यही है। देखिए आप जिसको कहती हैं कम कमाना, उनके हिसाब से वो पर्याप्त कमा लेती हैं, उनकी ज़रूरतें फिक्स हैं, वो जानती हैं कि मुझे अभी सुबह ये ज़रूरत है, मुझे रात के भोजन के लिए ये ज़रूरत है, मुझे बच्चे के लिए ये ज़रूरत है, वो देखती हैं मेरा वो जो ज़रूरत थी पूरी हो गई, वो रियलिटी से टच कर रखा है उन्होंने। अब हमें, मैंने 72 साल के व्यक्ति से मुलाकात की दिल्ली में, जो अरबपति हैं, और वो बहुत परेशान थे, तो मुझसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे 6 महीने के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा पैसा? इतना दुखी देख के मैंने सोचा कि थोड़ा सा पैसा मैं ही अरेंज करके दे देता हूँ, बेचारा इतना परेशान है। तो मैंने कहा आपको कितने पैसे की ज़रूरत है? तो उसने कहा डॉक्टर साहब सिर्फ

0: 800 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। अब मैं उसे देखने लगा कि इसका कल का पता नहीं है, हैं? अगर ये पूरी जिंदगी बैठ के खाए तो 2-4 लाख रुपए से ज्यादा का खाना ये खा नहीं सकता, और इसको 800 करोड़ रुपया चाहिए, उस पर सिर्फ लगा दिया इसने। तो ये क्या है, वो भले ही इतना बड़ा आदमी है लेकिन वो ही हैज लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, यही जो मैं कहना चाहता हूँ। अब वो दुखी क्यों है, क्योंकि ही हैज लॉस्ट द कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। उसे पता होना चाहिए कि इसका मैं करूंगा क्या, भले ही उसके पास बहुत कुछ हो, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, वो किसी चीज को कंज्यूम करके दिखाए अपने लाइफ टाइम में, उसको ये रियलिटी है, और वो ये पता ही नहीं, वो और दूसरी चीज जो नहीं है उसके लिए परेशान है कि ये भी मुझे मिल जाए। तो ये लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी यही है। और वो जिस सब्जी वाली अम्मा की बात आप कर रही हैं, वो बहुत महान है, वो ब्लेस्ड है कि वो रियलिटी के कॉन्टैक्ट में, वास्तविकता के संपर्क में है।
1: डॉक्टर साहब, उनकी मुस्कान जो है ना, मतलब मैं जब देखती हूँ ना उन्हें, तो मुझे ऐसा लगता है एक बोतल खून बढ़ गया मेरा।
0: बिल्कुल, यही तो मैंने कहा कि जो जैसा होगा वो देगा, वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है, तो उन्होंने आपको वही दे दिया।
1: और मैं कई बार कहती हूँ कि अम्मा आप अपने पैसे तो पूरे लीजिए, बोले अरे बिटिया। तो पता नहीं ये जो मोहब्बत है ना डॉक्टर साहब, वो मुझे जिंदा कर देती है।
0: नहीं देखिए, मैटर क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत बात कह रही हैं। वास्तव में यही हमें जरूरत है कि हम ये ध्यान रखें कि हम क्या दे रहे हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो अगर अपना दुख अपनी तकलीफ उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं तो कहीं पर हम उसके साथ अत्याचार कर रहे होते हैं। उसके अच्छे खासे मूड को, अच्छे खासे उसके जीवन को हम जाने अनजाने तबाह कर रहे होते हैं। यही है जो हम दे सकते हैं किसी को, कि हम उसको रियलिटी से के कॉन्टैक्ट में लाएं। अब वो एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाने वाली एक अम्मा को आपने देखा, तो आपको ये लगा कि जब ये खुश रह सकती है तो कम से कम इससे तो ज्यादा है मेरे पास।
1: Really?
0: ये तो शर्म की बात होगी अगर मैं दुखी रहूं तो। कितना बड़ा मोटिवेशन मिल गया आपको। इसीलिए आप खुश हो जाती हैं जो कहती हैं कि मेरे शरीर में एक बोतल खून बढ़ गया। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग।
1: डॉक्टर साहब, छोटे छोटे टिप्स में चाहूंगी
0: जी
1: कि ऐसे हम लोग क्या करें प्रतिदिन में, कि
0: हमारा
1: मन जो है वो हमेशा एकाग्र रहे, हाँ, खुश रहे।
0: देखिए कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको वर्तमान में रहने के लिए क्यूरियस आप रहते ही हैं, आपको हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहिए। और कभी भी कोई चीज अगर आपको निगेटिविटी दे रही है, दुख दे रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये मेरे को रियलिटी से दूर करने वाली है, तो आप वहां से तुरंत डिस्कनेक्ट होकर के किसी ऐसी चीज में जो आपको खुशी दे, जो आपको जो है कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करे, उसकी तरफ आप अग्रसर हो जाइए, तो फटाक से वो ओवरलैप कर जाएगी चीजें, उस पर आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और कुछ दिनों में आपके अंदर वल्नरेबिलिटी हो जाएगी इस बात की कि आप कुछ नया चीज सीख करके अपने आप को वर्तमान में रखें।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो आए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स मिले होंगे हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए, सुंदर बनाने के। बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्यों है खोए खोए से, जिसमें आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय सोनकर से नेहा गुप्ता की बातचीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: Akashvani at 90.
1: थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच

0: श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकालेखां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold

10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अलावा 6:50 पर किसानवाड़ी कार्यक्रम लखनऊ से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपसे कुछ ही देर में यानी 12:15 पर आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। 12:30 बजे श्रोता अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम सुनेंगे। हेलो फरमाइश।

1:15 पर ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट होगा, जिसमें महिलाओं के सपने और परिवार का संयोग विषय पर कमल सिंह से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही शशिबाला जैन के गाए लोकगीत भी ग्रामीण बहनें सुन सकेंगी। ढाई बजे लोकगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें आज कलाकार होंगे लहरी लालजी यादव और साथी हेम श्रीवास्तव और रमेश चंद्र और साथी। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे धरती के गीत कार्यक्रम से शाम 5 बजे, जिसमें कलाकार होंगे अखिलेश कुमार यादव और साथी। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह 5:15 पर होगा।

6:30 बजे ग्रामीण भाई अपने कार्यक्रम पंचायत घर में आज परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत सुनेंगे कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं, इस विषय पर डॉक्टर विमलेंदु शेखर से की गई बातचीत। इसके अलावा पन्नालाल यादव और साथियों के गाय लोकगीत भी ग्रामीण भाई सुन सकेंगे। सात बजकर 31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज डॉक्टर संतोष भदौरिया की वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। 7:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें कलाकार होंगे जलज श्रीवास्तव। इनके स्वर में आप सुनेंगे गीत और भजन। जिन ढूंढा तिन पाइया, ये रूपक सुनिएगा रात 8 बजे। और 8:30 बजे का समय होगा सबरस कार्यक्रम का। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संदर्भ में आपको सूचना दे दें। सबसे पहली सूचना इस प्रकार है, श्रेया कुशवाहा, उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट के आसपास, रंग गेहुआ है, ये दिनांक 30 अगस्त 2026 को ग्राम उसरही थाना सोराव से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। अमन कुमार कुशवाहा डॉक्टर महेश कुमार कुशवाहा के ये पुत्र हैं, थाना सोराव, जनपद प्रयागराज। अगली सूचना इस प्रकार है, कुमारी अंजू, उम्र 28 वर्ष, कद 152.4 सेंटीमीटर के आसपास, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है, ये 8 अगस्त 2026 को जोगापुर से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें। फ़ोन नंबर है 7754907599। फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 7754907599। और इस वक्त की जो आखिरी सूचना है वो इस प्रकार है, रितु, उम्र 28 वर्ष, कद 168 सेंटीमीटर, रंग गोरा है, ये 24 अगस्त 2026 को 11 बजे के आसपास ग्राम असरवई से लापता हो गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इस फोन नंबर पर सूचित करें। फोन नंबर है 7565018 फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 7565018 इनका पता इस प्रकार है, कामता प्रसाद, पुत्र रामनिंदे भारतिया, लौत कला, लालापुर, जनपद प्रयागराज। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: पवन ने साथ बोल रहा है मैम। नमस्कार।
1: नमस्कार पवन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: तुवर की फिल्म का।
1: गाने के बोल बताइए।
0: अरे मेरे दोस्त लव के आजा तेरे बिना जिंदगी अधूरी है।
1: जी मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गाना पवन जी ने पसंद किया है, तो सुनवाएं पवन जी आपको ये गीत?
0: हाँ बिल्कुल मैम, ननका भाई का गाना वाला है।
1: जी जी
0: हाँ बस सुनवाइए।

0: नहीं बोल रहे गाँव भुकिया में ढेर जिला प्रतापगढ़
1: जी जी रोशनी जी बताइए कौन सा गाना सुनेंगी
0: मैम। बॉर्डर फिल्म का गाना सुनना है।
1: कौन सा गाना सुनना है?
0: जरा ठहरो।
1: हमारे जितने श्रोता हैं वो ये भी कहते रहते भाई जरा ठहरो प्रोग्राम अभी और सुन ले। क्यों
0: जी मैम, अगर प्रोग्राम का समय थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो और अच्छा होगा।
1: जी आपकी ये बात हम विभाग तक जरूर पहुंचा देंगे कि भाई हमारे श्रोता चाह रहे हैं कि फोन इन कार्यक्रम का थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाए। ऐसे ये कार्यक्रम तो आप लगभग रोज ही सुनते हैं।
0: हाँ मैम सुनते तो रोज ही, लेकिन थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाए तो और मजा रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल कि दिल अभी भरा नहीं,
0: मौका मिलेगा कॉल करने का, बात करने का।
1: जरूर जरूर जरूर। तो आपने कौन सा गाना पसंद किया एक बार फिर से बताइए।
0: मैम बॉर्डर फिल्म का गाना है, जाते हुए लम्हा जरा ठहरे।
1: जरा ठहरो बड़ा ही खूबसूरत सा गाना रोशनी जी ने पसंद किया, तो रोशनी जी सुनवाएं आपको।
0: जी मैम
1: लीजिए सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: गांव दोदापुर, पोस्ट उमरी, प्रयागराज निवासी। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से आदरणीय मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है आराधना।
0: जी
1: इसमें रफी साहब और लता जी ने गीत गाया है। गुनगुना रहे हैं भावरे, खिल रही है कली कली।
0: बड़ा ही मधुर गीत चुना है आपने।
1: जी दीदी, बहुत ही प्यारा सुंदर गीत है और इस गीत में मैं शामिल करना चाहता हूँ परम आदरणीय मधु दीदी के साथ साथ में। प्रयागराज से हैं प्रेमचंद यादव हड़िया से, और मीरापुर से हैं प्रयागराज शिवानी जी हैं, और राकेश कुमार भैया मेजर से हैं। प्रतापगढ़ से हमारे तीन दोस्त हैं जिनके नाम है राजेंद्र कुमार जी, प्रभाकर जी और रोशनी जी, और याद करना चाहता हूँ सुरेंद्र कुमार जी को भी इस गीत में। और रेडियो प्रयागराज को सुन रहे सभी सम्मानित श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी प्रयागराज से।
0: तो आइए सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, थाना हंडिया, गांव मुगराम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैम नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रेमचंद जी। आज कौन सा गाना चुना है आपने?
1: मैम फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुकूं, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। अक्षय कुमार और अमृता राव की फिल्म, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में खूबसूरत सा गाना
0: जी। आपने तो गाना बहुत ही अच्छा चुना है प्रेमचंद जी, सुनवाया जाए आपको?
1: बिल्कुल मैम,
0: लीजिए सुनिए।

0: श्रोता सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अपना नाम बताइए।
1: आदरणीय मैम मधु मैम को हमारा नमस्कार। हम बचन्ने सरोज बोल रहे हैं, ग्राम शिवघर तूरी पोस्ट मचेया हरदोपट्टी तहसील कुंडा ब्लॉक बाबागंज।
0: जी बचन्ने सरोज जी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुन रही हैं?
1: जी मैम हमको आज गाना सुनना है, मूवी का नाम है जवाना दीवाना।
0: जी
1: प्ले बैक है उदित नारायण और सपना बस्ती के। गाने के बोल हैं, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा।
0: बचन्ने जी मेरा आप ये बताइए आपको अपने मित्रों के नाम लेने हैं।
1: जी मैम मित्रों के नाम, मम्मी पापा के नाम लेना है।
0: हाँ बिल्कुल लीजिए।
1: जी मैम हमारी माता जी का नाम है शिवकली सरोज।
0: जी
1: हमारे पिताजी का नाम है जगेश्वर सरोज और हमारी चार सिस्टर हैं जिनका नाम है रूबी सरोज, संगीता सरोज, सुनीता सरोज, रीना सरोज।
0: तो आपको सुनवाते हैं आपका ये मनपसंद गाना।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

0: नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सोमवार को अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये खेल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण और खेल के माध्यम से जन सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पुरुषों का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Delhi police has made extensive security arrangements in the New Delhi area to ensure public safety in view of the call for protest at Jantar Mantar by the CJP today. Police personnel are deployed at multiple checkpoints in New Delhi district. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed till 6 this evening. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi metro station. Namo Bharat train services between Saraikale Khan and New Ashoknagar Namo Bharat stations in Delhi will also remain closed till 10 p.m. today. BJP National President Nitin Naveen alleged that opposition parties are making efforts to create instability in the country and acting at the behest of foreign forces. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Naveen accused opposition parties of attempting to create a highly dangerous and serious situation in the country. He added that Indian democracy possesses immense strength and the people of the country would unite to thwart any such attempts.
3: इस देश में पिछले 12 वर्ष

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो 803 करोड़ रुपए से ज्यादा के 78 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने वालों में चेक और सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे और जलसयाम से खिताब करेंगे। कल लखनऊ में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में तरक्की, सनअती सरमायाकारी, ज़राअत, रोज़गार, टेक्नोलॉजी और अवामी बहबूद से मुतालिक 39 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी ज़िंदगी के 25 साल की याद में एक तहनियती करारदाद भी मंजूर की गई। काबीना की मीटिंग के बाद मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि जनाब मोदी की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश तरक्की का एक नया मॉडल बन रहा है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि जेवर में नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा है। यह हवाई अड्डा मुस्तकबिल में रियासत की मईशत, सिनत, सियाहत और आलमी राब्तों को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। इस जज्बे के तहत काबीना ने हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की तजवीज मंजूर की है।
1: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है।

0: उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्री परिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास कर दी।
1: काबीना के इजलास ने दिवाली और होली पर हर एक को एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल फराहम करने की स्कीम को जारी रखने की तजवीज़ की मंजूरी दी। काबीना के इजलास में साबिक अग्निवीरों की भर्ती से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी दी गई। इसके तहत साबिक अग्निवीरों को पुलिस, जंगलात, जेल और ट्रांसपोर्ट के महकमों में भर्तियों में 20% रिजर्वेशन मिलेगा। काबीना की मीटिंग के बाद वज़ीर ख़जाना सुरेश खन्ना ने बताया कि भदोही ज़िले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही रखने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है।
2: जनपद भदोही का नाम परिवर्तित किए जाने पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि जनपद का नाम संत रविदास नगर भदोही रखा जाए। आखिर में उनकी दी गई विशेष बात यह है कि उनका नाम भी रहेगा संत रविदास जी का और भदोही भी रहेगा।
1: रियासती काबीना ने सूद छूट स्कीम 2026 और खरीफ मार्केटिंग साल 2026-27 के लिए धान की खरीदारी की पॉलिसी के निफास को भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज़रई शोबे में 2017 से बेमिसाल तब्दीली आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत किसानों को बीज से लेकर मंडियों तक हर चीज़ फराहम कर रही है। आज किसान कर्ज से आज़ाद है और MSP और PM सम्मान निधि के जरिए बेहतर बीज, आपपाशी और DBT से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क की कुल ग़िज़ाई इजनास की पैदावार में 21% का हिस्सा डालता है। ज़रई तरक्की की शरह 8% से बढ़कर 18% हो गई है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर 10 मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 मेंबरान शामिल हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने का कल आखिरी दिन था। राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग 16 अक्टूबर को होना थी। वज़ीर आज़म ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसकी तारीफ उनके गैर मुतजलजल अज़्म और जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से होती है। हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। आकाशवाणी सेवा संकल्प अभियान पर एक खसूसी सीरीज नष्ट कर रहा है। आज हम सीखेंगे कि नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को किस तरह नाफिज किया गया।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिल कर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ख़त लिखा है कि वो दिल्ली पुलिस के साथ हमाहंगी पैदा करें और CJP मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए कौमी दारुलहुकूमत की तरफ जाने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। मुजव्वज़ा एहतजाज इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी गहरी नज़रसानी में मुबैना बेज़ाब्तियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े का मतालबा करने के लिए किया जा रहा है। और मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में चलने वाली 21 ट्रेनें आज मनसूख रहेंगी। ये फैसला वस्ती दिल्ली में मुजव्वजा एहतजाज की वजह से लिया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम पनघट।

0: सरस्वती। अरे ओ सरस्वती, हम कहे राम राम।
1: गुंजा राम राम अपन कट सुने बैठी सब बहनी अरन के भी सरस्वती और
0: गुंजा
1: के
0: राम राम। और सरस्वती बहनी कैसन हो तू?
1: हम तो एकदम बढ़िया है गुंजा बहनी।
0: बिल्कुल
1: देखा तो आज अमावस्या की तिथि बाटे और रास्ता में जब हम आवत रही
0: हाँ
1: तो देखे इतना भीड़ लगा बाटे। काहे की देखा आज हमार पितरन जौन सब आए रहें वो सबके आज विदाई के दिन
0: 15 दिन के बाद आज
1: हाँ,
0: उनके
1: बिल्कुल
0: विसर्जन है।
1: बिल्कुल जितना सेवा और जितना समझ हमन सबे के रही उतना हम सबे करे है। तो
0: बिल्कुल
1: आज अपने पितरन के विदाई के दिन बा तो देखा हमहू अपने पितरन के जौन हमें समझ में आया जौन जानकारी हमें रहे वो हिसाब से हम उनका विदाई करके आए
0: बिल्कुल
1: ही।
0: काहे कि देखा बहनी साल भर में 15 दिन अपने पितरों के बधे रहा थे उनकर जौने भी इच्छा रहा थी वो ई तिथि के द्वारा पितृ दिवस के द्वारा
1: हाँ
0: उनका पिंडदान के द्वारा या उनके भोज
1: हाँ
0: द्वारा
1: उनकर भोज उनकर
0: उन तक
1: श्राद्ध
0: पहुंचावा जात
1: उनकर
0: है।
1: तर्पण आदि करके हम सभी उनके प्रसन्न करे के प्रयास करती। काहे कि देखा जब वो शरीर के रूप में रहे स्थूल रूप में धरा पे रहे तो हम सभी बदे कितना त्याग करे रहे नू
0: बिल्कुल
1: है ना। उहे त्याग के याद करके आज हम सभी उनका जौनों कुछ अर्पित कर सकत ही श्रद्धा से वो अर्पण करत ही।
0: बिल्कुल
1: और देखा वो कोनो
0: हाँ
1: वस्तु के भूखा नहीं होते
0: बिल्कुल
1: वो बस प्रेम और श्रद्धा के भूख उनके होत है। तो प्रेम से श्रद्धा से दोनों हाथ ऊपर करके उनके सुमिरन कर ली जाए। अगर कुछ है तो वो समर्पित कर दें अगर कुछ नहीं है तो उनके बतावें कि आप हमें ए लायक बनावें कि हम अगली बार आपका तृप्त कर सकें। तो देखा आज हम वही दिन बाटे और हम सभी धूमधाम से एका अच्छे से भावुक मन से एका मनावा है।
0: और देखा अब तो ये बात रही कि विसर्जन आज विसर्जन हुए जने कल माई के आवे के इंतजाम हो
1: बिल्कुल यानी कि तू
0: गया।
1: बात करो थू नवरात्र आरंभ के।
0: बिल्कुल देखा बहनी हम तो थोड़ा थोड़ा सामग्री अबहने से लाए दिया है बहनी। काहे कि देखा इतना उत्साह रहा था ये पर्व के कि हम अपने का बताए कि हमरे कुल घरे में जितने भी सदस्य हैं उनकर एक एक लोग के समझ ला कि इतना उत्साह है कि हर चीज से लेके पंडाल से लेके बहनी कपड़ा लत्ता से लेके खान पान से लेके पकवान तक के पूरी व्यवस्था कीन गए
1: अरे वाह ये तो
0: हैं।
1: बहुत ही बढ़िया वो सुन के बहुत खुशी होता है। तो देखा अब जौनहा आश्विन मास शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा काल से शुरू हो जाए तो जैसे हम सब बात करते थे कि नवरात्र के आरंभ हो जाए और जगत जननी माता आदि शक्ति भवानी के आगमन हो जाए
0: बिल्कुल
1: है ना। तो देखा और हम सबे माँ जोन शक्ति दे थी ओका पावे बदे एक साधना में जुट जाबे है
0: बिल्कुल
1: ना। जेका जितना सामर्थ्य होए जेका जितना आवत होए जानत होए ऊ हिसाब से माता के प्रसन्न करे के प्रयास करी।
0: तो सरस्वती बहनी हम सोचा थे कि कसना यही पे चर्चा कर लीन जाए।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: तो देखा हम सोचा थे कि अपनी बहनी हरन के आज की बात में जो है नवरात्र प्रारंभ के बारे में
1: चर्चा करी।
0: उत्साहपूर्वक चर्चा कीन जाए।
1: तो देखा हम नौ देवियन की पूजा करा थी इन 9 दिनों में है ना।
0: बिल्कुल
1: माँ शैलपुत्री माँ ब्रह्मचारिणी माँ चंद्रघंटा माँ कुष्मांडा माँ स्कंद माता माँ
0: माँ कात्यायनी
1: कात्यायनी
0: माता
1: माँ कालरात्रि माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री
0: सिद्धिदात्री
1: के
0: माँ
1: एक क्रम से हम सब पूजा करा थी।
0: बिल्कुल
1: काहे की देखा माँ शक्ति की देवी है ना। और वही शक्ति हम सब के चाहिए माँ साहस की देवी है। जौन माँ अपने जौन उनकर हम सब हाथ देखा थी पूरे उनके सब हाथन में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी वो।
0: बिल्कुल
1: तो एक संदेश मिला थी कि देखा माँ जौन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी ओकर कारण का बाटे कि हम
0: बिल्कुल
1: सब तो ई साधना करे जाती तो इमें अस्त्र शस्त्र के का भूमिका बाटे। तो माँ के रूप से हम सब के प्रेरणा मिला थे कि देखा माँ करुणामयी है तो हम सभी के भी वो करुणा के आत्मसात करे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: माँ दयालु हैं वही दया हम सबके भी रखे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जब हमरे करुणा के और दया के उपहास करा जाए ओकर न समझा जाए तो हमें अस्त्र उठावे के पड़त है। जैसे कि महिषासुर के अत्याचार से संसार त्रस्त रहा देवता त्रस्त रहे तो माई अस्त्र का प्रयोग करें कि नहीं।
0: और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई।
1: बिल्कुल ना। तो देखा महिषासुर एक तरह से अगर देखा जाए आज तो साक्षात रूप से एक शरीर के रूप में महिषासुर तो नहीं।

0: हैं, लेकिन हमरे भीतर महिषासुर प्रकट है ना।
1: देखा मन रूपी रावण जो विद्यमान है, तरह तरह के जो प्रतिक्रिया लोगन से करावत है।
0: और देखा जैसे हमरे भीतर के अहंकार है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये महिषासुर के रूप है,
1: बिल्कुल
0: है ना। और एका हम सब अंत तबे कर सकत ही
1: जब हम ओका अच्छी तरह से पहचानब कि हमरे कौने तरह विकृत रूप बनावत।
0: बिल्कुल, हम ओका पहचानब जरूरी बा, और साथ में हमें ही जानब जरूरी बा कि कौने तरीके से हम ओका भस्म कह दई, है ना।
1: और जाना तो भाई नहीं, नौ नौ दिन रातों में ध्यान जप और उपवास से मन के बुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय होते है। नवरात्रि के पर्व में ऋतुओं के परिवर्तन, जैसे कि मौसम देखा, जैसे अब जैसे बरसात के मौसम अब धीरे धीरे अब सर्दी के लावत है, तो इस छह छह महीना पे प्रकृति भी हम सबके संदेश दे दिया है पर्व के जरिए।
0: बिल्कुल,
1: तो देखा अब मौसम के ठंडक होता है, तो मौसम बदले से ही शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होते है। ऐसा करे से जो है सात्विक भोजन शरीर में करे से गंदगी के भी दूर कर सका जाते है, कोनो तरह के जो है कीटाणु से भी ग्रसित। हाँ, जो बच सकते,
0: बिल्कुल सही। देखा व्रत उपवास का ही पर्व बाटे, कौनो दिन जो है कौनो एक दिन के दो दिन के व्रत करते हैं, और कौनो कौनो जो है पूरे नौ दिवसीय व्रत रखते हैं, है ना। तो फलाहार करते हैं, तो इसके से जो है शरीर की शुद्धि होता है और आत्मा का भी शुद्धि होता है, है ना। तरह तरह के मंत्र हम सब पढ़ा थी, कलश स्थापना करा थी, तो जैसे तू कहू की नवीन ऊर्जा के संचार होते है ना, और आगे के समय बदे हम सब एकदम तैयार हो जाती है।
1: और जाना तो मैंने जैसे तू कहो कि नव दुर्गा, हाँ नव दुर्गा आदि शक्ति माता, मतलब भगवान भोलेनाथ के आदि शक्ति हैं, उसे उही तरह हम सब स्त्रियन भी आदि शक्ति के रूप हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि हम सब जब घर दुआरे से लेके लड़का गदेला कुल सभी कार्य करत है आज के समय में, तो मुला ई देवी रूप के ही आधा स्वरूप है हम सब में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो शक्ति रूप में विद्यमान है। और जैसे कि तू कहो नव दुर्गा, नव दुर्गा पहले शैलपुत्री, पहले दिन ये माता के स्थिरता ऊर्जा और संकल्प के प्रतीक मनावा जाता है। और दूसरा जैसे तू कहो कि ब्रह्मचारिणी माता, दूसरे दिन जो है कि तपस्या के आचरण करे वाली माता, और जिनके हाथों में जाप माला और कुंडल और संयम तप त्याग और आत्मनियंत्रण के प्रतीक बाटे हैं। ई माता कौन? ब्रह्मचारिणी माता, जो हमें हम सबके जीवन के सीख देते हैं। और तीसरी है चंद्रघंटा माता, जौने के तीसरे दिन होते है जिनमें माता के आदि चंद्र के रूप होता है, एमी माता की शांति और वीरता के अद्भुत संयम बाटे, इनकर दस हाथों में अद्भुत शस्त्र सुशोभित होता है। जैसे तू बताओ कि जैसे छह प्रकार के हाथ है, तो मैं हर तरह के शास्त्र है, जैसे त्रिशूल है, गदा है, चक्र है, शंख है, और चौथी हैं कुष्मांडा देवी, जिनका अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड के रचना करने वाली माँ आएँ, इस सृष्टि के आदि शक्ति और ऊर्जा के स्रोत बाँटें। पांचवा स्कंद माता, जो उन्हें अपने गोद में बाल रूप स्कंद को बढ़ावत रहा हैं, और मातृत्व स्नेह और अपार ज्ञान के प्रतीक हैं। कात्यायनी माता, जिनका छठवा दिन रहा है, यह माता अद्भुत तेज शक्ति की देवी हैं, जो उन्हें शत्रु के नाश करते हैं। उही तरह माँ कालरात्रि सप्तमी दिन हैं, माँ काली माता जो ने इनका रूप विकराल अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली है, भक्तों के सब भय संकट नकारात्मकता के नष्ट कराते हैं। माँ गौरी अष्टमी माता, जो ने हम सब कन्या के रूप में भोज कराई थी, अत्यंत गौरी श्वेत रूप है, जो ने शक्ति रूप पवित्रता सौम्यता और परम आनंद के प्रतीक हैं। और सिद्धात्री माता नवमी, जिका हम नवमी बोले थे, नौवा दिन तब सब के भावनाओं महिमा आदि सिद्धियों से प्राप्त हैं। ई माता जिनका सिद्धात्री माता, ये दिन जितने भी भक्तगण हैं, जितने ऋषि मुनि संत हैं, जितने भी तपस्वी हैं, अपनी समस्त सिद्धियां के प्राप्त कराते हैं यही दिन।
0: देखा तो हम सबे पूजन जब कह ले थी, तो उसके बाद आखिरी दिन हम सबे कन्या पूजन करते हैं ना। तो देखा का संकेत है कि देखा स्त्री जो ना चाहे कन्या के रूप में हो, चाहे वो एक नारी हुई, है ना, हर रूप में वो पूजनीय है।
1: बिल्कुल,
0: माई ऐसा चाहा थी। तो देखा जब कन्या के हम सबे खियावत थी, वो दिन उनका सजावत ही, है ना, और दान दक्षिणा देती, एकर मतलब गहराई से समझे के चाहिए कि देखा खाली वो नौ

0: दिन या
1: केवल उही दिन ना पूजे।
0: हाँ देखा, एकर मतलब ये है, पूजन के मतलब ई है कि वो तो सामग्री से पूजन हुआ।
1: हाँ।
0: पूजन के मतलब बा उनके समस्त इच्छा के पूर्ति करे,
1: हाँ,
0: है ना, उनकी जरूरत के पूर्ति करे,
1: बिल्कुल,
0: उनकी भावना के
1: उनके साहस समझे, के भी समझे।
0: और अगर वो काबिल ना है तो उनका काबिल बनावे, उनका आगे बढ़ावे,
1: बिल्कुल,
0: उनका हर तरह से सहयोग करे, ये वास्तविक कन्या पूजन हो जाए।
1: देखा बहनी, दसवा दिन जो होते है वो दशहरा होता है, जिनमे राम भगवान के अयोध्या आवे के बदे दिवाली उत्सव की तरह मनावा जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और रावण के वध के भी उम्मीद कुछ है।
0: तो बिल्कुल देखा कि हम सबे ये पर्व एक तरह से देखा जाए तो बुराई के हरा देवे के पर्व है, है ना, बुराई पे अच्छाई के जीत
1: होता है,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो देखा हम सबे इतना चर्चा की नवरात्र पे, अब चला तो का हम एक झूमर सुनवाई दे
1: शशि बाला जैन बहनी से, तो बहनी अरे भी सुने।

0: सरस्वती देखा कितने नेक के गौ नहीं रही।
1: गुंजा, तो इतना बढ़िया झूमर सुने के बाद चला अब एक ठे तो का हम वार्ता सुना दे, है ना। और वार्ता है कमल सिंह बहनी से, तो विषय है महिलाओं के सपने और परिवार का सहयोग। तो चला सुन लिन जाई वार्ता।
0: चला बहनी हरेन भी सुने कमल सिंह से।
2: मुझे लगता है कि हर महिला का कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन कई बार जिम्मेदारियों के बीच वह सपना पीछे छूट जाता है। कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, सपने हर व्यक्ति की आंखों में जन्म लेते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला। कोई महिला डॉक्टर बनना चाहती है, कोई शिक्षिका, कोई अधिकारी, कोई कलाकार, कोई व्यवसायी, तो कोई अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए कुछ करना चाहती है। महिलाओं के सपने केवल व्यक्तिगत जीवन से जुड़े नहीं होते। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद या उम्र के एक पड़ाव पर आकर ये सपने कहीं दब जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे सपनों के पीछे भागेंगी तो परिवार की देखभाल कौन करेगा। महिला समाज में अकेले सपने पूरे नहीं कर सकती। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है हमारे परिवार की। परिवार किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज की नारी चार दीवारी से बाहर निकलकर आसमान छू रही है। वह डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट और देश की सीमा पर सैनिक बनकर भारत का नाम रोशन कर रही है। लेकिन इस सफलता के पीछे हम गहराई से देखें तो हमें एक ऐसे पिता का हाथ दिखता है जिसने अपनी बेटी के सपनों को पंख दिए। हमें एक ऐसे पति का साथ दिखता है जिसने अपनी पत्नी के करियर को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। और एक ऐसी माँ या सास का दुलार दिखता है जिसने घर की जिम्मेदारियों को संभाल कर अपनी बहू या बेटी को आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब परिवार अपनी बहू या बेटी पर भरोसा करता है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। वह दुनिया की हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कामकाजी महिलाओं पर अक्सर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, दफ्तर का काम करना और घर का काम, चूल्हा चौका। ऐसे में परिवार के सदस्य हाथ बटाएं तो मानसिक और शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहती है। जब बेटे बेटियों को घर में एक जैसी सम्मान और स्वतंत्रता मिलती है तो समाज से भेदभाव की दीवारें टूट जाती हैं। या सपने देखने का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। एक स्वतंत्र और शिक्षित महिला कभी भी अपने परिवार को तोड़ती नहीं है, बल्कि वह तो

पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोकर आगे ले जाती है। वह अपने बच्चों को बेहतर संस्कार देती है और एक सशक्त समाज की नींव रखती है। आज हमें अपनी सोच को थोड़ा और बदलने की जरूरत है। हम अपनी बेटियों को सिर्फ पराया धन समझकर विदा नहीं करना है, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। बहुओं को सिर्फ घर की लक्ष्मी कहकर काम का बोझ देने की बजाय उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका देना है। इनके लिए कुछ इस प्रकार कहना है, उड़ान तो भरनी है चाहे कितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। आज के युग में एक महिला ठान लेती है कि उसे कुछ नया करना है या अपने सपनों को पूरा करना है, तो वह लाख बंदिशों के बावजूद भी कुछ कर दिखाती है। तभी तो आधुनिक दौर की महिलाओं के हौसले बयां करती ये पंक्तियां हैं, अब वक्त आ गया है जागने का, अपनी आजादी को पाने का, परिवार के साथ मिलकर सपने देखने का, एक नया समाज बनाने का। अभी भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, परिवार में भी और सोसाइटी के तौर पे भी बहुत सारे घरों में यही हाल है। उनके डर का कारण यह है कि अगर महिलाएं स्वतंत्र हो गईं और आर्थिक मजबूत हो गईं तो फिर वह किसी से दबकर नहीं रहेंगी, पुरुषों पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि महिला पुरुष से आगे जाना चाहती, बल्कि वह पुरुष के बराबर चलना चाहती है। महिला को यह जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, उसे सहानुभूति की नहीं संघर्ष की जरूरत है, तभी वह अपने सपनों को पूरा कर सकेगी, तभी वह देश दुनिया को देख और समझ पाएगी। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए सामाजिक जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी और थोड़ा बोलना भी सीखना होगा। जैसे जैसे महिलाओं के जीवन के चरण आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एक बार शांति से बैठकर खुद से पूछ लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हम किन चीज़ों में अपने आप को संतोष का अनुभव कराते हैं। उन्हें अपनी कमियाँ और खासियत को पहचानना पड़ेगा, तभी हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। परिवार का सहयोग महिला के आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। जैसे एक छोटी सी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है और वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, उसके माता पिता उससे कहें, तुम जो बनना चाहती हो उसके लिए मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। इसके विपरीत यदि उसे बार बार यह कहा जाए कि लड़कियों को इतना पढ़कर क्या करना है, तो उसकी क्षमता और सपनों पर असर पड़ता है। इसलिए परिवार का पहला कर्तव्य है बेटियों को सपने देखने का अधिकार देना और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना। महिलाओं की स्वतंत्रता की या सपना देखने की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी यह है शिक्षा। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने, अपने अधिकारों को जानने की क्षमता देती है। जब एक लड़की शिक्षित होती है, उसका प्रभाव पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। इसलिए परिवार बेटियों और बेटों की शिक्षा को समान महत्व देना चाहिए। हमारे समाज में अक्सर घर के कामों को महिलाओं की जिम्मेदारी मान लिया जाता है, लेकिन घर केवल महिलाओं का ही नहीं, घर परिवार के सभी सदस्यों का है और इसलिए घर की जिम्मेदारी भी सभी की होनी चाहिए। अगर माँ पूरे दिन घर का काम करती है और साथ में नौकरी भी करती है, तो परिवार के अन्य सदस्य उसका सहयोग करें। बच्चे अपने छोटे छोटे काम स्वयं कर सकते हैं, पति घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्य भी जिम्मेदारियां बांट सकते हैं। परिवार में बच्चों की शिक्षा, घर की आर्थिक योजना, संपत्ति, व्यवसाय विषयों पर महिलाओं की राय लेनी भी चाहिए। कई बार महिलाएं परिवार की परिस्थितियां बहुत अच्छी तरह समझती हैं और उनके सुझाव परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसीलिए परिवार में यह भावना होनी चाहिए कि फैसला हमारा होगा, लेकिन हर सदस्य की आवाज होगी। हमें बचपन से समानता का पाठ पढ़ाना होगा। बेटियों को केवल सावधान रहने की सीख ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और सक्षम बनाने की सीख भी देनी होगी। बेटियों को अपनी बात कहना, अपनी समस्याओं को साझा करना आना चाहिए। इसी तरह बेटों को भी सिखाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। परिवार में खुला संवाद होना चाहिए, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां महिला बिना डर के अपनी बात रख सके। सपना देखना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर बेटी किसी

0: प्रतियोगिता, शिक्षा या नौकरी के अवसर के लिए दूसरे शहर जाना चाहती है, तो केवल डर के कारण उसके मौके को समाप्त करने के बजाय परिवार को सुरक्षा यात्रा और रहने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। डर को रोकने का कारण बनाने के बजाय समझदारी से सुरक्षा का रास्ता खोजना चाहिए। जहाँ महिलाओं का सम्मान मिलता है, वहाँ परिवार मजबूत होता है। हम सब मिलकर ऐसा परिवार और समाज बनाएं जहाँ महिला की आवाज़ सुनी जाए और उसके सपनों को सम्मान दिया जाए। जब महिला अकेले संघर्ष करती है तब वह थक जाती है, लेकिन जब परिवार साथ होता है तो वह खिल जाती है, निखर जाती है।
1: सच बात है बहनी। देखा कितना नेक के बताए ने कमल सिंह बहनी कि जब परिवार में एक महिला रहा थी तो उसके कुल जिम्मेदारी उही पर निर्भर रहा थी।
0: बिल्कुल सही
1: मुला
0: कथू।
1: ई बात तो ठीक है, वो तो रही मुला हम सब के जो परिवार में सदस्य है सबके अपन अपन अगर जिम्मेदारी समझ लें तो हमार बहनी हरेन के भी कुछ पल सुकून के मिले।
0: बिल्कुल सही कहतू। और जहाँ देखा हम सभी नवरात्र के बात करत रही ना,
1: हाँ बहनी
0: तो कहा जात ना कि जहाँ नारी स्त्री का मान

0: तो ओके कुल जिम्मेदारी वही पर निर्भर रहा थी
1: मुला।
0: ये बात तो ठीक है, वो तो रही मुला, हम सब के जो ने परिवार में सदस्य है सबके अपन अपन अगर जिम्मेदारी समझ लें तो हमार बहनी हरेन के भी कुछ पल सुकून के मिले।
1: बिल्कुल सही कहत हूँ। और जहाँ देखा हम सभी नवरात्र के बात करत रही ना,
0: हाँ
1: तो कहा जात ना कि जहाँ नारी स्त्री का मान सम्मान होता
0: हाँ।
1: वहीं लक्ष्मी विराजत है,
0: बिल्कुल वही निवास होते उनका।
1: तो देखा हम सभी जैसे कहा थी ना माता के स्वागत जब कलश स्थापना करे थे तो हम सभी कहा थी ना गुंजा कि या देवी सर्वभूतेषु मां रूपेण संस्कृता नमस्तस्ये
0: नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः,
1: है ना। ऐसे हम सभी कहते क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, मतलब अलग अलग रूप में माँ का आवाहन हम सब कर रही है ना कि माँ बुद्धि के रूप में आवा तू, तू विद्या के रूप में आवा,
0: लक्ष्मी के रूप में,
1: क्षमा के रूप में आवा तू, है ना। तो माँ के जो हम सब बलावा थी ना तो माँ आवा थी,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: कहे नहीं तो कहे कि देखा अपने पुत्र पुत्रियों से मिले तो आइए ना अपनी माँ।
1: बिल्कुल देखा, अब जब हम सब कहा थी ना कि अपने घरे घरे में कहा थी हमें भूख लगी हम माँ खाना था, तो माँ ही सुना थी ना हमारे सब सभी के, तो ऐसे जगत जननी जगदम्बा भी जब हम सब कहा थी हमें ई दा तो माँ ही सुना थी, दे हो सकत है लेकिन अनसुना नहीं हो सकत है। तो देखा जब घरे घरे माता आवा थी तो पनघटे पे काहे नहीं आई है,
0: बिल्कुल
1: तो चला तो का एक बढ़िया सा देवी गीत सुनाई, तो चला शशि बाला जैन जी से।

0: सरस्वती बहने देखा कितनी नीक के गौने रही देवी गीत, आई मैया अंगनवा धीरे धीरे। शशि बाला जैन बहनी कितना बढ़िया गौनाई सुनाइन, मुला देखा जब देवी आवा थे ना तो घर कितना सुगंधित और सुखमय हो जाता है कि समाला कि उनकी सेवा में कब दिन से रात, रात से सुबह, दोपहर शाम हो जाते हैं कुल पता नहीं चलत। और ये मैया के जो 9 दिन रहा थे कैसे न बीत जात है कछु पता नहीं चलत।
1: बिल्कुल सही कहा तू देखा। और जब मैया आई तो
0: हाँ
1: मैया के सुंदर सुंदर भोग भी तो अर्पण करे की पड़ी है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: हाँ
1: और अपने बदे भी बढ़िया बढ़िया माता के प्रसाद अर्पित करके अपने भी बढ़िया बढ़िया भोग चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: काहे
0: कहे
1: की
0: कि 9 दिन
1: देखा
0: उपवास रहते हैं जो भैया बहनी हरेन, वो कुल अच्छे अच्छे पकवान बनावत हैं और भोग लगावत हैं, फिर खुद भी पावत हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तू। और जौन है व्रत में देखा हम सब ऐसे चीज ढूंढत थी जौन हल्का हो ताकि पूजन करे में हम सब के आसानी होए,
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो
1: ना।
0: बहनी रसोईया से आज तू का लाए हो?
1: देखा आज हम रसोईया से लाए ही गुड़ वाली रबड़ी,
0: अच्छा
1: है
0: बहनी।
1: ना। तो चला तो का भी बताई और बहनी हरण के भी बताई
0: बिल्कुल
1: कैसे बनत है गुड़ वाली रबड़ी।
0: रबड़ी।
1: तो देखा सबसे पहले
0: हाँ
1: जाना तू
0: बहनी।
1: रबड़ी बने बदे दूध सबसे जरूरी है
0: अच्छा।
1: ना। तो 1 लीटर दूध ले ली, हाँ 150 ग्राम गुड़ ले ली,
0: अच्छा।
1: हाँ, और 1/4 चम्मच छोटी वाली इलायची ले ली,
0: हाँ बहनी।
1: और बादाम और पिस्ता 2 चम्मच ले ली, काट ली ओके छोटे छोटे टुकड़ा में,
0: हाँ
1: ठीक। और केसर के कुछ 10-5 धागा ले ली,
0: अच्छा
1: ठीक
0: बहनी।
1: है। अब सबसे पहले प्रथम चरण में हम सब का करम ना
0: हाँ
1: दूध के खौलाई।
0: हाँ

0: दूध जब खौल जाए तो आँच के धीमी कर दे भाई, ताकि दूध जो है गाढ़ा होता रहे।
1: अच्छा।
0: पर ध्यान रखे के बा गुंजा बहनी कि दूध गाढ़ा करते समय उका बीच बीच में चलावे की जरूर है ना, छोड़ के भाग जिन जाओ कि धीमी आँच पे है तो जौन
1: नीचे से
0: आपन
1: बहनी कुछ भूरा हो जाए या जले
0: पकड़
1: लगे।
0: ले, हाँ
1: हाँ
0: जले लगे, तो
1: बिल्कुल।
0: उका चलावत रहे और जौन मलाई
1: ताकि
0: ऊपर
1: वो
0: आवत
1: बहनी
0: है उका
1: गढ़ात रहे।
0: मिलावत रहे, है ना। तो ऐसे करे से ध्यान रखे से बढ़िया से हमार दूध
1: गढ़ाए जाइए।
0: गढ़ाए जाए। 35 मिनट 40 मिनट में दूध तोहार गढ़ाए जाए, ठीक है। अब तू जौन गुड़ लिए हो ओका गुड़ का क्या करबू, छोटे छोटे टुकड़ा में काट लेबू,
1: अच्छा।
0: ठीक। और गुनगुना पानी ले लेबू, हाँ वही गुनगुना पानी में गुड़वा के
1: अच्छा।
0: डाल दा, गुड़वा के वही में डाल देबू। फिर
1: हाँ
0: ओकरे बाद में एक साफ सूती मलमल के कपड़ा लेला, वही
1: अच्छा।
0: से गुड़ के पानी के छान दा, ताकि अगर कुछ मिट्टी विट्टी कंकड़ उंकड़
1: हाँ
0: होए
1: हाँ
0: तो
1: जो
0: वो
1: खिस
0: छन आ
1: खिसा अपन
0: जाए।
1: है बहनी दूर हो जाए।
0: अब वो जो घोल है ओका
1: हाँ
0: ठंडा होवे देने,
1: अच्छा।
0: ठीक। और जब घोलवा ठंडा हो जाए तो ओका एक जगह रख दें। अब देखा सबसे महत्वपूर्ण बात आवत है,
1: हाँ
0: तू जौन तोरा जौन दूध गाढ़ा करे
1: हाँ
0: रहू
1: हाँ हाँ
0: वो दूध के अब चूल्हा के तू बंद कर दे, ठीक। और दूध के धीरे धीरे धीरे धीरे शांत होए दे, मतलब कि
1: ठंडा हो
0: ओकर
1: जाए।
0: हाँ ठंडापन में वो आवे धीरे धीरे, हाँ। काहे कि देखा अगर गर्म दूध में हम सब तुरंते गुड़
1: गुड़
0: डाल
1: मिलाए थे।
0: देबे तो
1: हाँ
0: दूध
1: फाट
0: गुड़
1: जाते हैं
0: बिल्कुल फट जाता
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो जब धीरे धीरे धीरे दूध ठंडा होए लगी तो ओमा हम सब जो गुड़ का घोल है ओका
1: हाँ
0: धीरे धीरे डलियां चलेंगी डलियां चलेंगी, ऐसे करे से दूध फटी नहीं। अब ओमा जोन हम सब इलायची लिए रहे
1: हाँ
0: ओका बादाम का और पिस्ता के जोन टुकड़ा रहे ओका मिलाए देबे, और थोड़ी देर एकदम जब ठंडा हो जाए तो ओका हम सब जो है फ्रिज में रख
1: रख
0: देबे,
1: दे।
0: ताकि वो एकदम ठंडा हो जाए जम जाए। आपका रबड़ी तैयार हवे।
1: ऊपर से जो तू बताओ केसर के धागा
0: हाँ
1: सजाए
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वाद ही
1: दे
0: बदल जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो चला अब इतनी बढ़िया तो का हम रबड़ी खियाए दिए है।
1: तो अब हम तो का बहनी बढ़िया से एक ठी और गौने सुनाई थी। फिल्म है नदिया के पार और बोला है बबुआ ओ बबुआ। चला हेमलता बहनी से सुन लीन जाए।

0: देखा इतनी बढ़िया गुण एक बात चला, एक संदेश सुन लीन जाए।
1: अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे। ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com। panghatprogram@gmail.com।
5: तो बहनी अब विदा लेवे के समय हो गया है।
0: बहनी हरेन से राम राम कीन जाए। राम राम,
5: राम बहनी हरे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अभी बहनें सुन रही थीं पनघट।

0: Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like Khel Mahakumbh to Khelo India.
1: Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the sports ecosystem has witnessed a transformation which reflected on the medal tally of the Indian athletes and sportspersons in national and international arenas. From Khel Mahakumbh in 2010 to Khelo India, Prime Minister Narendra Modi has shown a path which built an ecosystem in sports from the grassroots level to empower sportsperson to gain global excellence. Prime Minister Narendra Modi, in his speech from the Red Fort, said the government is committed to enhance sports ecosystem.
2: Bharat khel ki duniya mein apni jagah bana raha hai. Sport ki duniya mein Bharat ka pradarshan behtar hota raha hai aur hum 2036 mein Olympic ke majboot daavedar ban kar ke aage badh rahe hain.
1: With 85 medals in the recently concluded Asian Games, India finished fourth with a spectacular performance. Target Olympic podium top national sports policy, which aligned with the national education policy, Fit India movement. There are several initiatives by the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
0: India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir for the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police makes elaborate security arrangements amidst call for protest at Jantar Mantar, detain some individuals planning to participate, rail and metro services partly affected in national capital. BJP accuses opposition of weakening constitutional institutions and breaking people's faith in democracy. Defence Minister Rajnath Singh says India is closely monitoring neighbourhood and global security developments, reiterates armed forces are undergoing major transformation under Atmanirbhar Bharat vision. India slams Pakistan at UN General Assembly for spreading lies and falsehoods about Jammu and Kashmir. And IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Karnataka, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जाँच की जा रही है।
4: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
3: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक

0: मार्गों से निकाला जा रहा है।
1: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
3: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
4: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
1: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
5: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
4: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से

0: वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा सेगमेंट एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओ, आज
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। लोकगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लहरी लाल जी यादव और साथियों की आवाज में देवी गीत।

अभी आपने सुना लहरी लाल जी यादव और साथियों की आवाज़ में ये गीत। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हेम श्रीवास्तव की आवाज़ में देवी गीत।

अभी आपने सुना हेम श्रीवास्तव की आवाज में देवी गीत। लीजिए सुनिए हेम श्रीवास्तव के ही आवाज में दात्रा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हेम श्रीवास्तव के आवाज में धात्रा। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रमेश चंद्र और साथियों की आवाज में देवी गीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रमेश चंद्र और साथियों की आवाज में दादरा

इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं धरती के गीत।

कलाकार हैं अखिलेश कुमार यादव और साथी। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अखिलेश कुमार यादव और साथियों के स्वर में ये देवी गीत। आइए अब सुनते हैं लाचारी।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं धरती के गीत। कलाकार हैं अखिलेश कुमार यादव और साथी। आइए अंत में सुनते हैं इनके स्वर में दादरा।

0: अभी आप सुन रहे थे धरती के गीत, कलाकार थे अखिलेश कुमार यादव और साथी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग डियर लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, और अगर खुश नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको हर वक्त खुश रहने का दिखावा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूथ शो युवाणी, जहां बातें सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि उस दुनिया की भी होती है जो हमारे अंदर चल रही होती है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उन्नति, और आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होने वाला है, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा

रिलेटेबल और थोड़ा ऐसा भी जो आपके दिल को टच कर जाए। तो अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, और अगर आप अभी बस में हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कमरे में बैठे हैं, या फिर शाम को छत पर लेटकर आसमान देख रहे हैं, तो बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज बात होने वाली है एक ऐसी चीज़ की जिसे हम सब फील तो करते हैं लेकिन उसके बारे में बात करने से अक्सर कतराते हैं। यस गाइस, आज बात होगी मेंटल हेल्थ की, क्योंकि आज यानी 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप दोस्तों के साथ हंस रहे हो, रील्स देख रहे हो, मीम्स शेयर कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पूछा हो कि लाइफ कैसी चल रही है और आपने बिना सोचे बोल दिया कि बस बढ़िया, जबकि सच में आपके दिमाग में एक साथ 100 चीज़ें चल रही होती हैं। असाइनमेंट्स का प्रेशर, एग्जाम्स की टेंशन, करियर की चिंता, घर वालों के एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों से कंपैरिजन, और इन सब के बीच में बस एक सवाल आता है दिमाग में, यार मैं अपनी लाइफ के साथ आखिर कर क्या रहा हूँ। रिलेटेबल लगा ना? और ऑनेस्टली आप इसमें अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आज की जनरेशन में आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन प्रेशर्स भी कम नहीं होते। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन दिखा रहा होता है, कोई फॉरेन ट्रिप पर रहता है, किसी को ड्रीम कॉलेज मिल चुका होता है, और कोई अपने करियर में बहुत आगे निकल चुका होता है, और फिर आप अपनी नॉर्मल सी लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार सबकी लाइफ तो इतनी सॉर्टेड है, सिर्फ मेरी ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात आप ज़रूर रखिए कि किसी की सोशल मीडिया की स्टोरी उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी नहीं होती। आपको किसी की सक्सेस स्टोरी दिखाई देती है, उसके पीछे के स्ट्रगल्स नहीं दिखाई देते। आपको किसी की स्माइल दिखाई देती है, लेकिन वो किन चीज़ों से होकर गुजर रहा है ये शायद आपको पता भी ना हो। इसलिए डियर लिसनर्स, अपनी जर्नी को किसी और की टाइमलाइन से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। अब अगर बात करें मेंटल हेल्थ ही, तो मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई इंसान डिप्रेशन में है या एन्जाइटी से गुजर रहा है। इसका मतलब है हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग से भी, यानी हम कैसा महसूस करते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरों से कैसे कनेक्ट रहते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे फंक्शन करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वीक हों। एन्जाइटी होना कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, स्ट्रेस फील करना कोई फेलियर नहीं है, और मदद मांगना तो बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे टाइम में तो ये सब नहीं होता था, तो आप एक बात ज़रूर याद रखिए कि हर जनरेशन में अपनी अलग चैलेंजेस होती हैं, और किसी के स्ट्रगल को छोटा बताने से उसका दर्द गायब नहीं हो जाता। किसी से सपोर्ट मांगने से अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अगर सॉल्व हो पा रही है तो फिर क्या ही दिक्कत है। अब अगर बात करते कुछ टिप्स की कि आप कैसे मेंटल हेल्थ और एन्जाइटी से खुद को दूर रख सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुद को थोड़ा लाइट रख सकते हैं, तो उसमें कुछ टिप्स शामिल है, जैसे कि गेट इनफ स्लीप। ऐसा भी होता होगा कि कभी कभी रील्स देखते देखते रात भर गुजर जाती होगी, रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, और फिर सुबह आपको जल्दी कॉलेज या ऑफिस के लिए उठना होता होगा। तो फिर हमारे दिमाग में ये आता है ना कि यार थोड़ा हमें हमारी लाइफ में पीस भी चाहिए। तो आप ऐसा समझिए कि नींद आपकी लग्जरी नहीं बल्कि आपकी बेसिक नीड है। कोशिश कीजिए कि आपकी स्लीप रूटीन जो है वो रेगुलर रहे। फिर अगली टिप है कि आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करिए, जैसे वॉक, कोई फेवरेट सॉन्ग पर डांस करना, या फिर बालकनी या छत पर जाकर के फ्रेश एयर लेना, जिससे कि मतलब बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करिए जिससे कि आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत मूवमेंट्स बनी रहे। और अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उसके बारे में बात करने से बिल्कुल ना कतराए। कभी आपका कोई दोस्त होगा, कोई फैमिली मेम्बर होगा, कोई काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टेक अ ब्रेक। हर वक्त प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है। आप कोई मशीन नहीं है कि आपको हर वक्त समय में काम करना है और आप थके भी नहीं। कभी कभी आराम करना भी प्रोग्रेस होता है। और जब ब्रेक की बात होती है ना, तो हमारे कार्यक्रम में ब्रेक का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है कि मैं अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को प्यारे प्यारे गीतों से उस ब्रेक को, अपनी चर्चा को भी थोड़ा ब्रेक देते हैं, और अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं को गीत भी सुनवाते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम के पहले गीत का।

वेलकम बैक दोस्तों। तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ आज एक और बहुत ही ख़ास दिन हम मना रहे हैं, जो कि है महालया। महालया का दिन विशेष रूप से बंगाली समुदाय और पूरे भारत के लिए दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक होता है। आज अश्विन महीने की अमावस्या है। आज से पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और मातृपक्ष की शुरुआत हो रही है। इसी दिन को हम कहते हैं महालया, यानी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का दिन। और साथ ही ये प्रतीक होता है बुराई पर अच्छाई की जीत का। और ऑनेस्टली दोस्तों, महालया की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये हमें याद दिलाता है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना हो, उम्मीद और हिम्मत के साथ एक नई शुरुआत हमेशा मुमकिन है। अब जब महालया की बात होती है तो एक नाम लिए ये चर्चा अधूरी होती है, और वो नाम है बीरेंद्र कृष्ण भद्र। इनके बारे में हम युवा श्रोताओं को जानना बेहद ज़रूरी है। साल 1931 यानी आज से लगभग 95 ईयर्स पहले आकाशवाणी पर पहली बार महालया का दिन

महिषासुर मर्दिनी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ था। बीरेंद्र कृष्ण भद्र जी ने अपनी उस भारी गूंजती हुई आवाज और अद्भुत संस्कृत उच्चारण से जो पाठ किया वो आज भी अमर है। और इसी के साथ बंगाल में सुबह सुबह भी महिषासुर मर्दिनी का पाठ और उसका संगीत सुनने की परंपरा भी बेहद खास है। इसकी आवाज़ में एक अलग ही डिविनिटी और एनर्जी फील होती है। तो दोस्तों, इस महालय पर नेगेटिविटी को थोड़ा साइड में रखिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी को जगाइए और उन नई बिगनिंग्स का स्वागत कीजिए जिनका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे।

0: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रयास रहता है कि हम आपके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ खास लेकर के आए। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं कहानी, जिसकी कहानीकार हैं नुपुर कपूर। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: अपने माथे पर किसी की नरम उंगलियों को स्पर्श कर पा रही थी। आंखें खोलने पर सामने जिज्जी का सुंदर स्वच्छ चेहरा नजर आया। मैं उनकी आंखों में उनका इतना सुलझा व्यक्तित्व महसूस कर पा रही थी। बिस्तर पर पड़ी अधमुही खुली किताब इस बात का प्रमाण थी कि कब मैं इतना बिखर कर बेसुध हो गई कि अपने आप को भी खोसा दिया था। और उन्हीं किताबों में किसी खुली किताब के पन्नों के बीच में रखे गुलाब के मुरझा जाने के बावजूद उनमें से आती खुशबू मेरी जिज्जी की थी। सफेद चांदनी और शालीनता की चादर ओढ़े कोई पवित्र मूर्ति से कम ना होंगी। प्यार से हम सब उनको जिज्जी बुलाते थे। कोई 6 दशक से इस घर में रह रही थी। इस उम्र में भी वही तरोताजगी, खाने में भी वही रईसाना अंदाज, कभी छोला तो राजमा, और हाँ, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये मैं कैसे भूल सकती। लस्सी के बिना तो पंजाब का पिंडी हिला देती थी। पक्की पंजाबिन जो ठहरी थी, और उनको देखने मात्र से मेरे चेहरे में मुस्कान आ जाती थी। आ पुत्र, जरा ये बेसन का हलवा चख कर तो बताना, स्पेशली तेरे लिए बनाया है। जी, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं? अरे तू इतनी प्यारी है, तेरे से कौन प्यार नहीं करेगा। अब बता हलवा कैसा बना है? बिल्कुल आपकी आवाज की मिठास से भरा। जीती रहो मेरी पिता, तू तो बहुत अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखती है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ती रहेगी। मुझे 6 महीने ही तो हुए थे अपने शहर बनारस को छोड़े, जहां मेरा सब कुछ होते हुए भी मेरा ना था। पर हाँ, मुझे पंजाब में मेरी जिज्जी जरूर मिल गई, जो मुझे मेरे शहर की कमी ना खलने के लिए लाख कोशिशें करती थी। अब अपने दर्द को लफ्ज बनाकर रेडियो पे कहानी सुनाने लगी हूँ। हर सुबह 9 से 11 लोग मेरी कहानी सुनने का इंतजार करते हैं। आज आरजे निहारिका क्या सुनाएगी? और हर बार की तरह मैं जैसे माइक के सामने तुमको पढ़ने लगती थी। हाँ, विनम्र तुमको, जिसने मुझे एक हवा के झोंके के साथ खत्म सा कर दिया था। अचानक से मोबाइल पे आती किसी की कॉल पे ध्यान गया, अननोन नंबर था। हेलो, मैंने धीरे से कहा। हाय निहारिका, हाउ आर यू? कायनात, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड, तेरी आवाज़ से तो नहीं लगता तुम अच्छी हो। ऐसा कुछ नहीं है कायनात, ये बताओ विनम्र कैसा है? आर यू गोना मैड और व्हाट? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट मेड फॉर यू एंड यू डिजर्व बेस्ट? आई अंडरस्टैंड कायनात। नो यू डोंट निहारिका, ठीक तो कह रही हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। विनम्र, हाँ वही विनम्र जिससे कॉलेज में 9 साल पहले मिली थी, कब उसको बेहद चाहने लगी थी और कुछ 4 साल पहले ये बात उसे पता लगने पे इस कदर उसने मुझे बेइज्जत गुस्सा करके इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसका मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। एटलीस्ट ही शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, इस तरह रिएक्ट कौन करता है? मेरा ये सब याद करके सिर दर्द से फटा जा रहा था। जिज्जी ने जैसे मेरी माथे पर पड़ती सिलवटे जैसे पढ़ ली थी। धीरे से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वाहे गुरु जी, जो भी करता है और करेगा वो अच्छे के लिए होता है। मैं यहाँ इस सोच में डूबी पड़ी थी कि इसमें अच्छा क्या था। ना वो मुझे समझ पाया और ना मैं उसे समझा पाई। कम से कम बात करके सॉर्ट आउट तो कर लेता। कॉफ़ी की हर एक सिप में कुछ मिठास कम सी लग रही थी, जब मैं अपनी कलम में ही इतनी कड़वाहट की स्याही भरकर मोहब्बत की जगह लोगों को उससे मिलने वाले दर्द को परोसने लगी थी अपनी कहानी या शायरियों के द्वारा, तो ये कॉफ़ी की मिठास जाना भी जायज़ था, जिसकी मिठास वे सिर्फ तुम ही वापस ला सकते थे। मेरे मन में चल रहे प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, तो अब अपने सवालों को ही बहलाना सीख गई हूँ। तुमसे और तुम्हारी बातों से हर्ट होकर भी तुमको अपने अंदर से निकाल पाना मेरे लिए संभव ना था। हर बार की तरह तुम्हारी लिखी

डायरियों को पढ़कर तेरी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगती थी, जब तुम क्लास की कॉर्नर वाली सीट पे बैठकर अपने शायराना अंदाज में सुनाते थे। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, तुम्हारी महफिल को जब उर्दू समझ ना आए तो कितने प्यार से तुम समझाते, जैसे हर इंसान का जीवन उन शायरियों में समा सा गया हो और हर कोई अपने आप को उनमें ढूंढता हो। आज मुझे हर जगह से ब्लॉक हुए 8 साल हो चुके हैं, पर अभी भी तुम्हारे दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरी से तुमको पढ़ सकती हूँ। हाँ, शायद तुम्हें भी किसी बात का गम था और उसका हिसाब किताब सिर्फ खुदा के पास ही था, और वो दर्द में तुम्हारी नगमों को पढ़कर महसूस कर सकती थी। खैर, जो भी हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। मैंने जिज्जी की लाइन खुद को दोहरा दी। कभी कहानी सुनाते सुनाते 11 बजने को हो गए, पता ही नहीं चला, और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहा, मैं हूं आपकी आरजे निहार का, और आगे की कहानी को सुनने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो मिलते हैं अगले मंडे 9 से 11 आपकी अपने शो यादों के चितारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। किस तरह मैं अपनी कहानी को मोड़ देकर अंत करती, जिसका अंत मुझे खुद भी नहीं पता था। इतना कहने के तुरंत बाद कायनात का फिर कॉल था, निहारिका, व्हाई डोंट यू लीव हिम ऑन डेस्टिनी? तुमने आज भी अपनी रेडियो पे कहानी जो सुनाई वो उसके लिए ही थी, क्यों याद कर अपने को जलाती हो? उसका इतना कहते कहते गला रुन सा गया था। वो मेरे जवाब का जैसे इंतजार कर रही हो। निहारिका सी, उसको अपनी गलती समझ आएगी तो वो जरूर तुमसे माफी मांगने आएगा, बट उसको टॉर्चर नहीं करना था। ही कैन सिंपली डिनाई इन पोलाइट वर्ड्स, नो वन हैज राइट टू रिएक्ट लाइक दिस। उसकी शायरी को पढ़कर लगता है वो भी दर्द के बोझ से दब रहा है। एंड यस, ही हैज टू पे फॉर एवरीथिंग। कायनात ऐसा नहीं कहते हैं। फिर कैसा कहते हैं, जैसा बुरा तुमको विनम्र ने कहा? एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर। मैं कायनात की हर बात को सुनकर भी अनसुना नहीं कर पा रही थी। सही तो कह रही थी, जिसको मेरी इज्जत करना नहीं आया वो कैसे खुश रह सकता है। ये सब सोचते सोचते जब मैं ऑफिस से निकल रही थी तो सामने से समर्थ ने कहा, हाय निहारिका, डायरेक्टर सर ने तुम्हें बुलाया है। ओके, मैं जा रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। हाय निहारिका, गुड आफ्टरनून, सिट सिट। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि वी नीड अ चेंज एंड ट्विस्ट इन आर शो यादों का पिटारा में। अब से सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथ एक मेल आरजे भी होगा स्टोरी नरेट करने के लिए। वाह सर, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। सो वो कौन इंसान है? उससे से तुम थोड़ी देर बाद ही मिल लेना। एंड हाँ, वन थिंग मोर, तुम्हारी इनकम्प्लीट स्टोरी में भी वो तुम्हारे साथ बोलेगा। बट सर, वो कहानी पर वर कुछ नहीं, तुम उसको समझा देना उस कहानी की एंडिंग। ही इज एब्सोल्युटली गुड स्पीकर। ओके सर। यहाँ मुझे एंडिंग भी नहीं समझ आ रही, और वो जो जनाब आएंगे उसको क्या समझाऊंगी? तभी किसी ने नॉक किया। यस प्लीज। मैंने झटके से सिर ऊपर उठाया, सामने विनम्र था। मेरी रूह कांप चुकी थी, आंखें नम हो रही थी। तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारा कोआरजे विनम्र। व्हाट, तुम सुनाओगे मेरे साथ कहानी? ऑफ कोर्स, प्लीज शो मी द स्क्रिप्ट। मुझे नहीं पता इसकी एंडिंग, तुम खुद लेना लिख लेना इसकी एंडिंग। और मैं गुस्से में तमतमाते हुए बाहर आ गई। मंडे भी आ गया, हम दोनों बिना रिहर्सल के कहानी सुनाने जा रहे थे। मेरी नज़र सिर्फ विनम्र पर टिकी थी। उसने आंखों से माइक की तरफ इशारा करते हुए ऑल द बेस्ट कहा। एक गहरी सांस भरते हुए मैंने बोला, हेलो एवरीवन, मैं आरजे निहारिका और आरजे विनम्र आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने शो यादों के पिटारे में। अब तक आपने सुना था कैसे निहारिका विनम्र के लिए परेशान है और क्या वो वापस आकर माफी मांगेगा कि नहीं। तो चलिए जानते हैं, अगर अब वो आ भी गया है तो कैसे उसकी कहानी को पूरा करेगा। विनम्र ने मुझे मेरी बात को काटते हुए कहा। मैं उसको बहुत देर तक सिर्फ सुनती ही चली जा रही थी। आज मेरे पास कुछ कहने या सुनाने को नहीं था। फिर बीच में एक पंक्ति मैंने कहना शुरू किया, जिंदगी की कश्ती में संभल के बैठना जनाब। मैंने कहा, जिंदगी की कश्ती में संभल कर बैठना जनाब, यहाँ नाविक से ज्यादा दुआओं की जरूरत होती है। वाह, तो मैंने शेर व शायरी करना छोड़ दिया तो मोहतरम।

0: शायर के नाम से मशहूर हो रही हैं। ये कहकर विनम्र हंसने लगा। 10:50 हो गए थे और इस बात से परेशान थी कि इस कहानी की एंडिंग क्या होगी। विनम्र ने माइक को थोड़ा पास लाते हुए कहा, कहानी के सफ़र में हम इतनी कहानियाँ गढ़ते चले गए, कब तुम मेरी कहानी और मैं उस कहानी का किरदार बन गया। तो चलो फिर से उन कहानियों के पन्ने पलटते हैं, शायद मुझे मेरी गलती का अंदाज़ा लग चुका हो और तुमको अपने खोया हुआ प्यार वापस फिर से मिल जाए। ये थी हमारी आज की कहानी। कभी कभी हम देर से ही रियलाइजेशन करते हैं, पर किसी चीज़ को बेहद प्यार करोगे तो वह हमें ज़रूर मिलती है। इस कहानी ने और विनम्र ने मुझे निशब्द सा कर दिया था, क्योंकि कुछ कहानी इस कदर पूरी होती है कि हमने ऐसा होने का अंदाज़ा भी नहीं लगाया होता। जिद जी की बात मुझे अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी में भी याद आ रही थी। पुत्र, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी कहानी जिसकी कहानीकार थी नुपुर कपूर। हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले

0: कुछ कहानी इस कदर पूरी होती है कि हमने ऐसा होने का अंदाजा भी नहीं लगाया होता। जिज्जी की बात मुझे अपनी 25th मैरिज एनिवर्सरी में भी याद आ रही थी। पुत्र, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी कहानी जिसकी कहानीकार थी नुपुर कपूर। हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक और म्यूजिकल ब्रेक का।

भारतीय अंग्रेजी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिन्हें हम प्यार से आर के नारायण के नाम से जानते हैं। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। उनका बचपन मुख्य रूप से दक्षिण भारत के सांस्कृतिक वातावरण में बीता। उनके पिता एक शिक्षक और बाद में स्कूल के प्रधानाचार्य थे। इस कारण शिक्षा और पुस्तकों का वातावरण उनके जीवन में बचपन से ही मौजूद रहा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में प्राप्त की और बाद में महाराजा कॉलेज मैसूर से स्नातक की शिक्षा पूरी की। लेकिन आर के नारायण के लिए केवल डिग्री हासिल करना ही लक्ष्य नहीं था, उनके भीतर बचपन से ही साहित्य और लेखन के प्रति गहरा आकर्षण था। वो लेखक बनना चाहते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने इसी सपने को अपना जीवन बना लिया। शुरुआत में उनकी रचनाओं को प्रकाशकों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार लिखते रहे और फिर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन ने नारायण की प्रतिभा को पहचाना और उनके शुरुआती उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उपन्यास 1935 में प्रकाशित हुआ और यहीं से आर के नारायण के साहित्यिक जीवन को व्यापक पहचान मिलनी शुरू हुई। और अगर आर के नारायण की साहित्यिक दुनिया की बात हो और मालगुड़ी का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। मालगुड़ी एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर है, लेकिन नारायण ने इसे इस तरह प्रस्तुत किया कि पाठकों को ये किसी वास्तविक शहर से कम नहीं लगता। यही आर के नारायण की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। उन्होंने असाधारण नायकों के बजाय साधारण लोगों को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया। मालगुड़ी के बच्चे, शिक्षक, दुकानदार, विद्यार्थी, साधु, व्यापारी, बेरोजगार युवक, ये सभी उनके साहित्य में अपनी अपनी कहानी लेकर आते हैं। और अब बात करें उनकी पहली प्रसिद्ध रचना की, जो कि थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसकी खूबसूरती यही है कि ये कहानी केवल बच्चों की शरारतों तक सीमित नहीं रहती। इसके माध्यम से हमें उस समय के भारतीय समाज, शिक्षा व्यवस्था और औपनिवेशिक भारत की झलक भी मिलती है। और इन सब के अलावा उनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो उसमें शामिल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इसके अलावा उन्होंने कहानियाँ, संस्मरण और आत्मकथात्मक रचनाएँ भी लिखी। उनकी आत्मकथा माय डेज उनके जीवन और अनुभवों को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और यही बात उन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली प्रमुख लेखकों में से उन्होंने अपनी जगह बनाई। उनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ और दुनिया भर के पाठकों ने उन्हें पढ़ा। आर के नारायण को केवल साहित्यिक योगदान के लिए अनेक महत्वपूर्ण सम्मान मिले, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास के लिए मिला, जो कि था द गाइड। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और बाद में पद्म विभूषण जैसे भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद आर के नारायण का निधन 13 मई 2001 को हो गया। लेकिन एक लेखक की मृत्यु उसके शब्दों की मृत्यु नहीं होती। आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, उनके पात्रों पर चर्चा होती है और मालगुड़ी की दुनिया नए पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उनका साहित्य हमें याद दिलाता है कि इंसानी जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत अर्थपूर्ण हो सकती हैं, और शायद यही आर के नारायण की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने सामान्य जीवन को असाधारण साहित्य में बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे आज के प्रेरणा पुंज आर के नारायण के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ आर के नारायण से सीखने को मिला होगा, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली होगी कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में भी, सिंपल सी चीज़ों में भी आप कैसे खूबसूरती ढूंढ सकते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, कितनी अर्थपूर्ण हो सकती है, उनमें मीनिंग हो सकती है, ताकि आप जीवन की गहराई को और अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनकी गहराई को, उनके महत्व को आप समझ सकें। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, लेकिन चलते चलते हम आपको एक और प्यारा से गीत सुनवा

दोस्तों, अब बारी है अपने अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज की। आज का प्रेरणा पुंज हमारा समर्पित है एक ऐसे महान भारतीय लेखक को जिन्होंने भारतीय जीवन, समाज और आम इंसान की छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों को इतनी सरलता और खूबसूरती से शब्दों में उतारा कि उनका बनाया हुआ एक काल्पनिक शहर आज भी साहित्य की दुनिया में जीवित है। जी हाँ, हम बात करेंगे

दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम आज का कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com पर। तब तक के लिए मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।

यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 107.3 मेगा हर्ट्स पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर यह कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल

0: का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 9:30 आप सुनेंगे संस्कृत भारती। 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। पंचायत घर में शाम 6:30 ग्रामीण भाई पन्ना लाल यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर विमलेंदु शेखर से विनय श्रीवास्तव की बातचीत सुनेंगे। विषय होगा कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप डॉक्टर संतोष भदौरिया की वार्ता सुनेंगे। हिंदी भाषा में उद्भव और विकास। रात 8:15 सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे जलज श्रीवास्तव के स्वर में गीत और भजन। रात 8:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे रूपक जिन ढूंढा तिन पाइया। सबरस कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात 10:00 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। कृषि जगत में प्रातः 6:35 पर किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार की से की गई बातचीत। विषय होगा प्राकृतिक खेती एक आवश्यक जानकारी। स्वास्थ्य चर्चा रोज की तरह प्रातः 6:45 पर। इसमें डॉक्टर वीबी निघोसकर की वार्ता होगी कलर ब्लाइंडनेस कारण लक्षण और उपचार। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनवाएंगे सवेरे 7:00। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सवेरे 7:30 आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन और इनका बांसुरी वादन आप दिन में 12:15 पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार प्रयागराज सवेरे 8:45 पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। लोक माधुरी में सवेरे 10:05 पर कलाकार होंगी कौशल्या देवी और शैल कुमारी एवं सखियां। दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगे हरिश्चंद्र हलचल और साथी। शाम 6:30 पंचायत घर में भी आप हरिश्चंद्र हलचल और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनेंगे। साथ ही एक वार्ता होगी गौरव जैन की दुधारू पशुओं की देखभाल एवं गौशाला प्रबंधन। बाल संघ बच्चों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 11:15 पर और बाल गोपाल शाम 5:00। फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध प्रसारित करेंगे दिन में 7:15। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे सुरेंद्र कुमार नारंग। पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी आई है आप

सुन सकते हैं रात 8 बजे। रात्रि 8:30 पर होगा साप्ताहिक कार्यक्रम। आज इतवार है, इसमें हम आपको सुनवाएंगे मधुर श्रीवास्तव की लिखी झलकी खानदानी लोभ। अभी आप आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना।

पहली सूचना है थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज से। आशाराम सूचित करते हैं उनकी पुत्री मोहिनी, उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये दिनांक 2 सितंबर 2026 से दिन में लगभग 2 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम सुल्तानपुर थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज को सूचित करें। संबंधित फ़ोन नंबर है 9619540120। शिवम पाल, पुत्र महेंद्र पाल, उम्र 14 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। ये दिनांक 13 सितंबर 2026 से शाम लगभग 5 बजे से अपने ग्राम निवास स्थान खेवराजपुर थाना थरवई जनपद प्रयागराज से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने नीले रंग का पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना थरवई जनपद प्रयागराज को सूचित करें। संबंधित फ़ोन नंबर कृपया नोट कर लें 7054321403। अगली सूचना है कुमारी गुड़िया के बारे में। कुमारी गुड़िया उर्फ रेशमा, पुत्री पन्नालाल सोनकर, उम्र 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, बदन इकहरा है। ये दिनांक 1 सितंबर 2026 से दिन में लगभग 1:30 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम जेरा जनपद प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना मांडा जनपद प्रयागराज को सूचित करें। संबंधित फ़ोन नंबर कृपया नोट कर लें 8433601715। दूसरा नंबर है 7738215251। सूचना समाप्त हुई। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर।

0: पृथ्वी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जन्तरमन्तरस्थले विरोधसमाह्वानेषु दिल्ली आरक्षिबलेन प्रवर्तिता सुदृढा सुरक्षाव्यवस्था। अनेके संदिग्धाः निरुद्धाः। राष्ट्रिय राजधान्यां रेल मेट्रो सेवाः च आंशिकतया प्रभाविताः। संवैधानिक संस्थानां दुर्बलीकरणस्य, लोकतन्त्रे च जनविश्वासभञ्जनस्य विपक्षोपरि भाजपा दलेन आक्षिप्तः गभीरारोपः। प्रतिवेशु देशेषु वैश्विक सुरक्षा समीकरणेषु च भारतस्य सूक्ष्मदृष्टिः। आत्मनिर्भर भारत संकल्पेन सशस्त्र सेना बलानि महारूपांतरणं प्राप्नुवन्तीति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः। संयुक्तराष्ट्र सभायां पाकिस्तानाय भारतस्य दृढ़ प्रत्युत्तरम्। उक्तञ्च यत् जम्मू कश्मीरं वर्तते भारतस्य अभिन्नम् अंगम्। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीरेषु अतिवृष्टेः व्यंजितं पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य जन्तरमन्तरस्थले CJP समूहस्य विरोध प्रदर्शनस्य आह्वानं वीक्ष्य दिल्ल्यारक्षिबलेन नवदिल्लीक्षेत्रे व्यापक सुरक्षा प्रबन्धाः विहिताः, येन जनसुरक्षा शान्तिव्यवस्था च बाधिता न भवेत्। वार्ताहरैः सह सम्भाषणे दिल्ली आरक्षि उपायुक्तः कुमाराभिषेकः अवोचत् यत् क्षेत्रे लोकव्यवस्थायाः अक्षुण्णतायै बहुषु स्थलेषु आरक्षिबलानां निक्षेपः कृतः। सः सूचितवान् यत् नवदिल्लीमण्डले पूर्वोपायरूपेण सघन अन्वेषणप्रक्रिया प्रचलति। अथ च अद्यतने विरोधप्रदर्शने भागं ग्रहीतुं यतमानाः कतिपयजनाः पूर्वमेव निरुद्धाः। अपरतश्च यातायातारक्षि उपायुक्तः विकासकुमारः न्यरूपयत् यत् नवदिल्लीक्षेत्रे यातायातनियमनस्य कारणात् दैनिकयात्रिकाणां सौविध्याय वैकल्पिकमार्गाणां व्यवस्था क्रियते, येन जनसामान्यस्य गमनागमने कोऽपि व्याघातः न स्यात्। भारतीयजनतादलस्य राष्ट्राध्यक्षेण नितिननवीनेन अद्य विपक्षिदलानामुपरि देशे अस्थिरताम् उत्पादयितुम् अथ च विदेशीयशक्तीनां संकेतेन कार्यं विधातुं गभीरः आरोपः विहितः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणे श्रीनवीनेन विपक्षिदलानामुपरि आक्षेपः कृतः यत्ते देशे अतीवसङ्कटमयीं गभीरां च स्थितिं निर्मातुं प्रयतन्ते। सः अग्रे प्रत्यपादयत् यत् विपक्षिदलैः संविधानस्य नाम्नि मिथ्याप्रचारं कृत्वा जनमतस्य अपमाननं विधीयते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् भारतम् आधुनिकयुद्धकलायाम् अथ च वैश्विकसुरक्षाव्यवस्थायां सम्भूयमानान् द्रुतपरिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते। अद्य जोधपुरवायुसेनाकेन्द्रे 26,000 तरङ्गशक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अवोचत् यत् पूर्वप्रतिष्ठिता विश्वव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। अपरत्र उदीयमानायाः नूतनवैश्विकव्यवस्थायाः स्वरूपम् एतावतापि अनिश्चितं वर्तते।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: अद्य महालयपर्व सोल्लासं परिपाल्यते, येन सह

0: काश्मीरप्रदेशेषु प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम। पंचो देखा किसान भाई के खेती किसानी के लिए उनका खेती किसानी में जो उन धन की जरूरत पड़त है ओके इंतजाम करे के लिए भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के व्यवस्था कीन गई बा। किसान क्रेडिट कार्ड में भैया ये है कि 5 लाख तक का लोन, 5 लाख तक का ऋण खेती के संबंध में, खेती के यंत्र के संबंध में आसानी से दिया जा सकत है। जितना भैया हरन के पास खेत है ओकरे हिसाब से खतौनी उतौनी के हिसाब से केसीसी बनत है, वो धनराशि निर्धारित होई के मिलत है और कम ब्याज पे दिया जात। सामान्य रूप से 7% ब्याज की बात है, लेकिन अगर 1 साल के अंदर ऋण का चुकता कह दे थी किसान भैया हरे तो निश्चित रूप से ये जाना कि हमें जो ब्याज बा वह में कुछ छूट का व्यवस्था सरकार की ओर से कीन जात। तो ये तो हम कही थे कि सभी भैया हरन के अपनावे के चाहिए कि भाई देखा खेती किसानी में जब बिया खरीदे के है, जब कोनो यंत्र खरीदे के है या उर्वरक ले के है, अगर पैसा अपने पल्ले ना आए ना तो ये क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अपन काम चला लें और जैसे उत्पादन हो फसल के अपन जो ऋण बाहू का अदा कर दें जो आगे का भी सुविधा बनी रहा है। हम कहते यही हिसाब से भैया देखा यार तो शनिवार का दिन बा हो तो परिवार कल्याण के बाद बा भैया देखा जान बा तो जहान बा त्यामिन भाई कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं। ये पे डॉक्टर बिमलेंद्र शेखर से अपने विनय श्रीवास्तव भैया बतियान है। हम कहते भैया तू जाना हमहू जानी कि कुष्ठ रोग का है और इसे घबराए न चाहिए।
1: कुष्ठ रोग बहुत ही पुराना रोग है, जिसको अक्सर छुआछूत की बीमारी भी समझा जाता है। ये रोग और बाकी रोगों से अलग होता है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी लोगों में भय, अज्ञानता और अंधविश्वास भी है। ये रोग यानी कि कुष्ठ रोग शिशुओं से लेकर बूढ़ों तक किसी भी उम्र में हो सकता है। कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं, इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज अपने कार्यक्रम में जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर विमलेंदु शेखर जी उपस्थित हैं, जो कि एक जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार विनय जी।
1: डॉक्टर साहब, जब बात कुष्ठ रोग की हो रही है तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ये कुष्ठ रोग है क्या?
2: कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया है जिसके कारण होता है, और ये बैक्टीरिया एक रोगी से दूसरे रोगी में सांस के द्वारा जाता है और काफ़ी इम्यूनिटी कम होने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित करता है, और ये छुआछूत से बिल्कुल नहीं फैलता।
1: जी, ऐसा लोगों में
2: जी
1: भ्रम
2: ऐसी
1: है इस
2: भ्रांति
1: बात।
2: है, लेकिन ये छुआछूत से नहीं फैलता है, ये सांस के द्वारा फैलता है और उसी को प्रभावित करता है जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी कम
1: कम
2: होती
1: होती
2: है,
1: है जी।
2: सामान्य इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को नहीं हो सकता।
1: तो जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि ये सांसों से फैलता है,
2: जी
1: तो यहीं पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये जेनेटिक है, यानी कि ये आनुवंशिक है? किसी के पिछली पीढ़ी में ऐसा रहा हो तो क्या अगली पीढ़ी को होने की संभावना होती है, या होता है ऐसा?
2: ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो हमारे समाज में है, लेकिन कुष्ठ रोग बिल्कुल ही आनुवंशिक रोग नहीं है,
1: जी
2: ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है
1: जी
2: और इसको हमारे समाज में कभी कभी कहा जाता है कि ये पूर्व जन्म के पापों का फल है, अभिशाप है, ऐसा कुछ भी नहीं
1: जी
2: है।
1: हाँ
2: ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली सामान्य बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है यदि उसकी इम्यूनिटी कम होगी।
1: जी, ये जो कुष्ठ रोग है डॉक्टर साहब, किसी भी व्यक्ति में इसके जो लक्षण होते हैं
2: जी
1: वो कैसे प्रकट होते हैं, यानी कि कैसे हमें पता चले कि फला व्यक्ति को कुष्ठ रोग ही है?
2: जी एक बात यह है कि ये बैक्टीरिया काफ़ी धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बॉडी में आने के करीब 2 से 5 साल के बाद इसके लक्षण प्रकट होते
1: जी
2: हैं। शुरुआती फेज में शरीर पर कोई एक दाग धब्बा दिखाई देता है जो कि सुन्नता लिए हुए होता है, तो
1: अच्छा
2: कोई भी शरीर पे हल्के रंग का दाग हो, हल्के पीले रंग का या हल्के लाल रंग का जो कि सुन्न हो, तो व्यक्ति को शंका होनी चाहिए कि ये कुष्ठ रोग हो सकता है। ये सुन्नता जो है वो हाथ पैरों में भी प्रकट होती है धीरे धीरे, फिर इसी सुन्नता वाली बीमारी का अगर इलाज न किया जाए तो हाथ पैरों की नसें सूज जाती हैं, नसों में मोटाई आ जाती है, हाथ पैरों में झंझनाहट आती है, हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और अगर उनका इलाज न किया जाए तो सुन्नता के कारण हाथ पैरों में घाव भी होते हैं जो आगे चल के हाथ पैर की उंगलियां कट सकती हैं, गल सकती हैं,
1: जी
2: तो
1: जी
2: ये सब उसके लक्षण हैं कुष्ठ रोग।
1: तो डॉक्टर साहब, जो अभी आपने सुन्न होने की बात की,
2: जी
1: तो वो

0: जो सुन्न हो जाता है वो खास वही हिस्सा जो आपने कहा पीले या सफ़ेद रंग से शुरुआत होती है, या वो पूरी, जैसे अगर हम कहें किसी के हथेली में शुरुआत हुई
1: जी
0: तो क्या ये पूरी हथेली में सुन्नता आ जाती है
1: जी
0: ऐसी, या खाली वो खास स्थान होता है?
1: नहीं, वो खाली पैचेस में ही सुन्नता होती है, लेकिन आगे चल के जब बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो पूरी हथेली या पूरे पैरों में सुन्नता आती है, और वो ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि हाथ और पैरों से ही हम काम करते हैं, और वो जब सुन्न हो जाते हैं, जो कि लेप्रोसी में आगे चल के लेटर स्टेज में ये लक्षण आता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है और वो विकलांगता के कारण बन जाता है।
0: तो हाथ पैरों के अलावा बाकी शरीर पर भी इसके लक्षण प्रकट होते हैं, या इस रोग का आक्रमण हो सकता है?
1: जी, बाकी शरीर में होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पेरिफेरल नर्व्स पे ही इसका बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हाथ पैर और आँखें, सबसे महत्वपूर्ण जो आँखें हैं उनको ये डैमेज करता है, तो और किसी चीज़ पे ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका असर नहीं होता, तो वो आदमी बिल्कुल बुद्धिमान होता है, अपना बुद्धि वाला कार्य कर सकता है, उसको हृदय की कोई बीमारी नहीं होती है लेप्रोसी के कारण, लेकिन वो उसके हाथ पैर जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। जी
0: तो जो आपने बताया डॉक्टर साहब, कुष्ठ रोग के लक्षण किस तरह प्रकट होते हैं, तो ये जो कुष्ठ रोग है इसके होने के कोई खास वजह भी होती है? किन वजहों से होता है?
1: हाँ, जैसे आप बताया कि इसमें अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तभी ये उस व्यक्ति को प्रभावित करता है, अगर अच्छी इम्यूनिटी वाला व्यक्ति है तो चाहे वो लेप्रोसी कितने भी बैक्टीरिया हैं उनको वो प्रभावित नहीं करेंगे, जब कम होती है तभी इसका असर आता है, सामान्य व्यक्ति में इसका असर नहीं आता।
0: यानी कि कहा जाए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति है जो कुष्ठ रोगी है उसके पास जा सकता है, किसी भी तरह से उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी
1: जी
0: प्रतिरोधक क्षमता ठीक है?
1: जी बिल्कुल, कुष्ठ रोग जो है वो इस तरह से नहीं फैलता कि बिल्कुल पास जाते ही फैल जाए, काफ़ी लंबे समय तक जब उसके सांसों के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है और उस आने वाले व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होती तभी उसको प्रभावित करता है। जी
0: तो यदि किसी व्यक्ति में कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, वो परीक्षण के लिए यदि आपके पास आता है डॉक्टर के पास, तो उसका जो इलाज है वो किस तरह से शुरू होता है?
1: कुष्ठ रोग जो है ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है और इसका बहुत अच्छा इलाज भी है, और जो कि हमारे जितने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं सब जो निःशुल्क उपलब्ध है, ये MDT के नाम से दवा जानी जाती है, और इसमें तीन तरह की दवाएं होती हैं, रिफैम्पिसिन, क्लोफेजेमीन और डेप्सोन, इसका 1 साल तक इलाज चलता है PB जो अधिक संक्रामक रोग होता है उसमें, और 6 ही महीने का इलाज चलता है जो कम संक्रामक रोग होते हैं PB टाइप के उनके लिए, तो ये 6 से 1 साल के इलाज में बिल्कुल ये मरीज ठीक हो जाता है।
0: जैसा कि आप कह रहे हैं,
1: जी
0: ये 6 से 1 साल का समय रहता है, इस बीच इलाज से पूरी तरह से ठीक होने की संभावना रहती है,
1: बिल्कुल
0: तो क्या ये
1: बिल्कुल
0: भविष्य में ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब कि फिर रोग उभर कर आता हो?
1: नहीं, अभी ऐसा केसेस बहुत कम रिपोर्टेड हैं, बहुत ही कम
0: जी
1: जिनमें फिर से उभरा है, और करीब करीब ये 100% क्योरेबल डिजीज है जो कि 1 साल के इलाज के बाद फिर नहीं होती है, लेकिन हाँ जो उसके लक्षण, जो नर्व का डैमेज हो चुका है या स्किन का जो दाग जहाँ से सुन्नता आ गई वो नहीं ठीक होता है, वो सुन्नता बनी रहती है और उस सुन्नता के कारण जो है वो विकलांगता उत्पन्न होने के चांसेस बाद में भी रहते हैं, तो वो सेल्फ केयर उस मरीज को हमेशा करनी पड़ेगी
0: बिल्कुल
1: उस
0: बिल्कुल।
1: जीवन भर।
0: तो डॉक्टर साहब, कुष्ठ रोगी है जो भी व्यक्ति,
1: जी
0: तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसी जटिलताएं भी होती हैं, जैसे कि किसी और बीमारी के लक्षण भी इसके द्वारा प्रकट हो सकते हैं, या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम?
1: नहीं, इसमें कोई अन्य बीमारी होने के तो चांस नहीं रहते, लेकिन कुछ रोग चूंकि ये हमेशा डैमेज नर्व का बना रहता है तो कुछ रोग के ही कारण आगे चल के उसमें विकलांगता उत्पन्न हो सकती है, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने हाथ पैर जो सुन्न हो चुके हैं उसकी केयर करनी चाहिए और उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसको गर्म चीज़ों से बचाना चाहिए, चाय का कप हो या खाने की थाली हो, गर्म हो तो उसको छूने से बचना चाहिए, ऐसे चम्मच या ऐसे कलछुल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें रबड़ का या कपड़े का कवर लगा ले वो, इसी तरह से काम करने में नुकीली चीज़ों से, चाकू से, इन सब चीज़ों से बचाव करना होता है उसे हाथों का, पैदल चलने में, नंगे पैर चलने में कंकड़ या कीलें घुस सकती हैं, उसे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो
0: जी
1: पैर
0: जी
1: सुन्न है तो वो पैर को डैमेज कर सकते हैं, तो नंगे पैर चलने से बचना चाहिए, मुलायम जूते, मुलायम चप्पलें इस तरह से पहनना चाहिए। जी तो ये सब देख रेख उन्हें अपने जीवन में हमेशा करनी पड़ेगी, आँखों की देख रेख करनी पड़ेगी, आँखों को देखें, आँखों में जरा भी लालिमा आए तो उसको नेत्र चिकित्सक से दिखवाएं,
0: जी जी
1: तो हाथ पैर और आँखों की विशेष ध्यान रखते हुए वो अपना सामान्य

0: बता सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसा ये कुष्ठ रोग है, इसी का ही जैसा सफेद दाग भी होता है, एक बीमारी है, तो लोगों में अक्सर इस चीज़ को लेकर भ्रम रहता है कि ये यदि किसी को हल्का सा सफेद दाग कहीं नजर आया तो भ्रम होता है कि कुष्ठ रोग तो नहीं है, तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या दोनों अलग चीज़ें हैं?
0: जी, हमारे भारतीय समाज में ये सफ़ेद दाग को कुष्ठ रोग से भी ज़्यादा बुरा मानते हैं और बहुत ज़्यादा भ्रांति
1: जी
0: उसको
1: हाँ
0: लेकर है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये कुष्ठ रोग से बिल्कुल अलग है। सफ़ेद दाग की बीमारी ये ल्यूकोडर्मा या

0: बुरा मानते हैं और बहुत ज़्यादा भ्रांति
1: जी
0: उसको
1: हाँ
0: लेकर है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये कुष्ठ रोग से बिल्कुल अलग है। सफ़ेद दाग की बीमारी ये ल्यूकोडर्मा या विटिलाइगो के नाम से जानी जाती है, जो बिल्कुल ही कुष्ठ रोग नहीं है
1: अच्छा
0: और इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद दाग बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, जैसे त्वचा में कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, उसी तरह से सफ़ेद दाग हो जाते हैं मिलेनिन नाम के पिगमेंट की कमी से, और वो कोई भी इन्फेक्शस नहीं होते और ना ही वो अनुवांशिक होते हैं, लेकिन उनको लेकर इतनी भ्रांति है कि वो व्यक्ति तो समाज में बिल्कुल तिरस्कृत जीवन बिताने के लिए मजबूर होता है। तो समाज में चाहिए कि इसके प्रति सोच बदले और
1: जी
0: इस तरह के
1: बिल्कुल
0: सफ़ेद दाग के मरीजों को कुष्ठ रोगी तो बिल्कुल ना माना जाए, उन्हें बिल्कुल ही सामान्य माना जाए और उनके साथ कोई भेदभाव भ्रांति नहीं होनी चाहिए।
1: यहाँ तक कि सरकार भी कहती है कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए भी हमारे आम जनमानस में उनके प्रति नफरत ना होकर प्रेम होना चाहिए,
0: जी
1: उनकी जितनी भी हो सके देखभाल की जा सकती है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनमें कम होता है उन्हीं पर अटैक करता है, जो बाकी जो जन सामान्य है उन पर इतना असर नहीं करता है।
0: जी बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। महात्मा गांधी वो कुष्ठ रोगियों की सेवा बहुत मन से करते थे। मदर टेरेसा, बाबा आमटे, इन सब लोगों का विषय था कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करना।
1: यहाँ बात आती है जब सरकार के रोल की, सरकार द्वारा भी अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें कि कुष्ठ रोगी खोजी अभियान जिससे आप लोग जुड़े हैं, तो ये क्या है अभियान, ये कब से शुरू हो रहा है, किन किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से जानना चाहूँगा।
0: ये 16 जुलाई से 29 जुलाई तक हमारे पूरे प्रदेश में 39 जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है, कुष्ठ रोगी खोजी अभियान।
1: जी हाँ,
0: इसमें स्वास्थ्य विभाग की हमारे इलाहाबाद ज़िले में 5,400 टीमें बनाई गई हैं और 1,000 से अधिक सुपरवाइज़र लगाए गए हैं इन्हें सुपरवाइज करने के लिए। तो हर टीम में एक आशा या आंगनवाड़ी महिला है और एक पुरुष कार्यकर्ता है।
1: जी
0: ये टीमें अपने आवंटित क्षेत्र में घर घर जाती हैं लोगों के, और वहाँ जाकर लोगों से पूछती हैं उनको कुष्ठ रोग के लक्षणों के बारे में बताकर कि उनके घर में कोई इस तरह का मरीज तो नहीं है। वास्तविक रूप से कुष्ठ रोग शुरुआती दिनों में बहुत उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, खाली
1: जी
0: एक
1: हाँ
0: सुन्न दाग धब्बा रहता है,
1: बिल्कुल
0: तो लोग इसको दिखाते ही नहीं, जाते ही नहीं, और अगर उन्हें पता भी चल गया तो भ्रांति के कारण, सामाजिक बुराई माने जाने के कारण वो दिखाना नहीं पसंद करते हैं। तो इसको भेदने के लिए सरकार ने योजना बनाई है कि हमारी टीमें जाएंगी घर घर और लोगों से इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में उनको बताकर उनको इसमें लाएंगी ट्रीटमेंट में, और ट्रीटमेंट करके उनको जल्दी उपचार किया जा सकेगा। जल्दी उपचार इससे बचाव का सबसे बड़ा अच्छा साधन है, क्योंकि जल्दी उपचार हो जाने पर विकलांगता से बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अगर इसका उपचार सही समय से शुरू हो जाएगा
0: जी
1: तो विकलांगता से बचा जा सकता है, और
0: बिल्कुल
1: ये बिल्कुल ठीक बात भी है
0: बिल्कुल
1: कि कोई भी रोग शुरू में ही अगर उसका इलाज शुरू हो जाए तो आगे जो जटिलताएं आने वाली हैं तो उनसे भी बचा जा सकता है। और ये जो सरकार का कुष्ठ रोगी खोजी अभियान ये चलाया जा रहा है, निश्चित है कि इससे काफ़ी लोग जो जैसा कि आपने बताया कि आगे नहीं आते हैं या भ्रांतियां हैं लोगों में, वो ज़रूर दूर होंगी।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने कुष्ठ रोग के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, निश्चित है कि जो हमारे श्रोता हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचों देखा, कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं, ये कार्यक्रम में डॉक्टर विमलेंदु शेखर से अपने विनय श्रीवास्तव भैया बतियात रहे, कितना बढ़िया बताएं। हम कहते भैया घबराए की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत हुई बात कि भाई समय पर ध्यान दे कि उपचार करे की जरूरत है। समय के बाद जहाँ तक है भैया देखा, समय पर अगर कोनो भी काम किया जाए तो निश्चित रूप से ओकर फायदा भी होता है और लाभ भी होता है। तो हम कहते देखा पंचों, अब विदा ले के समय हो गए, तो पंचों राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: पंचो जय हिंद।
1: अभिषेक भैया।
0: हाँ पूर्व भैया।
1: देखो भैया, अपनी खेती बाड़ी की बात की जाए तो वहाँ दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अपन बीज, अपन माटी, अपन उर्वरक और पानी।
0: बिल्कुल अपूर्व भैया, और अगर ये सब चीज़ें नीके तने मिल जाती हैं, नीकी होती हैं, तो जो अपन फसल होते, जो अपन उत्पादन होते, वो नीके तने हमका मिलत है और हमार सबका फायदा होते।
1: बिल्कुल भैया। और देखो, अब तो खेती में है जहाँ पहले हम पंच देखित रहा कि सिर्फ बीज पर, उर्वरक पर ध्यान देते रहे, लेकिन हुए पर देखो पानी पर भी ध्यान दे की जरूरत है।
0: बिल्कुल अपूर्व भैया, पानी बहुत जरूरी है, और काहे तेने पानी जब कम है तो उसका कम से कम इस्तेमाल होए, और कम इस्तेमाल के साथ साथ में यहाँ फसल में ज्यादा उत्पादन होए, इस पर जोर देख जरूरत है।
1: बिल्कुल, यह के लिए देखो हम पंचन का प्रयास रहते है प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन होए।
0: बिल्कुल भैया,
1: ई के लिए हम तरह तरह की विधियां अपनाई है। देखो कबो कबो ड्रिप विधि द्वारा है, स्प्रिंकलर भी द्वारा है सिंचाई करित है, और टपक सिंचाई भी देखो भैया एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम जल बचा सकित है और अधिक फसल उत्पादन कर सकते।
0: बिल्कुल अपूर्व भैया, इस सब विधि का इस्तेमाल करके हम सीधे अपने फसल के कम पानी में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो हमेशा अपनी फसल का पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, पानी का दुरुपयोग न हो, ई के लिए हमका प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन पर ध्यान देकर चाहिए।
0: अपूर्व भैया, आप अपने किसान पंचन का दे दिन जाए आज के जानकारी जौन है आज के खबरन में।
2: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश भर में 22 अक्टूबर से खेत बचाओ अभियान शुरू करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय की पहली मासिक समीक्षा बैठक में इसकी घोषणा की। यह अभियान मुख्य रूप से मिट्टी की घटती उर्वरता, पराली प्रबंधन और रासायनिक खादों के असंतुलित इस्तेमाल जैसी समस्याओं पर केंद्रित होगा। इसके तहत कृषि वैज्ञानिक और विभागीय कर्मचारी सीधे खेतों तक पहुंचकर किसानों को मिट्टी की जांच, संतुलित खाद के प्रयोग और फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी देंगे। अभियान में राज्य सरकारें भी भागीदारी करेंगी। बैठक में बताया गया कि डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत अब तक 10 करोड़ 77 लाख किसानों की विशिष्ट किसान पहचान तैयार की जा चुकी है। वहीं इस वर्ष फसल बीमा योजना में किसानों के पंजीकरण में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि करना और खेती को टिकाऊ बनाना भी है।
1: अभिषेक भैया।
0: हाँ भैया।
1: आज की खबरन के बाद में देखो, हम पंच खेती तो करते हैं, साथ में पशुपालन का भी कार्य करित है, और जहाँ पर हमरे लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होते है, हुए पर अपने पशुओं के लिए हरे चारे की भी आवश्यकता होते है।
0: बिल्कुल अपूर्व भैया, तो आज अपने आज की बात में सुन लीजिए भेंटवार्ता।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं, वहाँ रबी में हरा चारा उत्पादन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक डॉक्टर केशव कुमार साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रबी के मौसम में पशुपालक भाई बहन कौन कौन से हरे चारे का उत्पादन करें ताकि उनके जानवर भी पौष्टिक हरा चारा प्राप्त करें।
4: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। जो रबी का मौसम है,

0: ये इतना अच्छा मौसम है जिसमें किसान भाई बहन चाहें तो प्रचुर मात्रा में हरे चारे का उत्पादन कर सकते हैं, और हरे चारे के उत्पादन के साथ साथ अगर उनको पशुओं को उपलब्ध कराया जाएगा तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उनका दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, और इसलिए विशेष रूप से आप लोग इस मौसम में हरे चारे का उत्पादन जरूर करें।
1: कौन कौन सी फसलें हैं जिसको उगाएं इस समय अपनी फसल योजना में?
0: जी, इस समय सबसे अच्छा जो रबी में होता है बरसीम, जई और रिजका, ये तीन फसलें ऐसी हैं जो किसान भाई बहन अगर उगाते हैं तो पर्याप्त उत्पादन होगा, इसके साथ साथ पशुओं के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत चाव से खाएंगे।
1: बरसीम की बात करें डॉक्टर साहब, तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: इसके लिए जो कॉमन या बहुत ही प्रचलित वैरायटी है या प्रजाति है वो है BL1, BL10, BRD, B1 और मसक्वी, ये कॉमन इसमें आजकल प्रचलित हैं।
1: तो इसकी बुआई का उपयुक्त समय क्या है?
0: जी, बुआई का समय अब शुरू हो चुका है, पूरा अक्टूबर माह और 15 नवंबर इसके बीच बुआई कर देना जरूरी होता है ताकि समय पर इसका उत्पादन हो सके।
1: और आपने जई का नाम लिया, तो जई तो बहुकटान वाली होती है?
0: हाँ, जई की आप सिंगल कट भी कर सकते हैं और मल्टी कट भी कर सकते हैं, बहुकटान वाली भी है जई, तो जई की भी बुआई इसी समय कर देना उचित रहता है।
1: तो जई की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं डॉक्टर साहब?
0: जई के लिए केंट एक उन्नत किस्म है, OS6, JO1 और UPO2121।
1: और तीसरा हरा चारा रबी के लिए आपने लूसर्न यानी रिजका बताया,
0: जी हाँ,
1: इसकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: रिजका के लिए आनंद 2, T9 और LLC3, ये इसकी जो उन्नत प्रजाति हैं। और ये आपको और बता दूंगा कि रिजका के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे इनको लगाया जा सकता है।
1: अब चाहे बरसीम हो, जई हो
0: जी
1: या लुसर्न हो,
0: जी
1: इसके लिए खेत की तैयारी और खेत का चुनाव कैसा हो?
0: जी जी इसके लिए जो खेत अपना है उस खेत में सबसे पहले हम लोग एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और इसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं, और जुताई पूरा होने के बाद एक पाटा चला देते हैं जिससे मिट्टी जो भुरभुरी और समतल हो जाती है, और साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि भविष्य में किसी तरह से जल भराव ना हो और जल निकासी की ठीक से व्यवस्था उसमें कर ली जाए।
1: बुआई के पहले बीज शोधन और बीज का उपचार भी आवश्यक है डॉक्टर साहब?
0: जी हाँ बिल्कुल, खासकर जो दलहनी फसलें हैं ये तो अपने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन अपने पास ले लेती हैं, लेकिन इसका उपचार कर देने से और इसके अंदर जड़ों में गांठ अच्छी बन जाती है, और उपचार करने के लिए गुड़ के घोल में जो राइजोबियम कल्चर होता है इसको मिला लेते हैं और इसको हल्के हाथ से मल देते हैं और छाया में सुखा देते हैं, इसके बाद इसकी बुआई करते हैं तो जड़ में ठीक से गांठें आती हैं और उन गांठों से जो वातावरण का नाइट्रोजन है अवशोषित हो जाता है जो आगे खाद का काम करता है।
1: ये जो भी फसलें हैं इनको फर्दा बुआई करें या मिश्रित भी कर सकते?
0: मिश्रित में क्या करते हैं, बरसीम और जई को मिला लेते हैं और उसके साथ बुआई करते हैं, और कभी कभी उसमें सरसों भी मिला दिया जाता है।
1: बरसीम के साथ?
0: बरसीम के साथ
1: डॉक्टर साहब, चाहे बरसीम हो, जई हो या लुसर्न हो,
0: जी,
1: तीनों हरा चारा की फसल है, तो इनको भूख भी लगती होगी, तो इनकी भूख कैसे मिटे?
0: जी बिल्कुल सही बोला आपने। खेत में जो हम लोग इनको लगा देते हैं, लगाने के साथ साथ इनकी बढ़वार के लिए जो जमीन में पोषक तत्व जरूरी होते हैं वो तो देना पड़ेगा। इसके लिए लगभग 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अगर प्रति एकड़ डाला जाए तो पर्याप्त मात्रा में उनको जो पोषक तत्व है फसल के लिए उपलब्ध हो जाएगी, और आगे जाके फिर बरसीम और रिजका में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी तरह के खाद की, लेकिन तीसरी फसल हमारी जई है, जई में कुछ आवश्यकता पड़ती है, पहली कटाई के बाद उसमें थोड़ा सा कुछ यूरिया की आवश्यकता पड़ती है।
1: यानी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, बीच बीच में फसल की प्यास भी बुझानी होगी?
0: हाँ बिल्कुल सही, इसके लिए जब प्यास बुझाने की बात आती है तो खासकर जो बरसीम है, बरसीम को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पहले तो फसल की जब बुआई करते हैं बुआई के कुछ दिन के बाद ही हमको एक पानी उसमें लगा देना चाहिए,
1: तुरंत बाद,
0: और इसके साथ साथ हर 10-12 दिन के अंतराल पे भी इसकी सिंचाई करती रहनी चाहिए ताकि इसका जो उत्पादन है वो ऑप्टिमम मिल जाए, अच्छा से अच्छा मिल जाए।
1: और जई में?
0: जई में ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जई में चूंकि जई और रिजका में कम पानी की आवश्यकता होगी तो आप खेत में स्थिति देखते हुए इसको जैसे जमीन में नमी कम होने लगे तो इसको आप दोबारा सिंचाई कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, रबी में हरा चारा उत्पादन की बात चल रही है
0: जी,
1: तो कटाई प्रबंधन और चारे की बचत
0: जी
1: भी महत्वपूर्ण है?

0: बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम हरे चारे की कटाई में समय का ध्यान न रखें और बहुत जल्दी काट दें तो उत्पादन हमें कम मिलेगा, और अगर देर कर दें तो उसमें जो फाइबर है, रेशे ज़्यादा हो जाएंगे, जो चारा कड़ा हो जाएगा तो पशु उसको चाव से नहीं खाएगा। तो इस तरह से इसको समय से ही काट लेना उचित रहेगा, जिससे हम अधिक से अधिक उस उत्पादन ले सकें और पशु के लिए अच्छा रहे वो।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा हो जाता है कि हरा चारा ज़्यादा उपलब्ध है
0: जी,
1: तो क्या उसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये तो आजकल सभी किसान भाई बहनों को जानना चाहिए, और अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो आप दो तरह से इसको रख सकते हैं। एक तो बोलते हैं साइलेज और दूसरा बोलते हैं हे। हे क्या होता है कि पूरे फसल को, खड़ी फसल को जिसमें सब कुछ लगा होता है, वो लेके और सुखा दिया जाता है, और इसमें जो पोषक तत्व की मात्रा है वो पर्याप्त होती है। जब सूख जाएगा तो आवश्यकता अनुसार इसको आप काट के खिला सकते हैं। और दूसरा होता है साइलेज। साइलेज में क्या होता है, हरे फसल को ही हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं, काट के ज़मीन में उसको दबा देते हैं और अच्छी तरह से कवर कर देते हैं ताकि वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाए, और उसके बाद वो एक साल तक सुरक्षित रहता है। आवश्यकता अनुसार आप उसको खिलाते रह सकते हैं, जब खासकर मई जून में आपके पास हरे चारे की किल्लत होती है उस समय अपने आप जो पशु हैं उनको आप अच्छे से दे सकते हैं इसको।
1: यानी एक तरह का पशुओं के लिए अचार हो गया।
0: जी हाँ, इसको पशुओं का अचार बोला जाता है साइलेज को।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे
0: जी
1: रबी में हरा चारा उत्पादन के बारे में
0: जी।
1: अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी किसान भाइयों बहनों, मेरा नंबर नोट कर लें, 9415234589, 94-15-23-45-89, 9415-23-45-89।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का रबी में हरा चारा उत्पादन के बारे में? डॉक्टर साहब
0: जी, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से अपना मन बना लें और योजना बना लें, और समय निकलने से पहले ही हरे चारे की बुआई करें ताकि उसके उत्पादन से आप अपने पशुओं को साल भर के लिए अच्छी इम्यूनिटी प्रदान कर सकें, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकें और उनका दूध उत्पादन बढ़ा सकें।
1: डॉक्टर केशव कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और रबी में हरा चारा उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बेहद जानकारी के लिए बातें तो हुई गई, तो अब सुना दी जाए पंचन का एक लोकगीत। कहते हैं मनोरंजन बहुत जरूरी होते हैं अपने कार्यक्रम में, यहाँ पंच इंतजार करते हैं कि कोनो न कोनो लोकगीत हमका जरूर सुनावा जाए।

0: अभिषेक भैया,
1: हाँ भैया।
0: देखो लोकगीत तो बहुत बढ़िया रहा है और आज के किसान के कार्यक्रम में बता रहे हैं धान उत्पादन के बारे में।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं अमेठी जनपद के सिंहपुर ब्लॉक के पूरे बैसन मजरे जैतपुर, जहां के नौनमेसी किसान अर्जुन सिंह भदौरिया भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। भदौरिया जी नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: हमारे खेत में इस समय धान की फसल खड़ी है।
2: ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब, मेरी पढ़ाई लिखाई तो एमकॉम है और खेती से जुड़ाव इस तरह हुआ कि मेरे जो भी पैतृक हमारे पास भूमि थी वो उसरीली भूमि थी, तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को हम स्वीकार करते हुए इस ऊसर जमीन में हमने जो है फसलें अच्छी पैदा करनी शुरू की और थोड़ा थोड़ा शुरू किया तो लोग देखने आने लगे, उससे हमारी रुचि बढ़ी और फिर खेती की तरफ झुकाव हो गया, फिर नौकरी की तरफ हम नहीं गए।
2: कितने साल पुरानी बात है ये?
3: ये लगभग 32 साल पुरानी बात है।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: हमारे पास जमीन है लगभग 18 एकड़।

0: कार्ड।
1: अच्छा, पूरे सम्मिलित परिवार की।
0: हाँ, सम्मिलित परिवार की, जिसमें से हम 9 एकड़ में धान की खेती अपनी निजी किए हैं।
1: तो 9 एकड़ में कौन कौन सी वैरायटी है आपके खेत में?
0: 9 एकड़ में हमारे पास MTU 7029 है, और एक पान की जमुना 804 है, हाई यील्ड वैरायटी है। के अलावा एक हमारे पास सरकारी बीज भंडार से लिया था, सुगंधा,
1: मालवी सुगंधा।
0: हाँ मालवी सुगंधा, खाने में थोड़ा चावल अच्छा होता है, तो अपने इष्ट मित्रों और स्वयं के खाने के लिए इसकी खेती की है।
1: तो इस समय फसल कैसी चल रही है आपकी?
0: इस समय जमुना 804 में बालियां झुक रही हैं, इसके अलावा इसमें सुगंधा में भी बालियां झुक गई हैं, MTU 7029 में बालियां आ रही हैं, और इस बार हर वर्ष की अपेक्षा फसल अच्छी है, अभी बहुत अच्छी दिख रही है।
1: तो ये बताएं कि धान 9 एकड़ आपके पास है, रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और उसके पहले नर्सरी से लेकर के और
0: इस
1: फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं धान की फसल में?
0: बार तो लगभग 4 एकड़ में हमने ढैंचा की भी हरी खाद की थी, इसके अलावा हमारे पड़ोस में गो आश्रय स्थल है, वहां से करीब 42 ट्राली गोबर की खाद भी हमने खरीद के डलवाई है, तो हम थोड़ा सा रासायनिक उर्वरकों की तरफ कम रुझान रखते हैं, देसी खादों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं।
1: तो खेत का हीमोग्लोबिन आपका बढ़ा होगा?
0: बहुत बड़ा है, अब हम ये देखे कि तमाम लोग तमाम तरह की दवाएं डालते हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा और ये जो देसी खादें हैं इनका प्रयोग करने से हमको जरूरत नहीं पड़ती है कि हम किसी दवा का छिड़काव करें, या बहुत यूरिया DAP की ही हमको जरूरत पड़ती है, नाम मात्र जो खेत हमको लगता है कि डालने लायक उसी में डालते हैं। कुछ खेत तो ऐसे हैं जिनमें हम 4-5 साल से प्रयोग ही नहीं किए हैं, लगभग 1.5 एकड़ है उसमें कोई खाद डालते ही नहीं है।
1: तो धान की फसल कब तक आपकी तैयार हो जाएगी?
0: ये धान की फसल इस महीने के अंत तक तो ये सुगंधा तैयार हो जाएगी, लगभग 2-3 नवंबर तक काटने लायक हो जाएगी, और 10 नवंबर तक ये पान की 804 भी तैयार हो जाएगी, तो
1: और
0: करीब
1: देरी रहेगी तो MTU 7029
0: हाँ
1: में।
0: सत्तर उनतीस 20 नवंबर के बाद कटेगी वो।
1: तो पिछले कई सालों से लगातार आप धान उत्पादन कर रहे हैं और आपने अपनी बीमार माटी को सुधार लिया है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया है, तो
0: जी
1: 1 एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: ये MTU 7029 तो हमारी समझ से 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल मिल जाता है,
1: जी
0: और इसके अलावा पान का भी पिछली बार थोड़ी की थी उसका भी एवरेज बहुत बढ़िया था, तो इस बार भी हमें लगता है कि पिछली बार हम 25 कुंटल तक 1 एकड़ में काटे थे और एक एकड़ था, इस बार ज्यादा हमारे पास लगभग 6 एकड़ के आसपास है ये पान की
1: जी
0: 804, तो हमारी
1: और
0: समझ से 25 से ऊपर एक एकड़ में 25 कुंटल से ऊपर की ही पैदावार होनी है।
1: मालवी सुगंधा,
0: मालवी सुगंधा 20-22 कुंटल तक आती है।
1: तो कुल मिला जुला करके आप खेती करके खुशहाल हैं?
0: जी हाँ, खेती करके खुशहाल है, बेटियों की शादी इसी खेती से, कहीं हमने कोई और काम किया नहीं, बेटे को पढ़ाए लिखाए, तो कुछ न करके सिर्फ खेती से माटी से अपनी जुड़ के ही हमने अपना कुछ किया है।
1: तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते होंगे?
0: जी हमारे पास 2 साहीवाल गाय है, एक बछिया है, और करीब 7 से 8 लीटर दूध भी एक गाभिन है और एक से दूध निकलता है, तो जो खाया जाता है कुछ थोड़ा बहुत उसके खाने भर के लिए जो दाना पानी है पशु आहार है उसके लिए थोड़ा बहुत पड़ोस की एक डेयरी है पराग की, उसी पे दूध भी चला जाता है।
1: जो खरीफ फसलों का खेत खाली होगा यानी धान का खेत खाली होगा, तो उसमें रबी में क्या तैयारी है?
0: रबी में एक तो जो जल्दी तैयार हो जाएंगे उसमें तिलहन अपना सरसों की खेती होगी, और उसके बाद थोड़ी मटर की तैयारी है बैरिकेटिंग के लिए कि नील गाय का प्रकोप अधिक रहता है, तो उसमें मटर और चना 1 एकड़ का है, उसमें मटर और चना करेंगे, थोड़ी सी मसूर भी करना है, इसके अलावा फिर और गेहूं ही रहेगा।
1: आप एक युवा किसान हैं और अपनी खेती में नौन्मेषी प्रयोग करते रहते हैं, जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?

0: के जो नई पीढ़ी से है।
1: हम सभी किसान भाई बहनों को सलाह देना ये चाहते हैं कि अगर ज्यादा दिन तक अच्छी खेती करना है, गुणवत्ता पूर्ण अनाज लेना है, तो देसी खादों की तरफ जाएं, गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट बनाएं, कंपोस्ट डालें। तालाब अगर कोई आबादी के अंदर उसका गांव का कूड़ा कचरा जाता है, उसकी थोड़ी बहुत नीचे की मिट्टी अगर निकाल के गर्मी के महीनों में खेत में चली जाए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर ऊसर जमीन है तो प्रयास करें कि एक बार खूब गहरी जुताई करवा दें, चाहे मोर प्लाउ से करा दें, कि जो ऊपर की कंकड़ की परत है एक बार टूट जाए अच्छे से, फिर उसमें जो है जिप्सम अगर मिल जा रही है तो ठीक है, नहीं जिप्सम मिल रही है तो गोबर की खाद भी, गोबर की खाद में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिप्सम मिलती है तो 1-2 साल में खेत ठीक हो जाएगा। तो खेती में सबसे जरूरी है कि देसी जो पुराने तरीके थे उनकी तरफ अगर जाएंगे तो हमारी खेती टिकाऊ होगी।
0: यानी जो पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक विज्ञान है उसका मेल करना है।
1: जी, दोनों का जब तक मेल नहीं होगा तब तक हम टिकाऊ खेती नहीं कर पाएंगे।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 95-59-96-2577, 9559962577, 95-59-96-2577।
0: अर्जुन सिंह भदौरिया भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप इस समय 9 एकड़ धान की खेती कर रहे हैं जिसमें कुल 3 प्रजातियां हैं, MTU 7029 और मालवी सुगंधा की खेती आप कर रहे हैं।
1: जी
0: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं और किसान भाइयों बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी अच्छी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अभिषेक भैया, पंच भाइन का अपन पता बता दीन जाए।
7: भैया पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
6: और हमारे कार्यक्रम का ईमेल है
7: farmandhome@gmail.com।
6: तो यह के साथ देखो अभिषेक भैया, अपने कार्यक्रम का समय पूर्ण हो रहा है, तो पंच भाई से लीन जाए विदा।
7: जय हिंद।

0: प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। और कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में तैयारियां पूरी। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर के रेहरा बाजार विकास खंड के बिलरिया गांव में 803 करोड़ रुपए से अधिक की 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बलरामपुर के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की धनराशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने वाले जनपद के रूप में आगे बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हो चुका है। भवन तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
1: प्रगति की एक नई गति के साथ आगे बढ़ा करके बलरामपुर जनपद को आकांक्षात्मक जनपद से आगे बढ़ा करके संभावना वाले जनपद के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होता है। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि बलरामपुर में भी कभी विश्वविद्यालय होगा, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का सत्र प्रारंभ हो चुका है और बहुत शीघ्र उसका अपना भवन बनकर के तैयार होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बलरामपुर में आमंत्रित करके उसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी हम आयोजित करवाएंगे।
0: मुख्यमंत्री कल सुबह देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी देवी का दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 के बाद कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। उन्होंने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार भी बताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दशकों से लटकी सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21% का योगदान कर रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया है। उधर रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ी रद्द कर दी। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात जाम की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। यह अभियान फिट इंडिया और नशा मुक्त समाज के निर्माण की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में उन खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2026 के आईची नागोया एशियाई खेलों में अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन

0: प्रदर्शन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
2: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
1: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त करना है। वाराणसी की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद जीवन बेहद आसान हो गया है।
3: पहले लकड़ी और उपलों पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे धुआं होता था और आंखों में जलन भी होती थी। अब गैस सिलेंडर की मदद से कम समय में आसानी से खाना बना लेती हूँ। उज्ज्वला योजना ने हम जैसी महिलाओं के जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मां विंध्यवासिनी धाम में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन विभाग की तरफ से प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: विंध्याचल व उसके आसपास के मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में कुल 2,526 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 222 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन लगाए गए हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में नवरात्र को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या मंडल के 5 जिलों में लगभग 10,000 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। इस बार शारदीय नवरात्र में प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में शक्ति आराधना के साथ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश गूंजेगा। मिशन शक्ति के तहत 17, 18 और 19 अक्टूबर को प्रदेश के चयनित मंदिरों में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे। सहारनपुर में आज एक सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा देवबंद में हाईवे स्थित फ्लाईओवर पर उस समय हुआ जब मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर माता की ज्योत लेकर श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया है। झांसी में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर की 29 टीमें भाग ले रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास।

0: विकास, कहा सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। और कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में तैयारियां पूरी। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संतोष भदौरिया की वार्ता। विषय है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आइए सुनते हैं।
2: हिंदी साहित्य का विकास क्रम आमतौर पर आधुनिक युग से स्वीकार किया जाता है। साहित्यिक रूप में भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य के प्रवेश द्वार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इससे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव आधुनिक युग में हुआ है। इसके उद्भव एवं विकास की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है। ये गौरतलब है कि हिंदी की सभी बोलियाँ अपने क्षेत्र विशेष में भावों और विचारों के प्रचार प्रसार और अभिव्यक्ति का माध्यम रही हैं। ये संयोग ही है कि रचनाकारों की रुचि और प्रतिभा के अनुरूप विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न बोलियां साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर सामने आई हैं। आदिकाल में राजस्थानी की विभिन्न बोलियां का प्राधान्य रहा तो भक्तिकाल में तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस लिखकर भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। यही कार्य कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजभाषा को लेकर किया, जिसमें विशेष स्थान सूरदास को प्राप्त है, जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का ब्रजभाषा में गान किया। रीतकाल में प्रमुख रूप से ब्रजभाषा का ही चलन रहा। इस प्रकार समय और रुचियों के आधार पर अलग अलग बोलियों में साहित्य की रचना हुई। खड़ी बोली हिंदी के भाषिक और साहित्यिक रूप को हम आदिकाल में ही लक्षित कर सकते हैं, जब हिंदवी या हिंदुई के नाम से इसका प्रचलन हुआ और अमीर खुसरो ने स्पष्ट तौर पर अपने आप को हिंदवी का कवि घोषित किया और उसी में अपनी काव्य रचना की। खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप तो अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश में ही मिलने लगते हैं। इसका प्राचीनतम प्रयोग कहाँ से और किस रचना विशेष से शुरू हुआ, इसका उत्तर निश्चय और निर्विराद रूप से दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि अनेक कवि और रचनाकार उस समय रचनारत थे और लगभग सभी की रचनाओं में खड़ी हिंदी बोली के आरंभिक कुछ विशेषताएं प्राप्त होती हैं। अवहट्ट की रचनाओं संदेश रासक, प्राकृत प्रेंगलम, वर्ण रत्नाकर आदि में खड़ी बोली हिंदी के तत्वों के समावेश की सूचना मिलती है। इनमें प्रयुक्त सर्वनामों तथा क्रियाओं के आधार पर खड़ी बोली हिंदी का रेखांकन स्पष्ट तौर पर किया जा सकता है। आगे चलकर सिद्धों और नाथों की वाणियों में इसका और स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। इनकी भ्रमणशीलता और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहने से मिश्रित भाषा के निर्माण का प्रमुख कारण माना जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण कारण है सभी मध्य देशीय बोलियों के संसर्ग एवं समाहार से एक संपर्क भाषा के निर्माण की

ऐतिहासिक प्रक्रिया का संपन्न होना। समन्वय और एकता की भावना से प्रेरित नाथों और संतों को ऐसा ही भाषिक आदर्श मान रहा जो विस्तृत क्षेत्र में सुना और समझा जा सके और सामान्य जन मानस के समझ में आ सके। परंपरागत काव्य भाषा से अलग इन संत कवियों द्वारा अपनाई गई ये भाषा उस समय की जनभाषा की मूल प्रकृति की सूचक है। नाथों का ये भाषा दर्श संत कवियों द्वारा भी अपनाया गया। इसके आगे कबीर, अमीर खुसरो की हिंदी रचनाएं तथा जगनिक के आलखंड में भी खड़ी बोली हिंदी के रूप आसानी से मिलते हैं, किंतु इनकी कोई पुरानी पांडुलिप आज तक प्राप्त नहीं है। उत्तरी भारत में तो कम, किंतु दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी रूपों से युक्त काफ़ी रचनाएं मिलती हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कुतुब शतक, जो 15वीं शताब्दी में लिखी गई, को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी के निर्माण में कौरवी के साथ साथ टक्की, जो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा में बोली जाती है, का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी प्रदेश तथा महाराष्ट्र के अनेक संत कवियों ने खड़ी बोली हिंदी के छंद या छंदास लिखे हैं। सूफी काव्य परंपरा, जो बहुत समृद्ध परंपरा है, कृष्ण काव्य परंपरा तथा रीतकालीन कवियों में भी खड़ी बोली हिंदी के अंश मिल जाते हैं। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी कही जाने वाली रचनाओं में भी हिंदी के प्रयोगों का बाहुल्य है, जो आसानी से उनकी कविताओं में लक्षित किया जा सकता है। काव्य के साथ ही हिंदी गद्य की परंपरा के सूत्र भी कम पुराने नहीं हैं। प्राचीनतम नमूने नाथ साहित्य में मिलते हैं। रामप्रसाद निरंजनी का भाषा योग वाशिष्ठ प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें इस तरह के नमूने देखे जा सकते हैं। मुंशी सदा सुखलाल का सुखसागर तथा बहुत से पत्र और दस्तावेज आज पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में उपलब्ध हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हिंदी के आरंभिक रूप इन रचनाओं में हैं। प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य में ब्रजभाषा का मिश्रण है। इस प्रकार प्रारंभ से लेकर 18वीं ईस्वी के आसपास तक खड़ी बोली गद्य और पद्य की परंपराएं अबाध रूप से हिंदी में मिलती हैं। आधुनिक काल में गद्य की विशेष प्रतिष्ठा के साथ हिंदी की साहित्यिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। गद्य की भाषा बनने के बाद ये काव्य की भाषा बन गई। साहित्यिक भाषा के पद पर पश्चिम की कोई ना कोई बोली प्रतिष्ठित होती रही है। इसी क्रम में खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक भाषा और साहित्यिक साहित्य के लिए, काव्य के लिए उसका आधार बनी। खड़ी बोली हिंदी की साहित्यिक प्रतिष्ठा का कारण धार्मिक ना होकर पूर्णतः व्यवसायिक और राजनीतिक था। इसके लिए नई अर्थव्यवस्था का जन्म एक परिघटना के रूप में हमारे सामने आता है। देश का एक सूत्र में बंधना भी हिंदी के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। पारस्परिक संपर्क तथा भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति हिंदी ने की। खड़ी बोली हिंदी के प्रचार केंद्र नगर अधिक रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन संचालन के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता थी। फारसी और संस्कृत की जगह आम फहम की भाषा को अपनाया जाना उनकी मजबूरी थी। राजकाज के लिए हिंदी को प्रतिष्ठित करने में फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र ने हिंदी की सहज शैली के विकास में योगदान दिया। विषयों का वैविध्य हिंदी भाषा की विविधता और शक्ति बढ़ाने में सहायक रहा। प्रेस के साथ पुस्तकों का छपना एवं प्रचार प्रसार सुगम हुआ। हिंदी के प्रचार प्रसार में ईसाई मिशनरियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। श्रीरामपुर कलकत्ता हिंदी अनुवाद का केंद्र बना। प्रेस की स्थापना हुई और समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये भी

0: देखनी है कि इन पत्रों की शुरुआत सबसे पहले कलकत्ता से हुई और हिंदी का पहला पत्र वहीं से निकला। नागरी टाइपों का आविष्कार हुआ। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्टंड सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन जुगल किशोर शुक्ल ने किया। आधुनिक नवजागरण की लहर से भी खड़ी बोली हिंदी को बल मिला। आर समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने हिंदी को धर्म प्रचार की भाषा बनाया। इसके पूर्व नवीन चंद्र राय पंजाब में हिंदी के माध्यम से ब्रह्म धर्म के प्रचार का कार्य कर रहे थे। खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित करने में अनेक शक्तियों ने कारगर भूमिका निभाई, जिसमें सामाजिक आंदोलनों की और उससे जुड़े व्यक्तित्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये आकस्मिक दौर से ही संपर्क भाषा रही। व्यापारियों और सौदागरों के विचार विनिमय की भाषा व्यवसाय और व्यापार के साथ संपूर्ण भारत में फैलने लगी। इसे धार्मिक और साहित्यिक नेताओं का संरक्षण भी मिला। 20वीं सदी के आरंभ में तिलक का प्रभाव भारतीय राजनीति में बढ़ा। उन्होंने हिंदी की शक्ति को पहचाना, हिंदी केसरी पत्र का प्रकाशन हिंदी में किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप निकालकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। जो प्रताप कानपुर से निकलता था, उसने पूरे हिंदी क्षेत्र में धूम मचा दी। भाषा परिष्कार में द्विवेदी युग की भूमिका सराहनीय रही। इस समय भाषा के जो प्रतिमान स्थिर हुए, कमोवेश वे ही आज तक हिंदी में चल रहे हैं। सरस्वती का योगदान तो गद्य की विविध शैलियों और विधाओं के विकास में और भाषा पर कठोर संयम लगाने की दृष्टि से स्थायी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रिकाओं ने तत्कालीन राजनीतिक चेतना और सामाजिक संदेश को वाणी देने के लिए हिंदी को ही माध्यम बनाया। हिंदी गद्य की भाषा का स्तरीकरण हुआ और एक व्यापक हिंदी गद्य का रूप हमारे सामने आया। पत्रों के द्वारा ही इस काल में विराम चिन्हों का भी रूप स्थिर हुआ। अंग्रेजी और फारसी के प्रचलित शब्दों के समेटने के कारण हिंदी गद्य में विशिष्ट अभिव्यंजना शक्ति का विकास हुआ। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और 1950 में गणतंत्र बना। भारत के संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया। राजभाषा की भूमिका में हिंदी के सामने कई नए दायित्व उपस्थित हुए। नए कार्य क्षेत्र खुले। शिक्षा, प्रशासन, व्यापक जनसंपर्क तथा जनसंचार के क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 70 वर्षों में हिंदी भाषा में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसने आज इंटरनेट के माध्यम से, संचार के विभिन्न माध्यमों से, इंटरनेट की दुनिया में, आभाषी दुनिया में एक सशक्त हस्तक्षेप किया है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संतोष भदौरिया की वार्ता। विषय था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं जला श्रीवास्तव। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में दादू दयाल का भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे यश मालवी का लिखा गीत, स्वर जलश श्रीवास्तव का था। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आशुतोष।

0: खुशी वाला आया, खुशी वाला, खुशी ले लो, खुशी, छोटी खुशी, बड़ी खुशी, सबकी खुशी, अपनी खुशी। खुशी वाला आया, खुशी वाला।
1: ए फेरी वाले भैया, ये क्या आवाज लगा रहे हो? बेच तुम रहे हो चूरन, चटनी, गुब्बारे, लॉलीपॉप, और बातें इतनी ऊंची ऊंची, खुशी ले लो खुशी। ये सब क्या है? कैसी खुशी? कौन सी खुशी?
0: अरे बहन जी, मैं तो रोज ही आता हूँ ऐसे ही इसी वक्त, और ऐसे ही आवाज लगाकर मैं सब सामान बेचता हूँ। बच्चों को मेरा चूरन, खट्टी मीठी चटनी बहुत पसंद है। मेरी साइकिल की घंटी सुनकर ये दौड़ आते हैं मेरी तरफ। देखिए देखिए, वो देखिए कैसे दौड़े आ रहे हैं मेरी तरफ। अभी मुझसे चवन्नी अठन्नी का चूरन चटनी लेंगे और ढेर सारी खुशी मन में समेट कर ले जाएंगे।
1: अच्छा,
0: और फिर उसी खुशी में उछलते कूदते खेलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और रात होते होते मीठे सपनों की आगोश में समा जाएंगे। तो बताइए बहन जी, मैंने चवन्नी अठन्नी में खुशी बेची या नहीं?
1: हाँ, लेकिन ये तो बच्चों की बातें हैं, अबोध हैं बच्चे, इनका क्या कहना? अभी खुश, अभी ना खुश, क्या बड़े ऐसे खुश हो सकते हैं? अरे, खुश रहने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। सबसे पहले तो ढेर सारा पैसा, जिससे सुख सुविधाएं जुटा सकें और आराम की जिंदगी गुजार सकें।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। पैसे और खुशी का एक दूसरे से कोई खास रिश्ता नहीं है। पैसा काफी मेहनत से कमाया जाता है, और खुशी वो तो कैसे भी आ सकती है, गरीब के पास, अमीर के पास, किसी के भी पास। मैं तो अनपढ़ ठहरा। आप पढ़ी लिखी हैं, आप ज्यादा समझती होंगी ना।
1: अच्छा, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। ये बताओ, तुम रोज साइकिल चलाकर आते हो ना?
0: हाँ।
1: तो थक जाते होगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बाइक पर फेरी लगाओ? समय बचेगा, थकान भी नहीं होगी।
0: अरे बहन जी, कैसी बातें करते हैं आप। जो मजा साइकिल में है ना, वो बाइक में कहाँ। बाइक लूंगा तो पेट्रोल का इंतजाम करना होगा, बाइक खराब होगी तो ठीक कराने में ज्यादा पैसा खर्च होगा। साइकिल अपनी ठीक है, खराब होने पर खुद ही दुरुस्त भी कर लेता हूँ, व्यायाम भी हो जाता है और चोरी का भी डर नहीं। और फिर आज अगर बाइक लूंगा तो कल गाड़ी की भी सोचूंगा, खरीद पाऊंगा नहीं, और इसी सोच में डूबकर दुखी होता रहूंगा। तो बहन जी, मैं तो अपने साइकिल से ही संतुष्ट और खुश हूं, और बच्चे भी मुझे ऐसे ही पहचानते हैं।
1: तो मतलब ये कि तुम अपनी स्थिति से खुश हो?
0: जी हाँ, बिल्कुल खुश हूं। मेरा काम है अपने लिए दो रोटी का इंतजाम करना और खुशियां बांटना।
1: ये फेरी वाला क्या कह रहा है, समझ नहीं आता। कहता है मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गरीबी में भी खुश कैसे रह सकता है? गरीबी और खुशी एक साथ कैसे? मैं मेहनत करती हूँ, राजू के पापा ओवरटाइम करते हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि राजू को खुश रख सके। लेकिन राजू खुश नहीं है, उसे लगता है हम उसे समय ही नहीं देते। समय खर्च करने पर पैसा आता है,

0: पैसा खर्च करने पर खुशी क्यों नहीं आती? ये फेरी वाला चवन्नी के चूरन में बच्चों को ढेर सारी खुशी कैसे दे सकता है? क्या इसका मतलब खुशी का पैसे से कोई संबंध नहीं है? खुशी न पैसा कमाने से आती है, न पैसा खर्च करने से। तो आखिरकार आती कैसे है? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
1: अरे बहन जी, आप किस सोच में डूब गई? मैं ठहरा अनपढ़, गवार। अरे यूं ही कुछ बोल गया होऊंगा। अच्छा अभी चलता हूं। खुशी ले लो, खुशी।

0: तो ये स्पष्ट है कि खुशी मन का एक भाव है, जैसे क्रोध, मोह, लालसा, प्रेम, स्नेह आदि। ये क्षणिक भी हो सकता है, इसे दीर्घकालिक बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। छोटी छोटी खुशी तो हम अक्सर महसूस करते हैं, यदा कदा हर कोई प्रसन्न मुद्रा में दिख जाता है, यानी हम छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं और कुछ क्षण बाद उसे बिसार देते हैं। प्रसन्नता के इस मनोभाव को दीर्घकालिक या चिरस्थायी बनाना जीवन जीने की एक कला है, और शायद यही इस जीवन का लक्ष्य भी। आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर शशांक शेखर त्रिपाठी इस बारे में बताते हैं।
1: प्रसन्नता एक ऐसी चीज है जो आपके अंतःकरण से स्फुरित होती है, जिसमें आपका पूरा अस्तित्व, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब पूरी तरह से जुड़ जाता है। पश्चिम का दर्शन शरीर और मन बुद्धि तक सीमित है, भारत का दर्शन शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा तक जाता है। तो भारत में लोग सहज रूप से कहते हुए देखे जा सकते हैं कि आज हम आत्मा से प्रसन्न हैं। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसकी व्याख्या कहाँ से शुरू होती है। जब से मनुष्य जीवन प्रारंभ हुआ तब से एक ऐसे आनंद की खोज रही जो अखंड रहे, जो कभी न समाप्त, तो क्षणिक आनंद नहीं, शाश्वत आनंद की खोज। हमारे ऋषि मुनि गए गुफाओं में, तपस्या की, साधना किया, क्योंकि व्यक्ति वास्तव में किसी ऐसी चीज की खोज में रहता है जो कभी न समाप्त हो। ऋषियों ने अनुभव किया कि जीवन का हर सुख क्षण भंगुर है, कुछ समय बाद परिस्थितिवश वो समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो कभी न समाप्त हो। उसकी खोज में ऋषियों ने ध्यान, साधना, योग, दर्शन इत्यादि की अन्वेषणा करना प्रारंभ की।
2: प्रसन्नता को चिर रूप में जीवन से जोड़ने में क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे हो सकता है, इसमें परिस्थितियों की क्या भूमिका है, और फिर एक सामान्य मनुष्य के लिए इसे चिरस्थायी बनाना क्यों मुश्किल लगता है, यानी खुशी का मनोविज्ञान क्या है, इस बारे में बता रही हैं मनोवैज्ञानिक सुश्री विजेता सिंह।
3: ये देखा गया है कि खुशी क्षणिक होती है, वो टिकती नहीं है हमारे पास में, जबकि प्रसन्नता हमारे जीवन में चिर रूप में तभी जुड़ सकती है जब हम तनाव शब्द को ही अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, और काम चाहे छोटा हो बड़ा हो उसे मुस्कुराकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो इससे हमारे मसल्स भी एक्टिव हो जाते हैं जो पॉजिटिव मूड को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। जीवन सुंदर है ये विश्वास कीजिए और अपने अंदर ये भाव भी पैदा कीजिए। और खुशी का सबसे बड़ा मनोविज्ञान यही है कि अपने अंदर कृतज्ञता और सहयोग का भाव प्रकट करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं उतना ही ज्यादा निराशा और कटुता की राह से हटकर खुशी की पगडंडी पर चल पड़ते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं या चैरिटी करते हैं तब हमारा मेसोलिम्बिक सिस्टम, जो कि ब्रेन का एक पार्ट होता है और जो फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक्टिव हो जाता है। और जितना ज्यादा हम इस तरीके के काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, उतना ज्यादा हम अपने प्रति भी पॉजिटिव रुख अपनाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आप लोगों की मदद करिए, चैरिटी करिए, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो खुशी फिर हमें कहीं और जाके नहीं मिलती है।
0: निसंदेह खुशी एक मनोभाव है, इसीलिए हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा और अवस्था में पाया जाता है। गरीब भी खुश रह सकता है और रोगी भी, सुविधा संपन्न भी खुशी के लिए तरस सकता है और सर्वशक्ति संपन्न नरेश भी। आखिर महात्मा बुद्ध ने

0: राजसी जीवन क्यों छोड़ा? महावीर स्वामी राजपाट ठुकरा कर क्यों संत बन गए? एक वसना महात्मा गांधी एक लाठी के साथ देश को नेतृत्व प्रदान करने की ऊर्जा कहां से लाए? सूरत का हीरों का व्यापारी दुनियावी ऐश्वर्य छोड़ क्यों बन गया भिक्षु? निमच का अरबपति 35 वर्ष की अल्पायु में जैन साधु क्यों बन गया?
1: ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बताते हैं कि खुशी का भौतिक सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में मनोविज्ञान बताता है,
2: खुशी हमारे मन की ही एक स्थिति का नाम है। अगर ऐसा होता कि भौतिक सुख सुविधाओं से ही खुशी मिलती तो ये जितने अमीर लोग हैं वो जाहिर सी बात है कि अपने पैसे को उपयोग करते, उसको खरीदते और खुश रहते। लेकिन हमने ये भी देखा है, वो हमेशा कहते हैं कि हमें बहुत टेंशन है, हमें बहुत परेशानी है, हमें नींद नहीं आती है। तो ये सब कारण कहीं ना कहीं ये हमें बताते हैं कि खुशी का भौतिक सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। खुश होने के कई सारे कारण हमारे भीतर ही हमें मिल जाएंगे। जिंदगी का हर पल खुशियों से भरा होता है। खुशी को अगर आपको महसूस करना है तो उसे सुख सुविधाओं से बिल्कुल मत जोड़िए, बल्कि वर्तमान से जोड़िए। हर एक पल जो आपके चारों ओर है उसे महसूस करिए कि वो आपके लिए कितना प्रीशियस है।
0: खुशी का प्रकटीकरण मानव जीवन का एक अटूट हिस्सा है। मानवीय व्यवहार से पता चलता है कि व्यक्ति कितना खुश है। मनुष्य की चाल, उसके बोलने का अंदाज, समाज में घुलने मिलने का तरीका, बात व्यवहार का सलीका, वाचालता, संयम, नाचना गाना गुनगुनाना, अपने में रमना, प्रकृति से समरस होना, ये सभी क्रियाएं मनुष्य की खुशी को व्यक्त करती हैं। खुश व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से आच्छादित रहता है। खुशी का भाव उसे प्रकृति से जोड़कर रखता है।
1: नदियों का कलकल, पक्षियों का कलरव, वृक्षों की हरितिमा, पुष्पों की मधुर सुगंध, पर्वतों की विशालता, मधुपों का गुंजन, झरनों का उद्घोष, चांदनी की शीतलता, वायु का मंद मंद बहना,
0: चांद तारों की चमक, गगन की नीलिमा, बर्फ की धवलता, अंबर की उन्मुक्तता, धरती की गंभीरता मानव व्यक्तित्व में समाहित हो जाती है और ऐसा व्यक्ति उन्मुक्त होकर सांसों की लय पर विचरते हुए लोभ मोह ईर्ष्या स्वार्थ यश अपयश तिरस्कार के मिथ्या बंधनों से ऊपर उठकर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करता है।
1: खुशी का ये भाव मात्र मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि पशु पक्षी और प्रकृति भी इससे अछूते नहीं है। स्नेह और करुणा के स्पर्श को हर जीव पहचानता है। रोटी खिलाने वाले की आहट से चौकन्नी गाय की आंखों में खुशी की चमक क्या कहती है? गर्मी में पानी की फुहार में नहाने को आतुर चिड़िया का फुदकना क्या संदेश छोड़ता है?
0: भगवान श्री कृष्ण की बंसी गायों को कैसे बुला लेती थी?

0: गर्मी में कुमलाती पत्तियों पर पानी का स्पर्श होते ही पत्तियों का इठलाना क्या कह जाता है। ये कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो खुशी के मनोभाव को प्रेषित करते हैं। इस मनोभाव के बारे में बताते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रवि शंकर पांडे।
1: मनुष्यों के संपर्क में रहने वाले जंतु यथा डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोस आदि में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने की क्षमता होती है। प्राइमेट्स वर्ग के जंतुओं में खुशी का प्रदर्शन करने की क्षमता अधिक होती है। प्राइमेट्स जैसे बंदर, चिंपैंजी, एप्स आदि शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ रसायन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन,

0: सीरोटोनिन एवं एंडोर्फिन्स। 2003 में साइकोलॉजिस्ट बी एफ स्किनर ने इस बात को दर्शाया कि एनिमल्स में भी हैप्पीनेस को व्यक्त करने की क्षमता होती है, जैसे कि कुत्ते का दुम हिलाना, वैगिंग ऑफ टेल्स या प्योरिंग ऑफ कैट, कैट का घरघराना या गुर्राना हैप्पीनेस को प्रदर्शित करने का एक तरीका है।
1: मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, अतः प्रकृति के उपादान उसे ज्यादा खुश रख सकते हैं। प्रकृति के बीच घूमना, नदी, पहाड़, झरने की खूबसूरती को महसूस करना, पशु पक्षियों के साथ संवाद स्थापित करना, चांद और तारों को निहारना, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें चिंता और अवसाद से दूर ले जाती हैं।
2: मानव मन जितना कृत्रिम दुनिया में उलझता जाता है, उतना ही उद्विग्न और कर्कश होता जाता है। मन की निर्मलता के साथ खुशी का भाव विस्तार ग्रहण करता है। हमारे पूर्वज ऋषियों और मनीषियों ने इसीलिए मानव जीवन को प्रकृति से समरस बनाने के अनेक यत्न किए।
1: उन्होंने संपूर्णता में खुशी को पहचाना और समग्रता का संदेश दिया, इसीलिए प्रकृति को धार्मिक आख्यानों में सजीव मानकर उसके पोषण पर बल दिया गया। वैदिक साहित्य बताते हैं कि किस प्रकार प्रकृति के संरक्षण हेतु उसे पूजनीय बनाया गया। वैदिक साहित्य विशेषज्ञ डॉक्टर रामजी मिश्र बताते हैं,
3: भारतीय संस्कृति सब में तादात्म्य रखना सबसे अनिवार्य संबंध बनाना सिखाती है। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा की जाती है, समुद्र, नदी, नद, ये सब हमारे यहाँ परम पूजनीय हैं। पुराणों में इसके अनेक सह वचन मिलते हैं। वैदिक साहित्य में पर्यावरण के संबंध में अनेक मंत्र मिलते हैं। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, ऋग्वेद में वनस्पतियों से, पृथ्वी से, औषधियों से शांति रहने की प्रार्थना की गई है। ओम द्यौः शान्तिरिक्षद्वं शांति पृथ्वी, शांति रापः, शांति रोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति ब्रह्म, शांति शांतिरेध, शांति, इस प्रकार की प्रार्थना हमारे यहाँ वेदों में मिलती है। यजुर्वेद में कहा गया है, सुचपा वायो आपो वाता औषधयः, सूर्य को भुवनों का रक्षक बताया गया है। इवं वापो सविता च भुवनान रक्षता, वृक्षारोपण के लिए अनेक सहवेदों में मंत्र मिलते हैं, पुराणों में अनेक वचन मिलते हैं। इस तरीके से हमारी संस्कृति जो आरण्यक संस्कृति है, जो ऋषियों द्वारा बनाई गई है, जिसका वेदों में अनेक सह वर्णन आता है, वो भविष्य को देख करके बनाया था ताकि सब जगह स्वच्छता बनी रहे, शुचिता बनी रहे और प्रकृति से तादात्म्य बना रहे।
2: आधुनिक मनोविज्ञानी भी प्रकृति को मनुष्य का जीवन साथी बनाने के हिमायती हैं। गृह वाटिका, पुष्प वाटिका में समय बिताना प्रसन्नता के लिए काफी लाभदायक माना गया। प्रकृति संरक्षण को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक खुश मिजाज होते हैं। मनोवैज्ञानिक सुश्री विजेता सिंह बताती हैं,
4: जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये शरीर प्रकृति से ही बना है, तो प्रकृति से लगाव होना हमारा स्वाभाविक ही है। और इसीलिए अगर हम देखें कि प्रकृति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हमारे मनोभाव पर पड़ता है, और ऐसा माना जाता है कि हर रोज हरी घास पर चलें तो इससे हमारे जो मानसिक अवसाद है उसमें 62% कमी देखने को मिलती है। और बहुत सारे रिसर्च जो हुए हैं साइकोलॉजी में, उसमें ये भी देखने को मिला है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, कि इसकी जगह अगर हम प्रकृति के साथ, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके साथ ज़्यादा समय बिताएं, तो इससे हमारे ऊपर 3 तरह के पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। पहला, ये हमारा स्ट्रेस कम करता है। दूसरा, हमारे मूड को अच्छा बनाता है। और तीसरा है, ये हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। हम प्रकृति के बीच जितना ज्यादा समय बिताएंगे, हमारे अंदर खुशी से जुड़ा हुआ सीरोटोनिन न्यूरोकेमिकल उतनी ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। इसे बूस्ट करने के लिए अच्छा सोचें, खुद से प्यार करें और ज्यादा से ज्यादा

0: ज्यादा समय नेचर के बीच बिताएं, क्योंकि वो कहते हैं कि डेविएशन फ्रॉम नेचर इज डेविएशन फ्रॉम हैप्पीनेस।
1: तो खुशी का आधार क्या है,
2: खुश रहने की सच्चाई क्या है?
1: ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें अपने अंतर्मन में ढूंढना है,
2: और मन में गहन अवगाहन करके ही हम खुशी के मोती को ढूंढ सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आशुतोष सुंदरम का लिखा रूपक जिन ढूंढा तिन पाया। वाचन स्वर थे रूपम नारायण पांडे और अतुल कुमार यादव के। नाट्य स्वर शैलेश श्रीवास्तव और रेणुराज सिंह के। श्लोक पाठ लोकेश कुमार शुक्ल का। प्रस्तुति आशुतोष सुंदरम की थी और प्रस्तुति सहायक रेणुराज सिंह। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर।

अभी आप समूह स्वर में देश कान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं सुरेश वाडेकर के स्वर में ये भजन।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गुलाम अली की गाई गजल।

0: अभी आप सबरस कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा उपचुनाव में पार्टी

की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

0: तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है जितने

0: हमारे राष्ट्रभक्त हैं, वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
3: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
2: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात PM जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
5: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
4: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
6: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
4: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़

0: और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
1: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मित मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हर कुनबा बैंकिंग निजाम से मजबूत है।
1: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे, महिलाएं थी, माइग्रेंट लेबलर थे, स्टूडेंट थे। इसलिए हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है।
0: गुजरात के रहने वाले मुकेश नायक ने कहा कि उन्हें मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों के फायदे अपने जनधन खाते में मौसूल हो रहे हैं।
2: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
0: दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी शमूलियत की पहल के तौर पर ये स्कीम लाखों महरूम शहरियों के लिए बैंकिंग तक रसाई को नए सिरे से तश्कील दे रही है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
3: भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुझे वीजा अबूरी तजारती समझौते को बदलते हुए हालात की रोशनी में हतमी शक्ल दी जाएगी। आज नई दिल्ली में तिजारत और सनत के ऐवान PhD CCI के अरकान से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में जिस फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया था अमेरिका के टैरिफ मंजरनामे में तब्दीलियों के तनाजुर में इसका फिर से जायजा लिया जा रहा है। यूक्रेन के ज़ेफ्रोजिया खित्ते में रूस के हमलों में कम अज़ कम 15 अफराद मारे गए जबकि 16 जख्मी हुए। इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह मिखाइलो सेमेकिन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस खित्ते में रूस ने रिहायशी इमारतों पर बमबारी की। रूस की फौजी कार्रवाई शुरू होने के बाद से रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई को 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से रोजाना 99% जरूरी कैश रिजर्व रेशो बरकरार रखने की जरूरत होगी जो इस वक्त 90% है। बैंकिंग निजाम में मौजूदा नकद रकम की दस्तियाबी की सूरत हाल के जायजे के बाद यह फैसला किया गया है और इससे बैंकिंग निजाम में नकद रकम की दस्तियाबी में कमी में मदद मिलेगी जो 8 अक्टूबर को तकरीबन 3,88,000 करोड़ रुपये फाजिल थी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की असलाहत ने इस भारत और अफ्रीका के लिए और ज़्यादा नुमाइंदगी पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने फलाई दुबई के हवाई जहाज़ में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की तहकीकात के लिए केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज के मकाम पर जाने की कोशिश करने वाले कई अफराद को हिरासत में लिया। BJP ने कहा है कि ज़िमनी चुनाव में उसकी कामयाबी से जमहूरियत में एतमाद को तकवीत मिली है। पार्टी ने अपोजिशन पर एहतजाज के जरिए आवाम की जिंदगी में खलल डालने का इल्जाम लगाया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय। कल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में है, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था। यानी

बालिका शिक्षा का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था, फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और न चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान न बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए, ऐसा है कि सीसीआरटी दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेस तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों स्पर्धाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सीसीआरटी ये आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है। तो ये बहुत अहम, एक बहुत अच्छा एक कार्य है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग, बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
0: सीसीआरटी के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कला ग्राम, तो निश्चित ही ये दो डिविजन है और इसके पीछे एक सोच है। कला गुरुकुल जहाँ हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स

0: को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का, क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि इससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं कहीं मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे, उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम, ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी, तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहां पे सबको दी जाएगी। देश भर के जितने आर्टिस्ट है उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहां से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे जिसमें एक जनरेशन भी होगा।
1: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
0: हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप्स जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स जो है कि हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम एमओयू भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं। कुछ एनजीओज जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, सीएसआर पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जब तक कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी, एक्टिविटीज में भी, हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा, फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे, फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चरल प्रोडक्ट्स, ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेज जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए, और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे सीसीआईटी जो जहाँ पर स्टैब्लिश द्वारका में, तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है हमारी प्रांगण में, हम वहाँ पर एक कलाग्राम वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है ये एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिजन्स के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा, एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपोर्ट स्लोप लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे, ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है, तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं, जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर, तो ऐसे जो जो ओरिजिनल इंडिजिनस काम करते हैं वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्प्टर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे और उनको हम जगह भी देंगे और उनके माध्यम से बाकी लोग भी

0: काम सीखेंगे वो भी एक काम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में हैं लोग की जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, उसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी, जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते ऐसा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले हैं। बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स है भारत में, कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।

अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुलनिगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

0: कला की सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभाह करती है। और इसी क्रम में हमारी अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के न होने में बसती है। आशिमा की कला इसी न होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है। छूटी हुई जगहें, मिटे हुए निशान और बीते रिश्तों की परछाइयाँ अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।
1: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी। व्हाट वाज हियर, ये उसके बारे में है। डज मैटर हैव मेमोरी? तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयाज में, विच इज वहाँ पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में। और वहाँ पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। आई बिगैन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि इतनी अच्छी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको। वेरी ऑफन आई यूज्ड टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशंस हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ। सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इनटू कंटेम्पररी आर्ट।
2: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ उनकी डिटेल्स, जो मटेरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक,
1: साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी। तो ये स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई, मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी। बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहाँ जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है, तो वो ना वेयर आउट हो जाता है। तो दोज आर द एविडेंसेस दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेज ऑफ चेंज ऑफ मैटर यू कैन मेक आउट दैट दे डू रिमेम्बर थिंग्स। एंड वेरी ऑफन यू गो टू अ टेम्पल, वहाँ पर भी आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं। वहाँ पर जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम देयर और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, विशेज मांगी हैं, तो जब आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली गेट सम सुकून मिलता है। तो मैटर

रिमेम्बर करता है कुछ चीज़, और वो हमारे को ट्रांसमिट करता है साइलेंटली, और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्ट वर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है। क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जौन सा है, ये मैंने अपने आप बनाया है, ये बनाया है वेस्ट सिल्क का, और वेस्ट सिल्क बहुत फ्रेजाइल होता है। सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीज़ों की, ये सब चीज़ों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है, और ये

0: बहुत फ्रेजाइल होता है. सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीज़ों की. ये सब चीज़ों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है. और ये सब मेरे आर्टवर्क में मैं नाजुकपन दिखाना चाहती थी. तो इसीलिए मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ किया है क्लॉथ में. डबल ट्रिपल लेयर के, काफ़ी लेयर्स के ऑर्गेन्जा किए हैं और फिर हैंड स्टिचिंग करी है और वो भी नाजुक दिखा रही है. और फिर ये सारी चीज़ें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है. तो मैंने ये सब चीज़ें जो फेंकी हुई चीज़ें थी उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीज़ें जो होती हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए. जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं. तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर. उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफ़ी पूरी हैं, इमेजेस कंप्लीट. उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी मैंने उनको थोड़ा सा डिजॉल्व किया है. ये डिजॉल्व किया है बाय बर्निंग, बाय स्टिचिंग, बाय यू नो फोटोग्राफिकली ट्रांसफरिंग थिंग्स.
1: अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी, सौजन्य नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर, एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है। और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित है हमारा लघु रूपक छत पर उगती जिंदगी।
2: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
3: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
2: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना, खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
3: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेलें।
2: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
3: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
2: और सबसे बड़ी बात, ये हमें धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
3: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
2: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा, और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
3: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशी अरोड़ा कहती हैं,
4: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में तीन बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रोमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले दो चीजें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन्स होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बालकनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाया वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहाँ के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा

0: दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची की, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं पर हम उसे देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी धूप का जब ध्यान रख लें उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इंडोर पौधे छाए वाले वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि घर में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहां पे कुछ भी खाना बन रहा है तो दो चीजें, वहां पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के एक दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड्स ट्रिमिंग्स होता है, कुछ होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूँ। मैं यहाँ पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूँ कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम्स बनाती हूँ। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के एक ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए एयर फ्लो के लिए। हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले अपने खाने का जो भी हमारा ट्रिमिंग्स होती है वो डालते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन पार्ट हुआ, फिर डालते हैं हम कार्बन पार्ट, जितने भी सूखी हुई चीजें होती हैं। कहीं से डिलीवरी आती है चेक करिए, अगर वो पेपर कार्डबोर्ड रिसाइक्लेबल है तो उसको फाड़िए, छोटा छोटा करिए, जितने सूखे पत्ते गिर, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये पत्ते डालिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन का ऑल्टरनेटिव लेयर। पहले हमने खूब सारा नीचे ग्रीन ये ट्रिमिंग्स डाल दिया, फिर ब्राउन कार्बन डालिए, आपने ये ऑल्टरनेटिव लेयर बनाई और इस पे हल्का सा पानी का छिड़काव करा और फिर लास्ट में कार्बन डाल दिया और ढक दिया। थोड़े टाइम में ये कॉम्पोस्ट बन जाता है। इसको हिलाते रहना डेली और इसको एक थोड़ा सा शेडी डार्क सेमी शेड एरिया में, जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं उसे कर दीजिए, जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा एक कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए, तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है तो जिस गमले में या जगह पे पौधा लगा हुआ है उसके साइड में आप थोड़ा सा खोद के ये खाने का जो मिक्सचर है अंदर डाल के मिट्टी से ढक दें। अर्थ वो अपने आप उसको तोड़ेगी और नीचे पोषण देगी इन सब पौधों को। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कभी चावल बनता है, दाल बनता है, इनको धोइए, इनका पानी आप फेंकिए मत, इनका पानी आप अपने पौधों को दीजिए, तो उसे थोड़े दूसरे पानी में डाइल्यूट करें, डाल दें। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं अपने पौधों को पोषण देने के, बट जो मेन चीज है पहले धूप देखिए, उसके बाद आप मिट्टी देखिए, और फिर हम डिटेल में जाते हैं कि अच्छा इसको और कैसे बड़ा करें। पर ग्रोइंग अ प्लांट बहुत सिंपल है, जिसे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। मेरा छत ना, जिसे बोलते हैं एक बायोडाइवर्स एरिया है, मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल हैं, सीजनल फूल हैं। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में प्रिटी मच सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है, जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है। तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा, और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितने मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति।
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

0: कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खां, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खां, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। ২০১৩ में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना को सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं याद किया जाएगा, सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना, और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना। उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी, और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आप इस कार्यक्रम में कर्नाटिक शैली में गायन सुनेंगे। आज की कलाकार हैं अर्चना उपाध्याय।
2: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट you are going to listen to a Carnatic vocal by Archana Upadhyaya.
1: Archana Upadhyaya एक प्रसिद्ध कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत गायिका हैं और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार हैं। आप विदुषी वसंत लक्ष्मी हेब्बार और डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार से अपना संगीत प्रशिक्षण शुरू किया, और थोड़े समय तक आप स्वर्गीय श्रीमती रंजनी हेब्बार से भी शिक्षा हासिल की। आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोह में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी हैं। अर्चना को MS सुबलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
2: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर म्यूजिक ट्रेनिंग इन 2008 अंडर विद्वान वसंत लक्ष्मी।

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूपारतिया, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूपारतिया, सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: स्तर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाई मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्री गुरु गुहा, विच इज सेट इन राग उदय रविचंद्रिका एंड रूपक ताला।

0: अपने कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी ऊतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापूताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऊतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापूताला।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सोनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंह पर बालकृष्ण हसम ने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगड़ा तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Uppangala and on the mridangam Sunada Krishna Amai and Balakrishna Hosmane on Morsing. This concert was recorded earlier at the studios of Akashwani Mangaluru and broadcast from Akashwani Delhi. Please stand by for our next program.
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 17.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ

0: नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership and recalled India's efforts during its 2023 G20 presidency to secure permanent membership for the African Union.
2: India and Africa cannot remain underrepresented in global decision making. And that is why India worked resolutely during its G20 presidency in 2023 to secure a permanent membership for the African Union. This decade has seen the UN slide steadily into irrelevance, helpless in the face of major challenges. Our objective is not merely to add more seats around an old table. It is to make global governance more democratic, more responsive, and more representative. And in doing so, make the United Nations itself more capable and more credible.
1: On the final leg of his three-nation African tour, Dr. Jaishankar urged Indian businesses to invest in the continent and called for stronger cooperation in food security, agriculture, and sustainable development. India has said the proposed interim trade agreement with the United States will be finalized in light of changing circumstances. Addressing members of Industry Chamber, PSD Chambers of Commerce and Industry in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the framework announced in February is being reassessed amid changes in the US tariff landscape. He added that India is seeking more favorable tariff terms to ensure its goods remain competitive in the American market. Mr. Goyal said India is simultaneously pursuing trade agreements with several partners, including Israel, Chile, the Gulf Cooperation Council, and the Eurasian Economic Union. The National Investigation Agency has registered a case to investigate last month's mid-air cockpit attack on Captain Smith Machar aboard a Fly Dubai flight. The case has been registered under the relevant provisions of the Anti-Hijacking Act 2016 and the Unlawful Activities Prevention Act 1967. Captain Machar, who hails from Gujarat, was stabbed and seriously injured by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight while traveling